0: your heart. Be on the floor of music. Only on FM Rainbow Carnival. Carnival di Telkiharga. You are listening to FM 102.2 Rainbow Carnival.
1: ₹7:51 by the studio clock. Sports lover, अब सुनिए स्पोर्ट डेस्क पर कौन सी खबर हाईलाइट हो रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का लखनऊ में आमना सामना हुआ। आईपीएल 2026 का 50वां मैच और घर में जीते लखनऊ सुपर जायंट्स मार्च ने खेली 111 रनों की तूफानी पारी। और अब आज देखने वाली बात होगी कि आईपीएल 2026 के 51वें मैच में वरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में कौन कौन से रिकॉर्ड्स दर्ज होने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच में कौन ले जाता है बाजी मार। वेल, दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए ये मैच है बेहद इंपॉर्टेंट। तो स्पोर्ट्स टेक्स सुनी आपने 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के संग। गुड मॉर्निंग कानपुर।
2: योर वॉइस आई एम सिंगिंग सॉन्ग सुपर सॉन्ग फ्लॉप सॉन्ग।

लाइफ के साथ लगता है कि मौसम भी रिवर्स हो रहा है। मौसम अपडेट है आपके लिए, ये है हाल ही मौसम। सीएसए और मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ये है कि हल्के से मध्यम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, बरसात और मौसम

मस्त है, लगता है गर्मी में ने जो है वो थोड़ी सी छुट्टी ले ली है। कूल है मौसम, रिकॉर्ड टूट गए 55 सालों में, 7 मई पहले कभी भी इतनी ठंडी नहीं रही। टेम्परेचर हुआ डाउन 5.4 डिग्री तक गया और आज भी कुछ ऐसे ही नज़ारे रहने की उम्मीद है। मौसम मेहरबान रहने वाला है।

0: सारा
1: न जाने किस पे आएगा। तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते एक मैसेज है आपके लिए कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इसके किरदार। बस याद रखिए अपना किरदार ऐसा हो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। टाइम टू से टाटा ओके बाय। शिप्रा चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड मॉर्निंग कानपुर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि

0: दृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से

0: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई।

0: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश पूर्वी राजस्थान तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA-ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edapati Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
4: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on their governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
5: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
2: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added,

यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर और टाइम हो चला है सुरों की पुरानी महफिल का। सुरों की पुरानी महफिल में आज हम जो गीत आपको सुनाने जा रहे हैं वो है शराबी फिल्म से। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, संगीतकार हैं बप्पी लहरी और इसे लिखा है अनजान ने।

बप्पी लहरी का संगीत बद किया, ये गीत आप तक पहुंचा शराबी फिल्म से। और अब एक बार फिर से बप्पी लहरी का संगीत गूंजने को है तैयार। आंखें फिल्म का नगमा आप तक पहुंच रहा है सुदेश भोसले, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में। इसे लिखा है इंदीवर ने।

नाम है मधुमती, जिसका गीत आप तक पहुंचने को है तैयार लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों के साथ। संगीतकार है सलील चौधरी और इसे लिखा है शैलेंद्र ने।

कश्मीर की कली, ये है फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की खूबसूरत आवाज़ों के साथ ये गीत पहुंचने को है आप तक तैयार, जिसे लिखा है शहर यार ने और संगीतकार हैं खय्याम।

0: ऑन योर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर की आवाज। सुबह के बज रहे हैं 9, टाइम है रस बहार शो का।
1: काउंटडाउन स्टार्ट विद 108.2 एफएम रेनबो कानपुर। 5, 4, 3, 2 and 1 काउंटडाउन स्टार्ट।
0: कल टाइम है सेलिब्रेशन का, पूरे एक महीने ये जश्न चलने वाला है। सेलिब्रेशन है आकाशवाणी के 90 इयर्स का। डियर रेनबो लिसनर्स, आज की डेट है 8 मई 2026 और आज है वो स्पेशल डे जब से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 8 जून 2026 को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे पुराना माध्यम आकाशवाणी अपने 90 इयर्स पूरे कर रहा है। डे बाय डे पास आता जा रहा है, जैसे जैसे ये दिन वैसे वैसे उत्साह और उमंग बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपका आकाशवाणी के साथ कैसा लगाव है, क्या यादें हैं, क्या बातें हैं? 90 इयर्स कम थोड़ी ना होते हैं, तो कैसी मोहब्बत है आपकी आकाशवाणी के साथ, शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारा ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। भेजिए अपने मैसेजेस और आज रसबहार स्पेशल प्रोग्राम आकाशवाणी 90 इयर्स काउंटडाउन स्टार्ट में बन जाइए हमारे हम सफर। शिप्रा चंद्रा है आपके साथ।

वेरी ग्रीन सिग्नल मिल गया है दोस्तों, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 8 में से 8 जून की जर्नी है ये आकाशवाणी के 90 इयर्स सेलिब्रेशन की, जबकि हर दिन होगा शानदार एफएम 102.2 रेनबो कानपुर के प्रोग्राम्स के साथ। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ होती है आपकी एनर्जेटिक सुबह की शुरुआत, और शुरू की पुरानी महफिल में आप टाइम के साथ ब्यूटीफुल ट्रैक में खो जाते हैं गुजरे वक्त की एंट्री एंजॉय करते हैं। और आज के साथ हमनवा में रोज ही की तरह कितनी सारी जानकारियां आप सुनते हैं, तो प्यारी हमनवा की जोड़ी की चटपटी गपशप होती है। म्यूजिक आर में एक घंटा कब हो जाता है उड़नछू पता भी नहीं चलता, रखते हैं आपकी हेल्थ का ध्यान। हेल्थ मैगजीन हेल्थ मंत्रा सुनते हैं आप, और कुछ स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं हम प्रोग्राम्स में, इनसे मिलिए में जानकारियों के साथ कनेक्ट होते हैं। आप अपनी भेजी हुई ईमेल के साथ आपकी ख्वाहिशों से सजा प्रोग्राम आपकी पसंद जब गूंजता है तो आपकी पसंद के गीतों के साथ तो कहलाता है क्या लाजवाब शानदार। स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं आपके लिए टाइम बाय टाइम, उन्हें ना भूल जाइएगा जनाब। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये है हमारा ध्येय वाक्य।

You are listening Ras Bahar special program Akashvani at the rate 90 years countdown. और आगे 30 दिनों का है ये सेलिब्रेशन चलने वाला है, हो चुका है आज से स्टार्ट.

पहला नंबर किसका है, कौन है वो हमारे लिसनर्स जिनका मैसेज शेयर करना है हमें आपके साथ। बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं हमें, तो ये मैसेज है सेक्टर 18 जगह धारी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी का। लिखते हैं 1984 से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। जब कॉलेज में पढ़ता था तो पढ़ाई के साथ चारपाई पर ट्रांजिस्टर रखा होता था। गाने सुनते हुए पढ़ने का आनंद अलग था। मनोरंजन के नाम पर ट्रांजिस्टर और खेलकूद तो होता ही था। वो प्यार अब तक बरकरार है, जबकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब FM की आवाज़ साफ आती है, उस समय AM थे आवाज़ साफ नहीं आती है थी, पर वो दिन बहुत याद आते हैं। सच है, 90 वर्षों का हम सफर है आकाशवाणी आपका। अजीत कसाना लिखते हैं, मेरी जान है मेरी पहचान है आकाशवाणी, निकलेंगे जब मेरे प्राण, सुन रहा होऊंगा आकाशवाणी, क्या बात है इतनी मोहब्बत। और लिखा है, मेरी जब तक सांस रहे आकाशवाणी का साथ रहे, इसके बिना एक पल भी अजीत कसाना ना रहे। ना सुख में सीखे हैं ना दुख में सीखे हैं, और जो भी सीखे हैं आकाशवाणी से होकर सीखे हैं। 27 साल हो गए आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए, रेडियो के साथ जुड़ी बेशुमार यादें हमारे साथ हैं। रेडियो सुनना हमारा शौक है। ग्राम और पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना का ये मैसेज। फारूक अली खान कस्बा गुन्नौर UP से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा लिखते हैं कि आदाब, आपको भी हमारा आदाब। आकाशवाणी के साथ इनके 35 साल हो गए हैं। रेडियो सुनना तो हमारे शौक में शामिल है और रेडियो से जुड़ी बेशुमार यादें हमारे साथ हैं। तो डियर रेनबो लिसनर्स, एक के बाद एक हमें लगातार मिल रहे हैं आपके मैसेजेस। सेलिब्रेशन ही आकाशवाणी के 90 ईयर्स का और काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, अब आपसे एक सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या जानते हैं आप उस शख्सियत का नाम जिन्हें नवाजा गया रेडियो मैन ऑफ इंडिया के खिताब से, और जिनके पास एक लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ यूनिक रेडियो, साल 1920 का रेडियो भी है इनके पास। OMG वाली फीलिंग आ रही है ना। ये वो दौर था जब रेडियो जनसंचार का माध्यम बन चुका था और भारत में एंट्री लेने का सोच रहा था। जी हाँ, रेडियो की अपनी हिस्ट्री है। 1936 में 8 जून को आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। तो अभी हम वापस आते हैं उस सवाल पर कि क्या आप जानते हैं रेडियो मैन ऑफ इंडिया का नाम, और इनके नाम रेडियो का एक लार्ज कलेक्शन करने के कारण गिनीज बुक ऑफ

वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। तो जल्दी से हमें बताइए इस सवाल का जवाब। हमारा ईमेल आईडी है aarkansometia@gmail.com। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: सेलिब्रेशन का टाइम है जश्न का, और रसबहार स्पेशल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। आकाशवाणी @90 years countdown start।
1: Countdown

0: डीजे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, टाइम है जश्न का और सेलिब्रेशन का। वेल, शौक बड़ी चीज है, और शौक भी कोई ऐसा वैसा नहीं जिस शौक को आप कहेंगे, सुनकर कहेंगे अद्भुत अविश्वसनीय। यूपी के अमरोहा का नाम सुर्खियों में लाने वाले रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाली शख्सियत का नाम है राम सिंह बौद्ध, जिनका जुनून उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो आकाशवाणी से रेडियो से करते हैं दिल से प्यार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राम सिंह जी के प्रयासों की, रेडियो संस्कृति को संरक्षित करने में उनके काम की सराहना की है, और साल 2024 में उनका नाम इस अद्वितीय रेडियो के सबसे बड़े संग्रह के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, जो है वाकई खुशी की बात। और एक खुशी की वजह हम आपको दे रहे हैं, रसबहार स्पेशल शो आकाशवाणी @90 years काउंटडाउन स्टार्ट में आज फोन लाइन पर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं सीधे रेडियो मैन ऑफ इंडिया राम सिंह बौद्ध, बता रहे हैं अपने रेडियो म्यूजियम की बात।
1: मैं राम सिंह बौद्ध, रेडियो मैन, गजरौला डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपको और आकाशवाणी रेडियो को धन्यवाद देता हूँ मुझसे बात करने के लिए, और बड़ा गर्व की बात है कि आकाशवाणी को 90 साल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, तब मुझे ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ देश का ही छुपा हुआ है, तभी टेलीविजन छोड़कर ये मन की बात रेडियो से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, उसका पता भी इसी को चल गया, और रेडियो सुनने वालों की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच गई है, और इस कार्यक्रम ने समाज में बड़ी सकारात्मकता का परिचय दिया है। मेरे पास सबसे पुराना माइक्रोफोन का 1920 का रेडियो है, उसके बाद भी कई रेडियो मेरे पास जो 1920 से 2010 तक के लगभग इस समय 2000 रेडियो मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से मुझे पिछले साल 24 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी 1257 रेडियो का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया है, जो कि देश के लिए, मेरे लिए और मेरे जनपद के लिए, मेरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे रेडियो संग्रह करने से ही देश का और मेरे प्रदेश का और मेरे जिले का नाम जो विश्व पटल पर अंकित हुआ है, और भारत सरकार द्वारा भी दूरदर्शन द्वारा मेरी जो जीवन का डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, और तमाम जो जितने बड़े चैनल हैं आए दिन आते रहते हैं, मेरा प्रसारण होता रहता मानी पूरी दुनिया में, और इंग्लैंड में भी मेरा जो है अच्छा प्रसारण इन्होंने किया, गिनीज बुक वालों ने कई बार हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब ये उनकी क्लिप मिलती है, तो बड़ा मुझको जो गर्व भी होता है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई धीरे धीरे इसे ही देश में एक रेडियो संग्रहालय बन गया, तो ये बड़ी जो खुशी होती है। एक तो तन और मन और धन, ये तीनों चीज किसी भी संग्रह के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका इनके इनसे सामंजस्य बनाना पड़ेगा, और मुझे इस अवधि में 10-15 साल के बाद पिछले 5-6 साल में ये 3 बार जो हृदयघात भी हुआ है, लेकिन ये शौक मेरा ऐसा था कि मैंने उसे भी जो धता बताकर जो मैं अपने इसी काम में लगा रहा, और आज परिणाम ये है कि मैं रेडियो बर्ड रेडियो मैन कहलाया जाता हूँ, और जितने बड़े मीडिया चैनल हैं या पेपर हैं जो भी, ये सब रेडियो मैन नाम से लिखते हैं, और PIB जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसने भी जो है मुझे रेडियो मैन का नाम दिया है, तो मुझे सुनकर और पढ़कर और देखकर बड़ा गर्व होता है कि मैंने जो इतना अच्छा काम कर दिया, इसकी मुझे कोई आशा भी नहीं। और आकाशवाणी कानपुर के साथ जुड़कर और आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आशा है आगे भी आप मुझे ऐसे समय देते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

रज द्वार स्पेशल शो आकाशवाणी एट द रेट 20 ईयर्स काउंटडाउन स्टार्ट। सुन रहे हैं आप शिप्रा चंद्रा के साथ। 8 मई से 8 जून तक का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, जश्न का टाइम है। 90 सालों का साथ है हमारा, ये आकाशवाणी है। जब ये सुनते हैं आप तो कानों से घुल कर सीधे दिल में घर कर लेती है ये आवाज। ये वही आवाज है जिसने हमारी सखियों सहेलियों को रसोई से लेकर के हमारे किसान भाइयों को खेत खलिहान में घर मकान रास्ते परिवार बॉर्डर पर तैनात जवानों से लेकर हर किसी की दुनिया आबाद की है, एक हम सफर बनकर एक दोस्त की तरह। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक साथ सबको जोड़ता है और एकता का संदेश देता है। मिल रहे हैं हमें आपके संदेश लगातार, और ये संदेश है अजीत भवसार का, जिन्होंने लिखा है, मैं आकाशवाणी से 1961 से जुड़ा हुआ हूँ। जो मज़ा रेडियो और ट्रांजिस्टर पर आता था अब भी वही आता है। नेटवर्क घड़ी ऑनलाइन रेडियो की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इन्हें दिक्कत देती है। तो रेडियो को तो मैंने नो सिग्नल कभी नहीं देखा, रेडियो में बारिश में भी उसकी ज़ोरदार आवाज़ आती थी वॉल्व वाले रेडियो से। वहीं सुरेश राठौर लिखते हैं, आकाशवाणी कानपुर को 90 साल पर आकाशवाणी केंद्र निदेशक और तमाम स्टाफ मित्रों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गांधीनगर से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। वही हमारे और भी लिसनर्स हैं जो लगातार हमसे कनेक्ट हैं और नाम शामिल कर रहे हैं हम, भूषण खेरा, अनवर अंसारी, लाडला जी, ताज अंसारी, रवि कुमार राहुल, रवि कुमार राहुल के, और इस तरह से एक के बाद एक हमें संदेश मिलते जा रहे हैं लगातार। रसपार स्पेशल शो आकाशवाणी एट द रेट 90 ईयर्स काउंट डाउन स्पेशल शो सुन रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर से।

0: नाच मेरी जा हो के मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। डियर रेनबो लिसनर्स, सेलिब्रेशन का टाइम है और हमारे साथ आप हैं, तो यकीन मानिए कि ये टाइम फाइन है। आकाशवाणी कानपुर केंद्र आपके लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से ओत प्रोत प्रोग्राम लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और ये प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं, ये आपके लेटर्स और मैसेजेस से जाहिर होता आया है। तो किसी का दिल है रेडियो, तो किसी के लिए हम सफर, और किसी का जुनून, किसी का शौक है रेडियो। वाकई शौक बड़ी चीज है। हम तक पहुंचते हैं आपकी ख्वाहिशों से सजे बेशुमार लेटर्स, जिसमें हर पत्र के अल्फाज, उसकी खुशबू, उसका अपनापन ये जाहिर करता है कि आकाशवाणी कानपुर से आपका लगाव किस कदर है। रसवार स्पेशल शो आकाशवाणी @90years काउंटडाउन स्टार्ट में अब हमसे कनेक्ट हो रहे हैं हमारे एक ऐसे लिसनर हैं जो डालते हैं अपने हर लेटर में एक नंबर, और अब तक वो हमें कितने लेटर्स भेज चुके हैं आप खुद ही सुन लीजिए।
1: न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से मैं मोहम्मद अहमद रायनी बोल रहा हूँ। आकाशवाणी कानपुर केंद्र से प्रोग्राम सुनने की शुरुआत हमने की थी 1970 से, 6 साल की उम्र से। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी कानपुर केंद्र से 18 जून 2023 को शुरू हुआ, तो मैंने एक दो दिन फिर सुना और मैंने यहीं से पत्र संख्या डालने की शुरुआत की। 50,551 संख्या डाली और 4 मई तक मैंने जो है लमसम 52,395 पत्र लिख चुके हैं, यानी 395 नंबर का जो पत्र है मेरे पास अभी है, हाथ में मौजूद है, और इसको अभी हम थोड़ी देर में पोस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने साल से आकाशवाणी कानपुर से ही केंद्र से ही जुड़े हुए हैं 1980 से। 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी से जो प्रोग्राम सुबह से और 12 बजे तक, यानी कि उसके बाद 5 बजे तक जो आते हैं, गुड मॉर्निंग कानपुर, शुरू की पुरानी महफिल, रजबहार, ये जो हमनवा, ये जो प्रोग्राम आते हैं ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनको सुनता भी हूँ, बहुत चाव से सुनता हूँ। फिर 3 बजे से जो है, तो मतलब जो प्रोग्राम आते हैं उनको भी मैं बहुत चाव से सुनता हूँ। ये फ्रिक्वेंसी से जितने भी कार्यक्रम हैं सब अच्छे लगते हैं।

जी काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज है 8 मई और 8 जून तक ये जो आकाशवाणी का 90 इयर्स का सेलिब्रेशन है वो चलने वाला है। एक नंबर का शानदार आकाशवाणी के 90 इयर्स का माइलस्टोन एक बड़ा मौका है 90 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो आजादी से पहले लेकर आए आज तक आकाशवाणी से हर खबर जानकारी विश्वसनीय और भरोसेमंद लेकर आया है आकाशवाणी आपके लिए। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जून 1936 में जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया तब किसने सोचा होगा कि 90 सालों की आकाशवाणी अपने प्रोग्राम्स के साथ 2026 में बच्चों बुजुर्गों और यूथ्स के दिलों में उसी तरह एक हलचल मचाएगा जैसा 1936 के एरा में थी। वेल डियर रेनबो लिसनर्स, आकाशवाणी ने हर बदलाव को अपनाया है, गले से लगाया है। 90 इयर्स का आकाशवाणी अपने यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स के साथ आज भी है जबरदस्त शानदार।

मुझे बिल्कुल कहना मान लीजिए, हमारा जश्न है, रंग है, बहार है और अगले 30 दिनों तक ये जश्न रहने वाला है बरकरार। रंग होंगे चटकीले रसबहार, स्पेशल शो आकाशवाणी एट द रेट 90 ईयर्स काउंटडाउन स्टार्ट। आपने एंजॉय किया शिप्रा चंद्रा के साथ और अब टाइम टू से टाटा, ओके बाय। चलते चलते प्ले कर रही हूँ आपके लिए ये थिरकता ट्रैक है। भेजते रहिए अपने मैसेजेस हमें, हम शामिल करेंगे आपके मैसेजेस को हमनवा में दिन में 11 बजे से। और हमनवा में मेरे साथ होंगी आरजे पूर्णिमा। हमारा ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और अब दीजिए शिप्रा चंद्रा को अनुमति प्रोग्राम रसबहार से। नमस्कार।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कानपुर सुन रहे हैं आप, पेश है महफिले कव्वाली। ये पेशकश आप तक पहुंच रही है असलम साबरी और साथियों की आवाजों में।

12 बरस का तो और खुली किस्मत, जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत, निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बना।

0: 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महफिल कव्वाली प्रोग्राम की अब आज की आखिरी पेशकश आप तक पहुंचने को है तैयार अजीज नजान और साथियों की आवाजों में।

और इसी के साथ अब महफिल कव्वाली ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया, सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली

बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप व सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि गत 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्वगणना में शामिल होकर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के पहले दिन जिले के 1000 से अधिक नागरिकों ने पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर ली है। एडीएम वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद 22 मई से 20 जून तक प्रगणक घर घर जाकर डेटा सत्यापित करेंगे और छूटे हुए परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। जिले में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए 14 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और अंत में चित्रकूट में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने मंदाकिनी नदी में चलने वाले प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिना लाइफ जैकेट किसी भी श्रद्धालु या तीर्थयात्री को नाव यात्रा ना कराई जाए। जिलाधिकारी ने नाव संचालकों को पंजीकरण कराने और सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नावों को मरम्मत की जरूरत है उनके लिए सीएम युवा के तहत लोन देने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने नदी के किनारे स्पीकर सिस्टम को बेहतर करने और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

और दोस्तों मैं एक बार फिर से यानी मैं आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आप सबके बीच एक बार फिर से आ चुकी हूँ। 10:04 हो रहे हैं सुबह के और ये समय है किसका, वही आपकी वही फेवरेट प्रोग्राम जिसमें आप सुनते हैं एक से बढ़कर एक गाने, जी हाँ सुपर हिट सॉन्ग्स। तो बस इस म्यूजिक एक्सप्रेस में आप सवार रहिए और इंजॉय करते रहिए ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: और दोस्तों अभी म्यूजिक यूं ही चलता रहेगा, जारी रहेगा। बीच में बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 11 से 12 बजे के बीच में आप सुनेंगे कार्यक्रम बात नगर की। लखनऊ नगर की समस्याओं का जो भी समाधान है आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में लखनऊ के मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी होंगे और आप उनसे डायरेक्ट अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका समाधान आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा हमारे फोन नंबर्स पर कॉल। लखनऊ का कोड है 0522 और हमारे स्टूडियो का नंबर है 2238845 और 2238852। ये दो फोन नंबर्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। ये मेल आईडी पर आप अपनी कोई भी लखनऊ नगर से संबंधित कोई भी समस्या है वो लिखकर भेज सकते हैं, आपको समाधान 11 से 12 के बीच में मिलेगा। तो जुड़ना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, समय है 11 से 12 यानी आपसे कुछ देर में। तो बस बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर जो है धड़कन लखनऊ की।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: हेलो डियर रेनबो लिसनर्स, वेलकम. नमस्कार. हम नवा में मैं हूँ शिप्रा चंद्रा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त आरजे पूर्णिमा. तो पूर्णिमा, कैसी हैं आप? और साथ ही ये भी बताइए कि इस टाइम बाहर का मौसम कैसा है?
1: मैं तो ठीक हूँ शिप्रा. सभी रेनबो लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार. और बाहर के मौसम की बात करें ना, तो बिल्कुल क्या कहें कि बहुत ही खुशनुमा सा मौसम मौसम है. अच्छा सा प्लीजेंट सा मौसम है. और क्योंकि जो बादल हैं वो पूरे अपने खुमारी उनमें छाई हुई है, दूर तक छाए हैं बादल और कहीं साया कह रहे हैं नहीं है.
0: बिल्कुल. और पूर्णिमा, तुम्हारी बातों से मुझे एक शेर याद आ रहा है, और कतील शिफाई का ये शेर है कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर
1: बिल्कुल
0: तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था.
1: वाह.
0: और आज है मई की 8 तारीख, और हमारा ये जो मई का महीना है ये तो पूर्णिमा तपिश, लू और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है. वो कहते हैं ना पूर्णिमा, बचना ऐ हसीनो, लो मई आ गया.
1: तो कहीं इस टाइम संचयन ना हो जाए, इस डर से पूरा कवर करके निकलना चाहिए धूप में. लेकिन कानपुर में नज़ारे कुछ अलग हैं. ठंडी शीतल हवाएं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, और बूंदाबांदी जैसे बैसाख में सावन भादो अभी से गुनगुना रहे हैं.
0: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा. वैसे अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन बादल की ये आवाजाही जो है वो लगी हुई है, तो फीलिंग्स तो कुछ ऐसी ही है. लेकिन इस मौसम में केयर भी जरूरी है, और मौसम विभाग ने ये भी बता दिया है कि आज के दिन भी बारिश हो सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है. तो बहुत प्यारा सा मौसम है, गर्मी से तो निजात है ही. लेकिन मौसम के इस उतार चढ़ाव में कैसे रखते हैं आप अपना ध्यान, अपनी हेल्थ का ध्यान, शेयर कीजिए हमारे साथ.
1: जी, क्योंकि जो थोड़े थोड़े दिनों में भेज ये भले ही मौसम करवट ले रहा है छुपके से, लेकिन बेसिकली ये है गर्मी का मौसम. तो समर में कैसे रखते हैं आप अपना ध्यान, शेयर कीजिए हमसे. हमारा ईमेल एड्रेस है AIRKANSOMEDIA@gmail.com. कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का इंतजार. और फिलहाल इस प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत से.

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है हम नवा में मैं हूँ शिप्रा चंद्रा आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कम दोस्त आरजे पूर्णिमा। और पूर्णिमा, जो ये वाला गाना अभी आपने ये क्यों किया था, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तो ये वाला गाना इस समय आप पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है।
1: क्या बात है, थैंक यू।
0: और आपकी आंखों की चंचलता ये बता रही है कि आप जल्दी से कितना कुछ कहना चाह रही हैं, तो क्या कहना चाह रही हैं जल्दी से बता दीजिए आप।
1: क्योंकि जो आंखों की चंचलता है ये बता रही है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल शिप्रा सही पहचाना। मैं सोच रही थी कि उस वक्त के बारे में कि वो भी ऐसा टाइम था जब सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं था। कानपुर में मीलों के जो हूटर हैं वो साथ साथ हम समय का अंदाजा लगाते थे। सड़कों पर स्कूटर या कार इनका इक्का दुक्का ही नजर आते थे, और ज्यादातर लोग साइकिल से चलते थे और पैदल यात्री भी आराम से चलते थे। ना तेज आवाजें, ना हॉर्न का शोर। वाह, क्या दिन थे
0: वो बिल्कुल। और हूटर की आवाज के साथ हम सब उठ जाते थे, और इसी के साथ हमें टाइम का अंदाजा हो जाता था। और टाइम का अंदाजे की अगर हम बात करें तो टाइम का बिल्कुल सटीक अंदाजा जहां पे बताया जाता है वो कौन सी जगह है बताइए आप।
1: वो बस है हमारा स्टेशन,
0: बिल्कुल आकाशवाणी, जहाँ जो टाइम होता है बिल्कुल सटीक बताते हैं, और इसी तरह सटीक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं जिसमें कोई संशय नहीं होता है। आकाशवाणी के 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और बात कर रहे थे यादों के दरिया की। तो अब तस्वीर इसके विपरीत है पूर्णिमा, जैसा कि आपने कहा कि उस समय पैदल यात्री नजर आते थे और साइकिल्स नजर आती थी और स्कूटर और कार इक्का दुक्का ही नजर आते थे, लेकिन अब तस्वीर अलग है। अगर देखिए आप सड़कों पर तो कहीं आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं चलती हुई, कहीं बाइकें चलती हुई नजर आ रही हैं, और साइकिल चलाने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही होती है, और पैदल यात्री भी जो होते हैं वो जरा संभल के कदम रखते हैं सड़क पार करने के लिए। तो सिचुएशन ये हो गई है,
1: सिचुएशन बिल्कुल यही है, और सिटी की रफ्तार तेज हो गई है शिप्रा, लेकिन अपने वाहन की गति हमें कंट्रोल करनी है, हमें नियंत्रण में रखनी है, ताकि और इसी में समझदारी है, ताकि जो साथ में चलने वाले जो राहगीर हैं वो भी सेफली अपना सफर जो है वो तय कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटी सी सावधानी है, बहुत सावधानी की बात है पूर्णिमा, जो आपने बताई कि अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। 8 से 12 मई तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, और जो हम अपने लिसनर्स को बता दें कि एक वैश्विक अभियान है।
1: बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित, जिसकी थीम है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता। तो मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं और कैजुअलिटीज को 50% तक कम करना, स्पेशली पैदल चलने वाले या फिर जो हमारे राहगीर हैं जो डेली सफर करते हैं।
0: बिल्कुल सच है, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच साइकिल चलाना, अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है, और ऐसा फील भी होता है जब हम साइकिल चलाते हैं, कहाँ भाई कहाँ से निकाले, कहाँ से मुड़े, बड़े सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, और पैदल चलने वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो साइकिल चलाने वाले हैं और पैदल चलने वाले जो हमारे यात्री हैं, इन्हें हम सुरक्षित स्पेस दें एटलीस्ट चलने के लिए, सड़क पे उनका भी अधिकार है।
1: बट हम ना कितने भी नियम बना लें, कितने भी कानून बना लें, लेकिन हम देखते हैं हर रोज शिप्रा की जो लोग हैं ना वो बड़े स्मार्टली कहीं से भी जरा सी जगह दिखती है और वो अपना व्हीकल बीच में निकालते हुए आड़े तिरछे कहीं ना कहीं निकाल कर अपना वो सफर तय कर लेते हैं।
0: तो कानपुर में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि व्हीकल चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और जो कानपुर में अपने व्हीकल चला लेता है वो पूरे जहां में कहीं पे भी चला लेगा।
1: बिल्कुल सही बात है, और सड़कों पर ये जो ट्रैफिक है वो इतनी भीड़ है, इसका बस एक ही है हमारे आज के दिन के सेलिब्रेशन का, किस भीड़ को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना और आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखना, ताकि हमारे इस सफर से, हमारे उस रूट से किसी को दूसरे को तकलीफ ना हो जो अपने साथ या अपने फैमिली के साथ वहां पर सफर कर रहे हैं।
0: और बिल्कुल एक छोटा सा इसमें आइडिया भी है, दे सकते हैं हम अपने लिसनर्स को कि आप व्हीकल से जा रहे हैं, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कम से कम आप उसमें शेयर कीजिए, दो लोगों को आप, चार लोगों को शेयर कर सकते हैं, और ऐसा करें अल्टरनेटिव कर लें कि आज हम आपकी कार यूज कर ले रहे हैं, कल आप हमारी यूज कर लीजिए, तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: बहुत ही अच्छा आइडिया।

0: ये शिप्रा, और इससे सड़कों पर ना डेफिनेटली जो व्हीकल्स की भीड़ है, जो वाहनों की भीड़ है वो कम होगी, ध्वनि प्रदूषण कम होगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा, जो आज बहुत जरूरी है, और आप एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे और साथ ही हमारी ना बचत भी होगी।
1: ये सारे पॉइंट्स जो पूर्णिमा हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो ये लास्ट वाला पॉइंट आपने बताया कि बचत भी होगी, ये वाला पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सुखद भविष्य के लिए क्या जरूरी है, बचत जरूरी है। और इस नेचर के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। वैसे भी साइकिल का सफर है शानदार, चाहे जहां रुको इस गर्मी में किसी पेड़ के नीचे ठहरो, थोड़ा सा विश्राम करो।
0: बिल्कुल, और वो साइकिल चलाकर आप रहते हैं बिल्कुल फिट और हेल्दी, यानी एक्स्ट्रा आपको वर्कआउट की भी जरूरत नहीं है, फ्यूल की भी बचत है, समय की भी बचत है, और आप सेफली अपना सफर कर सकते हैं। और मैंने ना शिप्रा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी थी कि जिसमें एक साइकिल पर रेडियो टंगा था हैंडल पर और लिखा था मैं और मेरी साइकिल।
1: अच्छा, तो दिखाइए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगी, जब हमारा ये प्रोग्राम ओवर हो जाएगा तो हम आपको ये बिल्कुल तस्वीर दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है।
1: और ये तस्वीर हमसे पूर्णिमा शेयर कर रही है, और आप हमसे शेयर कीजिए कि आकाशवाणी से, रेडियो से, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ाव की अपनी बातें। आकाशवाणी के 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हमारा ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। आकाशवाणी के 90 इयर्स का सेलिब्रेशन है, भेजिए अपने संदेश और सुनिए ये गीत।

0: 102.2 चुकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमनवा और आपके साथ मैं हूं आपकी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा और मेरे साथ है आरजे शिप्रा।
1: और पूर्णिमा, हमारे लिसनर्स हमसे कनेक्ट रहते हैं, हमें सुनते हैं, अपने फीडबैक देते हैं, जो आकाशवाणी से हमारा जो उनकी मोहब्बत है वो जताते हैं और 90 इयर्स का सेलिब्रेशन है ये, क्या कहना चाहती हैं बताइए।
0: बिल्कुल, और ये जो दस्तूर है ना वो जारी है और हमेशा ये ऐसा ही रहता है क्योंकि हमारे पास इतने सारे मैसेजेस हमारे लिसनर्स के आते हैं जिनसे उनका प्यार हमें दिखाई पड़ता है, वो कितनी शिद्दत से हमें मेल करते हैं, हम तक पहुँचाते हैं अपने ईमेल्स और जिन्हें हम पढ़कर शायद उनकी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचाते हैं।
1: आकाशवाणी से अपना प्यार जताइए और भेजिए हमें मैसेजेस। तो मैसेज आया है हमारे लिसनर्स का, कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारी आंखें हैं, बता दें। जी बिल्कुल, इन्होंने लिखा है, अजीत कसाना है ये, कि मेरी जान है मेरी पहचान है आकाशवाणी, निकलेंगे जब मेरे प्राण सुन रहा होगा आकाशवाणी, मेरी जब तक सांस रहे आकाशवाणी का साथ रहे और इसके बिना एक पल भी अजीत कसाना ना रहे। क्या बात है, न दुख में सीखे हैं, न दुख में सीखे हैं, जो भी सीखे हैं आकाशवाणी से होकर सीखे हैं। तो ये तो सच है पूर्णिमा, आकाशवाणी से इतनी जानकारी प्रद जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो जाते हैं कि उससे वाकई में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत
0: सीखने को मिलती हैं। और एक कहते हैं ना कि प्रोग्राम का वेरिएशन हमें मिलते हैं, हम यूथ के लिए भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से जाते हैं और हमारे मतलब जो बच्चे हैं जो किड्स हैं उनके लिए भी जाते हैं, साथ ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारियां हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं जिसका सिर्फ एक ही एम है शिप्रा, कि हम जो हमारी जानकारियां हैं वो ऑथेंटिक यानी बिल्कुल सही जानकारी हम उन तक पहुंचा सके जिससे वो अपनी लाइफ में उन चीजों को बखूबी यूज कर सके।
1: और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। और पूर्णिमा, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अब से कुछ समय पहले, आकाशवाणी के 90 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब से कुछ टाइम पहले क्या था सीन, क्या था कि घर में रेडियो है, चल रहे हैं, रेडियो में बैटरी डल रही है, फिर क्या आया कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले आए रेडियो, तो इस तरह से रेडियो सहेजे जाते रहे घरों में। लेकिन आज जो रेडियो है वो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल पे है, स्क्रीन है आपके पास, कंप्यूटर स्क्रीन पे है। तो इससे क्या हुआ है कि लिसनर्स जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं उसके लिसनर्स के दायरे बढ़े हैं कहीं ना कहीं न्यूज ऑन AIR ऐप के थ्रू,
0: जिसके लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसके जरिए आप देश दुनिया की जो लिसनर्स है वो हमसे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना याद आ रहा है शिप्रा, कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें ना रोके।
1: बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप के साथ यही मतलब सिचुएशन हो गई है। और पूर्णिमा, न्यूज ऑन AIR ऐप को कैसे डाउनलोड करें ये भी हमारे लिसनर्स से शेयर कर दिया जाए।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हमें मैसेजेस करते हैं मेल करते हैं वो जानते हैं, बट बहुत से लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो शायद ये नहीं जानते हैं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को यानी न्यूज ऑन AIR ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसके होम पेज पर जाकर के आगे की प्रोसेस को फॉलो करना है।
1: बिल्कुल, आगे के प्रोसेस को फॉलो करना है और आकाशवाणी की वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और इसके साथ जो हमारे हमें देश और दुनिया के लिसनर्स सुन रहे हैं उनके साथ जुड़ जाइए। और हमनवा में अब बारी है एक
0: धमाकेदार ट्रैक की, क्योंकि जश्न का माहौल है और माहौल भी है, दस्तूर भी है, तो हमारा ये ट्रैक बिल्कुल बनता है, हम प्ले करते हैं आप सभी लिसनर्स के लिए।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 102.2 की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, आरजे पूर्णिमा और आरजे शिप्रा है आज आपके साथ।
2: और पूर्णिमा, एक बात तुमने सुनी होगी कि जो इंसानियत का जज्बा होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, और जो इंसानियत का जज्बा होता है हर किसी में होना चाहिए, है ना, और दिल से करना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, और ये जो बातों का सिलसिला आप तो आप समझ ही गई होंगी जो बढ़ने वाला है वो किस बारे में बात होने वाली है।
1: बिल्कुल, ये बात है रेड क्रॉस के साथ, यानी इंसानियत का जज्बा। रेड क्रॉस, एक दिल एक जज्बा एक सेवा।
2: बिल्कुल, आज 8 मई को हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो पूर्णिमा, रेड क्रॉस का नाम आते ही आपके सामने क्या तस्वीर आती है आप बताइए।
1: मेरे सामने दया और मानवता, समाज सेवा से भरे लोगों की तस्वीर सामने आती है शिप्रा, जो आपदा के समय, महामारी के समय या दैनिक जीवन में जो जरूरतें हैं, जैसे कि हीट वेव से अवेयरनेस की बात हो या ब्लड डोनेशन की बात हो, जैसे अहम मुद्दे, उसमें मदद के लिए जो लोग सामने आते हैं ना, जो आगे बढ़ते हैं, भोजन, दवाइयाँ, हॉस्पिटैलिटी जैसी सेवा के साथ अपने नेक इरादे लिए हुए समाज सेवा करते हुए ऐसे लोगों की तस्वीर सामने नजर आती है।
2: अच्छा पूर्णिमा, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया कि इसका क्या मतलब है, और तस्वीर जो आपने बताई और उन्हें देखकर कहीं ना कहीं बड़ी शांति और अपनापन फील होता है। मानो लगता है पूर्णिमा कि ये हमारे अपने हैं, हम किसी मुसीबत में हैं, कहाँ से कौन बिल्कुल एंजल की तरह आ रहा है, मदद कर रहा है, तो कितने अच्छे पर्सन हैं, ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, लेकिन शिद्दत से सेवा भाव के साथ वो काम करते हैं मुसीबत के समय हमारे लिए। शायद हम जिसे पुकार रहे होते हैं राहत के लिए, वही व्यक्ति वो बनकर आते हैं, और उनकी ह्यूमैनिटी और वॉलंटियर स्पिरिट को देख करके वाकई दिल से फील गुड होता है।
1: सच कहा शिप्रा, और अब लिसनर्स से भी ये शेयर कर दें कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने की शुरुआत कहां से हुई। विश्व रेड क्रॉस डे का को रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी हम जानते हैं, और हर साल हम ये दिवस इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक और प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हेनरी डुनेट की ब्रिटिश एनिवर्सरी पर मनाते हैं।
2: बिल्कुल, पहला रेड क्रॉस डे जो है 8 मई 1948 को मनाया गया, और 1948 में ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जैसा कि अभी आपने बताया कि रेड क्रिसेंट डे भी इसे कहते हैं, तो उस समय इसकी जो आरंभ है वो हुआ पूर्णिमा। और सभी लोगों के लिए एक स्वभाव रखते हैं जो ये हमारी रेड क्रॉस की कम्युनिटी है, और वो है इंसानियत का भाव। अभी हम बोल चुके हैं कि इसके वॉलंटियर जो दुनिया भर में इमरजेंसी में आ गया।

0: करते हैं, बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए इन्हें।
1: बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए दिल से वो जज्बात। हमेशा कहते हैं ना शिप्रा की ये एक जो भावना है वो हर किसी के मन में दूसरे के लिए होनी चाहिए। तो डियर इन्वो लिसनर्स, हमें बताइए कि रेड क्रॉस का मतलब आपके लिए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूवमेंट है या एक जज्बा है? शेयर कीजिए हमसे अपने जवाब या अपने क्या कभी रेड क्रॉस के साथ कदम से कदम मिलाकर दूसरों के हेल्प की है। तो ये आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और अब हम शेयर कर रहे हैं, एक खूबसूरत सा गाना पहुंच रहा है आप तक।

0: पूर्णिमा देख रही हैं आप कि हमें कितनी सारी ईमेल्स मिल रही हैं, एक के बाद एक पॉपअप होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज है, ये है शैलेश कुमार का, जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्षगांठ पावन अवसर पर आकाशवाणी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है शिप्रा जी और पूर्णिमा मैडम मैडम को प्यार भरा नमस्कार। और
1: हमारा भी नमस्ते है।
0: बिल्कुल, और पूर्णिमा जी की इसमें तारीफ लिखी है और लिखा है कि इनकी आवाज के साथ सभी घरों में रौनक आ जाती है, और पूर्णिमा जी की आवाज सुनते ही इनकी तबीयत जो कुछ खराब थी अपने आप ठीक हो गई। तो भाई पूर्णिमा, आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है,
1: थैंक
0: बहुत
1: यू, थैंक यू सो
0: शानदार
1: मच।
0: है।
1: और इन्होंने लिखा है कि मैं इस हफ्ते, इनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है, इनका फोन टूट गया है, और लिखा है कि कल इनका ब्रेसलेट भी कहीं गिर गया। और भाई ये सब चीजें होती
0: तो
1: रहती
0: लाइफ
1: है
0: में
1: ना।
0: होती रहती है ना। तो इसके लिए तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता है। और
1: हाँ
0: हम पढ़ते हैं, हमारी दूसरी मेल आई है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: रोशनी रावत की।
1: इन्होंने भी हमें और यानी पूर्णिमा और शिप्रा को नमस्ते बोला है और लिखा है, मैम आप दोनों कैसी हैं? हम शिप्रा बहुत अच्छे हैं ना।
0: जी बिल्कुल,
1: और लिखा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आज से 90 वर्ष आकाशवाणी को पूरे होने की बहुत बहुत बधाई है। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बहमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से उन्होंने मेल किया है, चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम को सुन रही हैं। और इन्होंने लिखा है कि हमारे इस मैसेज के जरिए ये नीलू शर्मा दीदी, बबीता राव जी, सभी को राधे राधे जो है हम बोल दें। तो भाई कह दिया
0: और
1: है।
0: पूर्णिमा, आज सोशल मीडिया पे हमारे लिसनर्स जुड़े हैं तो मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो क्या करते हैं हम उनके नाम पढ़ देते हैं कि
1: बिल्कुल
0: हमसे कनेक्ट हुए हैं। तो उत्तम सिंह जंगेल का नाम शामिल कर रहे हैं और साथ में गोविंद वैष्णव है, जिला
1: ओरिजिनल।
0: राजगढ़ मध्य प्रदेश, ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़।
1: और
0: और
1: ये है राम कुमार रेवाड़ जी, इन्होंने हमें मैसेज किया है सादुल असहा राजस्थान से।
0: आकाशवाणी कानपुर को हार्दिक शुभकामनाएं दी है 90 ईयर्स के लिए। और शेख मूसा लिखते हैं, नमस्कार आदाब, खैरियत में हैं आप, दुआ में याद रखिएगा। अजीत कसाना लिखते हैं कि इनकी पहचान ही आकाशवाणी से है। और खिल्लू परवेज ने भेजा है नमस्कार, और साथ
1: और साथ ही
0: में
1: अजीत कसाना जी ने भी और विश्वनाथ साहू जी ने भी मेल की है, मैसेज किया है। और जो है जगमोहन सिंह प्रजापति जी हैं, इन्होंने मेल किया है मैं बागपत से। और साथ ही राजेश कुमार वर्मा जी ने मेल किया है, और बहुत सारी मेल्स हैं। शिप्रा भोजराज खेलवाल
0: हाँ
1: की जी जी की मेल हमें आई है उत्तम नगर दिल्ली से। और इसके बाद हमारी मेल आई है सोलन कौन सी किसकी है, दुर्गा
0: चर डोगरी पिपरिया, जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से, दुर्गा राम साहू, अजय कुमार जय किशन और श्रीमती कुमारी साहू। और ये तो सिलसिला आगे बढ़ता चला
1: बढ़ता
0: जा रहा
1: चला
0: है।
1: जा
0: बिल्कुल
1: रहा
0: पूर्णिमा, हम बाद में फिर से और मैसेजेस लेंगे, लेकिन इससे पहले एक जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मन के हारे हार है और मन के हारे मन के जीते
1: जी।
0: जीत
1: क्या बात
0: है।
1: है दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग ना है ना बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और सच तो ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे जब बहुत सारी ऐसी हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कंडीशन ऐसी होती है शिप्रा, कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अगर आप एग्जाम्पल की बात कर रही हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, इनका
1: बिल्कुल
0: एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिन्होंने छोटे से शहर रांची से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, तब कितने लोगों ने कहा होगा कि भाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें इनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे, और पूर्णिमा ये भी शेयर
1: बिल्कुल।
0: करते। और
1: तो ऐसा ही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो एक साधारण परिवार से थे। और इस महान वैज्ञानिक ने कई असफलताएं देखी, रॉकेट लॉन्च जो है इनका था वो फेल हो गया, बहुत सारी आलोचनाएं सही, लेकिन उनका मन कभी नहीं रुका शिप्रा। और आज ये हमारे बीच मिसाइल मैन बनकर पूरे देश का गर्व बने हुए हैं।
0: बिल्कुल, मिसाइल मैन जो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। बिल्कुल। और सिनेमा की भी बात कर लेते हैं पूर्णिमा,
1: बिल्कुल
0: और जो जिनकी बात करने वाली हो वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। और जब मुझसे कोई ये कहता है कि भाई एज फैक्टर मेरा हो गया है, तो मैं उनको ये एग्जाम्पल देती हूँ कि अमिताभ बच्चन को देखिए आप, है ना।
1: क्या बात है, उनको देख कर ही ना बस वाकई वो पर्सनालिटी हैं। और उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हम एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं शिप्रा, कि एक समय ऐसा उनकी लाइफ में भी था कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, करियर शायद खत्म सा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने हार न मानी। और फिर उन्होंने एक जो शो है उनका सुपरहिट
0: जी
1: सुपरहिट
0: जी
1: चला कौन बनेगा करोड़पति से, एक नई शुरुआत करके उन्होंने फिर से अपने आप को एक शिखर पर पहुंचा
0: तो
1: दिया।
0: बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम देखें तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर की है। और लिसनर्स, डियर रेनबो लिसनर्स, अगर

हार मान ली है आपने, जबकि जीत एक कदम दूर थी, तो सिर्फ अफसोस के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो बाजी पलट दीजिए, आपके अंदर जुनून है, आत्मविश्वास है, और बढ़िए लाइफ में आगे।

0: वाकई जिंदगी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देकर जाती है शिप्रा, और इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, है ना?
1: बिल्कुल, स्वयं सहायता समूह की बात करने वाले हैं हम जो कानपुर में है, त्रिनेत्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे ये साबित कर दिया कि अगर महिलाएं साथ आ जाए तो हालात बदल सकते हैं, समझ के पूर्णिमा, हम साथ साथ हैं,
0: हम साथ साथ हैं। और ऐसा ही एग्जांपल के साथ आज हम हैं आपके साथ कि कानपुर में एक बहुत भी प्रेरणादायक एग्जांपल हमारे बीच है, जो त्रिनेत्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर महिलाएं वाकई पास है ना तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं।
1: बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। और इनकी भी कहानी बता देते हैं, कहानी इनकी शुरुआत है छोटे मोटे काम से शुरुआत हुई पूर्णिमा। तो क्या हुआ, ये जो त्रिनेत्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें क्या हुआ, हमारी सखियां सहेलियां थीं जिन्हें छोटा छोटा काम आता था, किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, किसी को बिनाई, और कोई आर्ट में बहुत माहिर थी, तो घरेलू काम और साथ में ये भी करती थी। तो ये क्या है, आर्थिक स्थिति जो है इनकी कमजोर थी और इनमें आत्मविश्वास भी कम था, लेकिन कहते हैं ना एकता में क्या होता है,
0: बहुत ताकत होती है,
1: बल होता है, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क।
0: और जब ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो उन्हें मिला माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे छोटे लोन, स्किल ट्रेनिंग और आपस में सहयोग और

0: मीठा मीठा।
1: बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग शिप्रा आपने हमें सुनाया और हमारे लिसनर्स ने भी इसे बखूबी इंजॉय किया। पर अब वक्त है बहुत ही अच्छे से सेगमेंट का, यानी कि जिसका हमारे लिसनर्स करते हैं इंतजार, वो है रेसिपी की बात।
2: और इसलिए ये इतनी जल्दी जल्दी बता रही है पूर्णिमा जी, क्योंकि ये लेकर के आई है एक ऐसी रेसिपी जो खाने में तो स्वादिष्ट है ही और साथ में हेल्दी भी है। और क्या है वो रेसिपी?
1: ये है बाजरे और ज्वार का चीला। बहुत ही हेल्दी है, आयरन, प्रोटीन और फाइबर है इसमें। साथ ही इसको बनाना भी ना बहुत ही इजी है शिप्रा। इसके लिए आपको लेना है आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप ज्वार का आटा, एक कप बारीक कटा प्याज, एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया गाजर, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, जीरा आधा चम्मच और पानी अपनी जरूरत के अनुसार, साथ ही थोड़ा सा ऑयल।
2: बिल्कुल। और इसको बनाते कैसे हैं पूर्णिमा, ये भी हमारे लिसनर्स से शेयर कर दीजिए। आपने सामग्री तो बता दी है।
1: जी हाँ, तो एक बड़े से बर्तन में आपको बाजरे और ज्वार के आटे को मिलाना है, मिक्स करना है। इसमें प्याज, टमाटर, गाजर या जो सब्जियां इस समय सीजनल में है आपको पसंद है उन्हें भी छोटा छोटा बारीक काट करके मिक्स करना है। हरी मिर्च, धनिया, नमक और जीरा, इन सबको मिलाना है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके चीले जैसा घोल तैयार करना है। तवा गर्म करना है, उसमें हल्का सा ऑयल लगाना है और घोल को बराबर से फैला करके दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकना है। और दही या हरी चटनी या जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहते हैं उन्हें उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है शिप्रा की ये ना हमारे वजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी और ठंडक भी देता है।
2: ये जो वजन कंट्रोल करने वाली बात करी है, ये लगता है आपने मुझे देख करके करी है पूर्णिमा। इंटेंशनली करी है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं
2: जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मेरे लिए बेस्ट है ये रेसिपी। और आपके बता

0: हमारी बॉडी को एनर्जी और ठंडक भी देता है।
1: ये जो वजन कंट्रोल करने वाली बात करिए, ये लगता है आपने मुझे देख करके करी है पूर्णिमा, इंटेंशनली करी है।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं है।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मेरे लिए बेस्ट है ये रेसिपी, और आपके बताते बताते ये रेसिपी बन के मेरे सामने आ गई है। तो मैं तो अभी इमेजिनरी बाजरे और ज्वार का छीला खा रही हूँ, और आप इमेजिनरी इस गाने के साथ खो जाइए।

0: पहले हम कुछ मैसेजेस पढ़ देते हैं शिप्रा, जो हमारे आकाशवाणी के 90 साल के जश्न के लिए हमारे लिसनर्स ने हम तक पहुंचाए हैं।
1: 90 इयर्स की बधाइयां भेजी हैं हमें जो हमारे लिसनर्स हैं। तो मैसेजेस सबके सेम ही सेम है, तो क्या करते हैं नाम शामिल कर लेते हैं। लाडला जी हैं और रवि कुमार राहुल हैं, ताज अंसारी हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी, कमाल सिंह, और
0: फिर इसके बाद हमें मेल मैसेज किया है इंद्रजीत मल्होत्रा जी ने, साथ ही फारूक अली खान जी ने हमें मैसेज किया है और लिखा है कि आज सिस आप दोनों को हमारा नमस्ते। उन्होंने लिखा है आकाशवाणी के 35 साल हो गए हैं, 35 साल नहीं 90 साल हो चुके हैं, है ना। रेडियो सुनना हमारा शौक, मतलब एक शौक में शामिल हो चुका है और रेडियो से जुड़ी बेशुमार यादें हमारे साथ हैं। ये मैसेज किया है हमें कस्बा गुंडैर यूपी से फारूक अली खान साहब ने।
1: फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा के नाम भी शामिल हैं इसमें। और रेहाना खान बकर पंजाब से कनेक्ट हुई हैं प्रोग्राम के साथ। अजीत भवसार ने आकाशवाणी की बधाई दी है। सुरेश राठौर ने लिखा है और इनका मैसेज पढ़ लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आकाशवाणी कानपुर के 90 ईयर्स पूरे हुए, इसके लिए आकाशवाणी केंद्र निदेशक और तमाम स्टाफ मित्रों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गांधीनगर गुजरात से ये हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल, और आपके साथ निशा का नाम शामिल है। और
0: इसी के साथ ही मैसेज में आया है गुरमीत सिंह मीता जी ने, इन्होंने भी हमें बधाई दी है। और निसार सलमानी जी का भी हमें मेल मिला है। नवी हसन अब्बासी जी ने हमें मेल किया है, हमें बहुत सारी बधाइयां दी हैं। साथ ही एक मैसेज हमें आया है जमीन कुमार जैन जी का, इन्होंने हमें प्यार भरा आदाब भेजा है, सलाम भेजा है राजकुमार कोर्ट से। जमीन कुमार जैन और हेतल जैन, कृष्णा और राकेश जैन जी ने भी हमें जो है अपना ये मैसेज हमें पहुंचाया है।
1: उत्तम कुमार भगत ने लिखा है नाइस। तो चलिए, और अब बातों का समय, बातों का ये सिलसिला रोकना पड़ेगा पूर्णिमा, क्योंकि टाइम हो चला है लिसनर से अलविदा कहने का। तो लीजिए हमें अनुमति, नमस्कार हम नवा प्रोग्राम से।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं मिलूंगी आपसे दिन में 3 बजे म्यूजिक आर प्रोग्राम और आपकी बहुत सारी मेल्स के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम में। तो बस हमें रखिए अपना खास ख्याल और टेक केयर, बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार 25 मई को शपथ लेगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। टीवी के को समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न दलों की बैठक आज होगी। आकाशवाणी की स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य के भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की सुविधा भी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी 8 मई से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 2,71,093 सीटों के सापेक्ष अब तक 3,80,000 से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। शिल्पी आ चुकी है आपके लिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर। फ्राइडे का दिन और फ्राइडे को भाई हम स्वयं सिद्धा में बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनकी लाइफ से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और डेफिनेटली हम ऐसी महिलाओं से कभी कभी आपकी बातचीत कराते हैं और कभी कभी हम खुद उनके बारे में आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया और उनके लाइफ में भी कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब जो भी अचीवर होता है उससे आप देख कर कहते हैं अरे इन्होंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो उनकी लाइफ यानी सक्सेस जर्नी होती है उसको अक्सर छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनको भी कहीं प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपको लगता है कि इनके हाथ में तो फटाफट ये मिठाई आ गई होगी जो आज मुकाम पर पहुंचे, जिस मुकाम पर हैं। तो भाई किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो उनको ओवररूल करके आगे बढ़ता है यानी उन दिक्कतों से घबराता नहीं है, उनसे लड़ता है और आगे बढ़ता है, वही सक्सेसफुल होता है। और भाई आज एक खास दिन भी है, आज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। मतलब ये पूरा सप्ताह ही रोड सेफ्टी को डेडिकेटेड है। 8 से 12 मई मनाया जा रहा है और WHO इसे होस्ट करता है। और आप जानते हैं कि क्यों रोड सेफ्टी जरूरी है, भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें हम आपसे बातें भी करेंगे और कुछ उन महिलाओं के बारे में बताएंगे जो जिन्होंने काफी उम्र होने के बावजूद भी ड्राइविंग में अपने हाथ मतलब चलाए और उन्हें लगा कि नहीं ये मुश्किल काम नहीं है और बड़े बड़े ऐसे वाहनों को हाथ लिया जो लगता था कि ये कोई महिला नहीं कर पाएगी, और उन लोगों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वयं सिद्धा में एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद बातचीत का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही आज एक बहुत स्पेशल डे, उसके बारे में भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे किसी स्पेशलिस्ट से। बस सब कुछ है इस प्रोग्राम में, जाने के लिए जुड़े रहिए हमसे यानी 100.7 FM रेनबो से, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया जाएगा पूरा 8 से 12 मई तक। और आपको ये भी बता दें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। भाई होता यह है कि सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें नहीं होती हैं, जिनको बढ़ावा देना इस जो वीक मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है। साथ ही जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होते हैं, उनको लेकर अवेयरनेस फैलाना, और जो पैदल यात्री होते हैं या फिर साइकिल राइडर्स, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। और आपने कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं लोग, या फिर इंजर्ड ही नहीं होते, अपनी जान तक खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं। तो भाई आपको बताएं कि कई ऐसे जब किस्से आप पढ़िए तो आपकी भी आंखें नम हो जाती हैं।

0: मदद की है।
1: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आज यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये मनाया जाएगा पूरा 8 से 12 मई तक। और आपको ये भी बता दें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। भाई होता यह है कि सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें नहीं होती हैं, जिनको बढ़ावा देना इस जो वीक मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है। साथ ही जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होते हैं, उनको लेकर अवेयरनेस फैलाना, और जो पैदल यात्री होते हैं या फिर साइकिल राइडर्स, उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। और आपने कई बार अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं लोग, या फिर इंजर्ड ही नहीं होते, अपनी जान तक खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं। तो भाई आपको बताएं कि कई ऐसे जब किस्से आप पढ़िए तो आपकी भी आंखें नम हो जाती हैं।

उनको लगा कि नहीं, अब ये काम उन्हें करना चाहिए और बखूबी किया और लोग उन्हें इसीलिए मनी अम्मा कहते हैं। और साथ ही ड्राइविंग, इतनी बड़ी बड़ी चीजें गाड़ियां चलाती हैं तो उनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो इनके बारे में और भी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले खूबसूरत से ट्रैक आपके लिए वेट कर रहा है, हम प्ले कर देते हैं।

जी तो केरल की राधा मनी उर्फ मनी अम्मा की हम बात कर रहे हैं, और मनी अम्मा जिन्हें कई लोग ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं। और आपको बता दें वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के व्हील ऐसे घुमाती हैं जैसे कोई बड़ी बात ना हो। 10th का एग्जाम देने के बाद उनकी हो गई थी शादी और 1978 में उनके पति ने खोला ड्राइविंग स्कूल। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पति का देहांत हो गया तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना और जीवन जीना ये जीवन की रीत है। फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने ये स्कूल खुद संभाला और यहीं से शुरू हुई उनकी ड्राइविंग की जर्नी। तो ड्राइविंग की जर्नी उन्होंने क्या किया और कैसे अपने आप को इस फील्ड में वो लाई और कैसे हिम्मत जुटाई, ये सब जानेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले हम तो यही कहेंगे कि चाहे ड्राइवर अम्मा हो या फिर कोई और, जिंदगी में आगे बढ़ना ही जिंदगी की पहचान है। तो अगर आप भी कहीं आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में या जिंदगी में ब्रेक लग गया है तो बस उस ब्रेक को छोड़िए, आगे बढ़िए और बस संभलते हुए जिंदगी की मजे लीजिए।

0: जी 12:29 और 15 सेकेंड 100.7 FM रेनबो पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्वयं सिद्धा। और ये जो सफर था हम आपको जो बता रहे थे मनी अम्मा जी का, वो जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा था ना, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आज है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। तो इस विषय में हम बात कराएंगे आपके एक्सपर्ट से और साथ ही उनका बहुत बहुत पहले हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह जी, जो गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बात करते हैं उनसे इस विषय में भी और साथ ही उनसे कुछ उनकी भी बातें करेंगे। हेलो
1: हेलो
0: जी डॉक्टर निशा सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में।
1: जी नमस्कार, थैंक यू
0: जी। डॉक्टर साहब, हमारा जो ये प्रोग्राम होता है स्वयं सिद्धा, वो डेडिकेटेड होता है उन महिलाओं को जिनसे हमारे तमाम लिसनर्स जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो प्रेरणा ले सकें। तो डॉक्टर निशा सिंह जी, सबसे पहले तो आप जो आज का दिन उसके बारे में तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी बात। जब आप इस फील्ड में डॉक्टर आपने बनने को सोचा तो कुछ मन में दुविधा थी कि आगे बढ़ जाऊंगी या फिर दिमाग में कुछ परेशानियां चलती थी बींग ए फीमेल?
1: somehow शायद मेरा हमेशा से बचपन से माइंड में था कि डॉक्टर बनना है
0: जी,
1: और कोई दुविधा थी नहीं इसके बारे में
0: जी।
1: मालूम था कि डिफिकल्ट होगा। मेरे कजन फैमिली में एक कजन ब्रदर थे जो कि मेडिकल में जा चुके थे उस समय तक
0: जी,
1: जब हम तो और फैमिली से भी कुछ था ऐसे कुछ कि डॉक्टर बनना है
0: जी जी,
1: तो कोई दुविधा तो नहीं थी। बट बीइंग अ फीमेल टफ होता है ये मालूम था, और जब एक्चुअली किया तो पाया कि हाँ सच में डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप सोच लें और अगर आपका पैशन है तो मैनेज हो जाता है।
0: मैम, आपकी जो फील्ड है ऑन्कोलॉजी की फील्ड, इसमें ये बहुत डिफिकल्ट और कई चैलेंजिंग है, क्योंकि काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जो जब भी कैंसर नाम का शब्द सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं। और आप एज ए डॉक्टर उनको कैसे बताती हैं कि भाई आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कई सारी

0: चीजें ऐसी होती हैं जिसे अर्ली अगर आप नोटिस कर लें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो एज ए डॉक्टर आपका क्या इस बारे में एक्सपीरियंस रहता है, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए।
1: हाँ, तो मैं थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहूंगी कि जैसे ये हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एक नया डिपार्टमेंट खुला है, गायनेकोलॉजिकल ऑनकोलॉजी,
0: वो
1: हम लोग स्त्री कैंसर रोग विभाग भी कहते हैं।
0: जी,
1: और एक्चुअली काफी लोगों के मन में ये थोड़ा सा मैं क्लियर इसलिए भी करना चाहती हूँ, एक कैंसर स्पेशलिस्ट कौन होता है। तो लोग जो है एक्चुअली किसी भी जगह के कैंसर का ट्रीटमेंट तीन तरह से होता है, या तो सर्जरी से होता है, या रेडिएशन से होता है, या कीमोथेरेपी मेडिकल ऑनकोलॉजी। तो तीनों स्पेशलिटी अलग होती है, एक तो ये चीज है। तो रेडिएशन ऑनकोलॉजी के डॉक्टर अलग होते हैं, मेडिकल ऑनकोलॉजी के अलग होते हैं, और सर्जिकल फील्ड्स जो हैं उसमें यूजुअली जिस एरिया का है उसके डॉक्टर्स अब खुद ही उसका इलाज करते हैं।
0: जी,
1: एक जनरल कॉमन फील्ड होती है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो हेड टू टो सभी जगह के बारे में जानते हैं और करते आए हैं, लेकिन पिछले दो दशकों से हर एरिया के कैंसर का उस एरिया के स्पेशलिस्ट ही सर्जरी करते हैं। तो मैं जैसे बेसिकली गायनेकोलॉजिकल जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उसी में जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं, वही फर्दर स्पेशलाइज करके अपनी नॉलेज और अपनी वो बढ़ाकर उस चीज में काम करते करते एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट डेवलप होते हैं।
0: जी,
1: कुछ समय से इसकी डिग्री भी शुरू हो गई जिसको एमसीएच गायनी ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो नए बच्चे जो आते हैं वो डायरेक्टली पीजी करने के बाद इसमें एमसीएच भी करके गायनी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो एक तो ये चीज हुई। तो हम लोग बेसिकली सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का, जिसमें यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और फेलोपियन ट्यूब बल्बल कैंसर, ये वाले आते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर
1: जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है आज, और इसकी जो ऑफिशियल थीम है वो नो वुमेन लेफ्ट। तो डॉक्टर साहब, बस हम अपने सभी लिसनर्स के लिए ये खास तौर पर आपसे जानना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है ना, महिलाएं अपनी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अनदेखी करती हैं कि भाई हम ठीक है, मतलब पहले फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको वो ओवरलुक करती रहती हैं, और अक्सर इस ओवरलुक के चक्कर में उनको कई बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इस खास दिन के मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं हमारी खासतौर पर जो महिलाएं प्रोग्राम सुन रही हैं उनसे?
1: तो जो ओवेरियन कैंसर डे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बात आपने कही कि महिलाएं अनदेखी करती हैं कुछ लक्षण की और अपने बारे में कम सोचती हैं, ये इस पर कुछ ज्यादा फिट बैठता है
0: जी।
1: क्योंकि इसके थोड़े लक्षण बहुत क्लियर नहीं होते, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल के होते हैं जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है तो लोग चले ही जाते हैं दिखाने
0: जी जी।
1: लेकिन ओवरीज में अगर कोई ट्यूमर होता है अंडेदानी में, तो आमतौर पर जो लक्षण है वो इस तरह के होते हैं कि पेट फूलना, खाना ठीक से ना पचना, भूख कम लगना, तो जो कि एक बड़े जनरल टाइप के सिम्टम है, या एसिडिटी होना। कई बार मरीज इसके लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा रहे होते हैं
0: जी।
1: और कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो इस पर मेनली मेरा कहना यही है कि अगर आपको लंबे समय तक अपच की शिकायत है, या भूख नहीं लग रही है, या पेट फूल रहा है, या पेट में कुछ भारी भारी पन सा बना रहता है, तो अगर ये नहीं ठीक हो रहा है, आपके सिंपल एंटासिड और जो भी आप वैसी दवाइयां लेते हैं, कई बार घरेलू नुस्खों पे भी चल रहा होता है।
0: जी, जी, जी।
1: कई बार मरीज सोचते हैं कि मेरे पास, स्पेशली पिछले साल भर के अंदर मैंने देखा 3-4 मरीज ऐसे आए जो कह रहे हैं हमें लग रहा था वजन बढ़ रहा है और हम जिम जा रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो जरूर एक बार सोचिए कि कहीं ये लक्षण किसी अंडेदानी के, मतलब जो यूट्रस या ओवरीज में बढ़ने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें और कोई लक्षण नहीं आएगा, सिर्फ पेट फूलना और अपच की शिकायत या भारीपन लगना यही होगा। तो अगर महीना भर भी कोई चीज ऐसे चल रही है और नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप उसके लिए जरूर डॉक्टर को दिखाएं, यही मेरा संदेश है। क्योंकि ये ओवेरियन कैंसर ऐसा है जो आमतौर पर हमारे पास स्टेज 3 या 4 में ही आता है, अर्ली स्टेज में कम पेशेंट आते हैं, क्योंकि वही एक तो ये ग्रो जल्दी करता है बहुत फास्ट, और दूसरा मरीज भी थोड़ी देरी कर देते हैं
0: जी।
1: तो दोनों मिलाकर वो उनके लिए इलाज तो हो जाता है लेकिन उसका जो रिस्पांस रेट है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये

0: ओवेरियन कैंसर की बात है, तो डॉक्टर साहब लंबे समय से जिसको ये प्रॉब्लम रहा है डाइजेशन वगैरह के लिए, और अगर डाइजेशन की दवाओं से भी फायदा ना हो रहा वही संपर्क करे गायनोकोलॉजिक को, या फिर स्कैनिंग वगैरह के थ्रू भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, स्कैन करा के जैसे होते हैं कि कहते हैं कि
1: अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा डेफिनेटली, बट कोई अल्ट्रासाउंड के लिए कहेंगे तभी पता चलेगा ना
0: जी
1: अगर
0: जी
1: आप,
0: जी
1: तो अल्ट्रासाउंड तो होना ही होता है, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर्स देख लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि अल्ट्रासाउंड कराना है, किसी की कराना है,
0: जी जी जी
1: मतलब किस लेवल की चीज है, कौन सी इमेजिंग करानी है, कोई ब्लड टेस्ट भी होते हैं
0: जी
1: जिनसे डायग्नोसिस में हमें आइडिया मिलता है कि किस टाइप का है,
0: जी जी
1: मतलब ओवरी ऐसा ऑर्गन है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो अलग अलग तरह के कैंसर उसमें या ट्यूमर डेवलप होते हैं, तो
0: जी
1: ब्लड टेस्ट से हमें भी काफी जानकारी मिलती है, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से तो उसका साइज और उसकी कहाँ तक ग्रोथ है वो पता चलता है,
0: जी
1: लेकिन वो किस तरह का है, उसका व्यवहार कैसा है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वो ब्लड टेस्ट में कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं उनसे पता चलता है।
0: जी और ये कितने हद तक क्योर किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
1: तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, मतलब जब एक ही ओवरी इन्वॉल्व है और उसके ओवरी के बाहर नहीं फैला है,
0: जी
1: तो इसका 90% तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स रेट
0: जी
1: होता है,
0: जी
1: और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है जो मैंने बायोलॉजिकल कैरेक्टर,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: हाई ग्रेड टाइप होते हैं, एग्रेसिव टाइप के होते हैं, और कुछ लो ग्रेड टाइप के होते हैं, उस
0: जी
1: पर भी मैटर करता है, बट स्टेज पर भी करता है, तो
0: जी
1: अगर अर्ली स्टेज है तो 90% तक, और अगर एडवांस्ड हो जाती है तो फिर 50-60, मतलब बहुत एडवांस्ड हो तो 50% तक ही फिर सर्वाइवल रेट रहता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब आपने आज खास दिन पर यानी वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के आज दिन पर, जो खास तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे इग्नोर ना कीजिए, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि नॉर्मल दवाओं से नहीं सही हो सकते हैं, तो तुरंत आप एक सलाह लीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, मिलिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है। अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ होती है, अर्ली डिटेक्ट हो जाती है तो सही हो जाती है। और हम डॉक्टर निशा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं खास तौर पर इस चीज के बारे में अवेयर हों और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करके अपनी समस्या का निदान पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू वेरी मच, मुझे भी एक मौका मिला इंटरेक्ट करने के लिए, थैंक यू।
0: जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी तो ये थी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर निशा सिंह जी, गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जिनसे हमने बात की आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: बारह बजकर 44 मिनट हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, स्वयं सिद्धा शिल्पी आपके साथ है और हमने आज स्टार्टिंग में बात करी थी रोड सेफ्टी के बारे में और उसी के बारे में बात करी थी, लेकिन उस बीच में हमने बात कर ली आज के खास दिन के बारे में, आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के बारे में बातचीत करी ताकि हम आपको अवेयर कर सके। और साथ ही डॉक्टर निशा ने जैसा बताया कि मुश्किल था लेकिन इस फील्ड में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया। तो आप भी जो भी हमारी साथी महिला साथी है, कुछ बनना चाहती हैं, जो भी लड़कियां आजकल जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, तो केवल ये एक फील्ड नहीं है, किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल हौसला बरकरार रखिए और देखिए फिर कैसे मंजिल को आप छू लेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे राधामणि अम्मा के बारे में, जो भारत की इकलौती ऐसी महिला ड्राइवर हैं जो कुछ भी ड्राइव कर सकती हैं। उन्होंने ड्राइविंग तब सीखी जब महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थीं, तब उन्होंने बड़े बड़े व्हीकल्स चलाना सीख लिया था और इससे उनकी हिम्मत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके जो मोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस होने का है, उन दर्ज है रिकॉर्ड के नाम पर कि सबसे ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस उनके नाम है, यानी 76 इयर्स ओल्ड अम्मा के नाम, राधामणि अम्मा जिन्हें ड्राइवर अम्मा भी कहते हैं। और ये शुरुआत तब हुई थी ड्राइविंग की जब कुछ उनके ऊपर दिक्कतें आई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और फिर जिंदगी में क्योंकि आगे बढ़ना है, जीवन रुकता नहीं है और आपको कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना पड़ता है, और यही जज्बा समेटे राधामणि अम्मा ने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जिंदगी में एक मकाम हासिल किया। हम आज बस यहां पर ये कहेंगे, लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट फियर नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, और ये बात अम्मा पर बिल्कुल फिट बैठती है।

जी हाँ, हो गया है प्यार, और प्यार जब आपको अपने काम से हो जाता है तो फिर वो काम समझ लीजिए उसमें चार चांद लग जाते हैं, और वो काम कितना सक्सेसफुली होता है ये तो आपको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है। बहरहाल 12:50 हो गए हैं, प्रोग्राम लगभग वाइंड अप करने की ओर है, लेकिन चलते चलते हम बता देते हैं आपको योगिता रघुवंशी के बारे में, जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में जानी जाती हैं। और आज हम ड्राइवर्स की बात हमने इसलिए करी यहाँ पर जो फीमेल ड्राइवर्स हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को कहा जाता है कि भाई ये महिलाओं के लिए नहीं है, कहाँ वो ट्रक चलाएंगे, कहाँ वो जेसीबी चलाएंगे। लेकिन देखिए, अगर जज्बा है और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। योगिता अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, लॉ में डिग्री हासिल की है उन्होंने, लेकिन हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन को मोड़ दिया। और वो क्यों दिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने अपने घर के कुछ कामों के लिए किसी ड्राइवर को अपॉइंट किया, लेकिन

जब लगातार उन्होंने देखा कि इसको रखने के बाद हमें नुकसान हो रहा है, यानी खुद वो मोर्चे पर नहीं है, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया और उसके बाद उन्हें लगातार नुकसान होता रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ये कमान खुद संभालती हूँ। और उसके बाद उन्होंने ड्राइविंग में कदम रखा और उनका जो पहला सफर था वो भोपाल से अहमदाबाद तक का रहा। योगिता खुद कहते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया था कि बस जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, समाज को संदेश देना चाहती हूँ, और खास तौर पर वो ये बताना चाहती थी कि बेटे और बेटी में कभी भी भेदभाव ना कीजिए, बेटियों को भी पूरा मौका दीजिए। और उनका कहना यह है कि हम बेटियां भी बेटों से किसी भी तरह से कम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बात आज जो हमने मनीम्मा की करी या योगिता गिरवंशी की करी या फिर डॉक्टर निशा जी से हमने बात करी, आप देखिए सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कितनी स्टैब्लिश हैं, और जाहिर सी बात है कि उन तमाम महिलाओं के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है जो घर से निकलने से डरती हैं या फिर कुछ करने से पहले 10 बार सोचती हैं कि जिंदगी में कदम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जरूर आपका हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम आप तक ऐसी महिलाओं के बारे में कुछ बातें पहुंचाएं, उनके जीवन से जुड़ी ऐसी बातें जो आपको इंस्पायर कर सकें। और अगर आप इंस्पायर होती हैं, लाइफ में कुछ कर लेती हैं, तो यकीन जानिए कि हम इस जो मिशन है उसमें सक्सेसफुल होते हैं। स्वयं सिद्धा प्रोग्राम ही हमारी सब

12:56 हो गए, प्रोग्राम स्वयं सिद्धा को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पी को प्रोग्राम स्वयं सिद्धा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने प्रदेश भर में लगे सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 20 मई 2026 तक पूरी कर स्वीकृत पत्र जारी किए जाए, साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को 20 नवम्बर तक हर हाल में पूरा किया जाए। समीक्षा बैठक में आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी 8 से 11 मई तक अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। प्रदेश में उपलब्ध कुल 2,71,093 सीटों के सापेक्ष अब तक लगभग 3,80,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में देर शाम बारिश हुई, जबकि गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: प्रोग्राम होठों पे तेरी बात लेकर हाजिर हो गई शिल्पी एक बार फिर 100.7 FM रेनबो पर, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की। पर दोस्तों, 1:03 का जो समय है, ये समय पर हम आपको टॉपिक बताते हैं जिस पर हमें व्यूज चाहिए। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे का दिन है, तो आज वॉक्स पॉपुलाई, यानी कि हमने लोगों से बातचीत करी और हमने उनको टॉपिक बताया और उनसे बातचीत करके उनके विचार जाने। लेकिन हाँ, आप भी फ्री हैं बिल्कुल मेल करने के लिए। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। जो अच्छे मेल्स हैं उनको जरूर पढ़ा जाएगा। और साथ ही, इससे पहले कि आप जाने हमारा टॉपिक क्या है, हम खुद ही बताते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे जानेंगे जब तक हम नहीं बताएंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, अक्सर लोग कहते हैं ना, समय पे काम कर लो तो अच्छा रहता है, समय पे उठ जाओ तो अच्छा रहता है। लेकिन कई लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या करना, जब मन करेंगे तब कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, यानी आज के काम को कल पर टालते रहते हैं। जबकि बहुत पुराने लोग, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब इस चीज पर फोकस करते हैं कि भाई, काम जो है जब आपने सोचा है तभी आप कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। यानी एडवांस में काम रहता है तो आसानी रहती है। तो आज का हमने टॉपिक यही लिया कि भाई, आप क्या सोचते हैं कि समय प्रबंधन लाइफ में कितना नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, और आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, कि नहीं कर पाते, ये भी आप हमें बताइए। आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, और आपको क्या लगता है कि वाकई में टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन की कोई जरूरत है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको वो रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे जो हमने लोगों से बातचीत करी और उनके व्यूज जाने। तो बस इंतजार किस बात का, बस कुछ ही पलों में हम ये रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे। एक गाना प्ले करने जा रहे हैं और उसके बाद इलाकाई खबरें होंगी, और उसके बाद होठों पे तेरी बात का ये सफर रहेगा जारी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: मुख्यालय योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।

वज़ारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्ट पेड मोड में चलाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई ए के शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्ट पेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायत के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेड क्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेड क्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: इलाकाई खबरों के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और आज हमने आपसे जो टॉपिक कहा है वो टॉपिक ये है कि भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं भाई सब काम टाइम पे करो, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस है टाइम की कि जो भाई सोचा है वो कर लो, लेकिन लोगों ने इसको पलट दिया कि काल करे सो परसों, है ना। तो आपके हिसाब से ये बताइए कि भाई समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है लाइफ में, और आप किस हद तक अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं या फिर टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं वो भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि नहीं आपको सुधार की जरूरत है, आपको लगता है कि नहीं अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेते तो ये काम और अच्छा से कर सकते थे। तो इसी बारे में हमने कुछ लोगों से बात की, क्योंकि आज फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन हम आपसे लोगों की जो बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं जो हमें मेल्स करते रहते हैं उनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो fmakashwani@gmail.com पर हमें आप मेल कीजिए, ताकि आप अपने व्यूज भी हमसे शेयर कर सके, और अगर आपके व्यूज बहुत अच्छे लगेंगे तो जरूर हम उनको शेयर करेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिलहाल हमने बात की पार्थ श्रीवास्तव से, देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: हमें अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समय को प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और यह पूरी तरीके से सच भी है। समय ही सच्चा धन है, टाइम इज मनी। यदि हमें समय को सही ढंग से जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करना आ गया तो हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। जहाँ तक मेरे जीवन में समय को प्रबंधित करने की बात है, तो मैं अपने जीवन में समय को बहुत ही मूल्य देता

और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर करने की मेरी हमेशा प्राथमिकता रहती है। इसी वजह से ही मैं अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता के पायदान चढ़ पा रहा हूँ।

0: और फिर हमने बात की प्रभात जी से, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: अलीगंज से, समय प्रबंधन का मतलब है कि अपने सभी कामों को करने के लिए समय का आवंटन किस तरह से किया जाए, कैसे योजना बनाई जाए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप समय का प्रबंध भली प्रकार से करें। छात्र जीवन से ही इस आदत को अपना लेना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, मनोरंजन हो या खेल कूद हो, सभी के लिए जरूरी है कि किसमें कितना समय दें। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो सफल होने के लिए समय का प्रबंधन बहुत अधिक जरूरी है। कुछ काम अति आवश्यक होते हैं, कुछ बहुत जरूरी नहीं होते हैं, उन्हें भी जरूरत के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अधिक रिजिड नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक अगर आप रिजिड हैं तो वो आपको तनाव दे सकता है, इसलिए थोड़ा लचीलापन भी बहुत जरूरी है। आजकल सब समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन है अत्यधिक सोशल मीडिया या मोबाइल, जो हमें बिल्कुल भी समय नहीं देता है। तो इसका उपयोग समय के अनुसार ही करना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए या कुछ नॉलेज बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए। धन्यवाद
0: जी। ये तो थे प्रभात कुमार जी, और इसके बाद हमने बात की ज्योति तिवारी से, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: मैं ज्योति तिवारी गोमती नगर लखनऊ से बोल रही हूँ। आपके टॉपिक जीवन में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है और आप किस हद तक अपना टाइम मैनेज कर पाती हैं के संबंध में मेरा यह कहना है कि जीवन में समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। ऐसा करने से हम सुगमता पूर्वक अपने दिन भर के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके बिना किसी दबाव या टेंशन के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस समय हमें क्या काम करना है। इसी कारण मैं अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन हर कार्य का प्राथमिकता के आधार पर उसको नियत कर समय पर करने की पूरी कोशिश करती हूँ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: और देखिए, हमने कहा था कि आप हमें मेल कीजिए और हमारे पास मेल आए हैं। नीलिमा का मेल आ गया है। नीलिमा ने झारखंड से हमें मेल किया, रांची से, और लिख रही हैं कि भाई ये जो टाइम मैनेजमेंट है मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं अपने आप को इसके लिए बहुत दोषी भी देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ अच्छा आज नहीं मैं कल कर लूंगी और ऐसे में काम मेरा पेंडिंग हो जाता है जिसकी मुझे काफी सजा भी भुगतनी पड़ती है। अक्सर मुझे टीचर से भी इस बारे में डांट पड़ती है, पेरेंट्स से डांट पड़ती है। मैं कोशिश कर रही हूँ और आई होप आने वाले समय में, यानी कुछ 3-4 महीनों में, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाऊंगी। तो निर्मा, आपने ये चीज इंप्रूव करने की कोशिश करी, इसके लिए आप बधाई की हकदार हैं। मुकुल सिंह का मैसेज आ गया हमारे पास पंजाब से और ये लिख रहे हैं कि मैडम, टाइम मैनेजमेंट मुझे बखूबी आता है और मैं समय पर उठता हूँ, समय पर सोता हूँ और सारे काम समय पर करता हूँ। यानी मेरा पढ़ाई का भी समय निश्चित रहता है, मैं काम भी करता हूँ, मेरे काम पर जाने का भी समय निश्चित है। यानी मैं ऐसा टाइम मैनेज करता हूँ कि अपनी पढ़ाई और काम दोनों को मैनेज कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और आप इस तरह बखूबी टाइम मैनेज करते हैं, ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनको लगता है कि वाकई में कभी कभी आलस कर देते हैं, आज का काम कल पर छोड़ ही देते हैं, चलिए आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, और ऐसे में क्या होता है कभी कभी अगले दिन कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि वो काम आप नहीं कर पाते, तब आपको अफसोस होता है कि काश इसे पहले कर लिया होता। तो आप दोनों के मेल मिले उसके लिए है बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सीमा परिहार का भी मेल आ गया है बहराइच से, और सीमा परिहार कह रही है टाइम मैनेजमेंट करना एक कला है और अगर कोई इस कला को नहीं जानता है तब दिक्कतें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं काम करना लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते हैं और तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं काम कर लूँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे और काम आ जाते हैं कि जो मेरा काम होता है वो टल जाता है। तो मैं अपनी मम्मी से इंस्पिरेशन लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी सब काम टाइम से करती हैं और अपने रेस्ट के लिए भी वो टाइम बखूबी निकाल लेती हैं, जिसे देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इतने काम के बीच वो अपने लिए समय निकाल लेती हैं। जी तो भाई सीमा, यही तो खासियत है टाइम मैनेजमेंट की, और एक बार अगर आपको ये चीजें आ गई तब तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपके काम पेंडिंग नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि काम करना ज्यादा आसान होता है। तो अगर आप भी अपने व्यूज शेयर करना चाहते हो तो fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमसे व्यूज शेयर कर सकते हैं, और भी हम रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे बस इस गाने के बाद।

0: समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, सब लोगों के अपने विचार हैं, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट होने से बहुत आसानी हो जाती है कामों में। तो कुछ और रिकॉर्डिंग्स हम प्ले कर रहे हैं, आज सुनिए क्या कहा लोगों ने।
1: मिला है कि टाइम मैनेजमेंट लाइफ में क्यों नेसेसरी है एंड मैं उसे किस हद तक मैनेज कर पाती हूँ। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि हम समय का इस्तेमाल अपने ज़रूरी कामों के लिए कैसे कर पा रहे हैं। और मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ना काफ़ी रिग्रेट होता है कि मैं अपना मोस्टली जो टाइम है वो फ़ोन देखने में या फिर सोने में या फिर टाइम स्केप करने में ही वेस्ट कर देती हूँ, जबकि मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं और मुझे उस समय लगता है कि काश मैंने उस टाइम को कुछ अच्छे से यूज़ कर लिया होता। मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। मुझे सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। इवन मैं ये सब करती भी हूँ बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर। मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है और ये सब साथ में मैनेज करना कभी कभी मेरे लिए थोड़ा ड्रेन आउट वाला सीन हो जाता है। इसीलिए मेरा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, मैं मोस्टली अपने मूड के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। और ऑनेस्टली अभी भी मुझे लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट काफ़ी सीखना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान टाइम मैनेजमेंट सीख जाए तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाती है, वो मेंटली ड्रेन आउट नहीं होता और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाता है और उसे पता है कि कब क्या करना है। इसलिए मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मैं उससे अभी भी सीख रही हूँ। सो यार दैट्स इट, थैंक यू
0: जी। तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है ऐसा जानवी ने बताया और हमारे पास मेल भी आ गया है, रामेश्वर जी का आ गया, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर से। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया। और इन्होंने लिखा है कि होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी को सादर प्रणाम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बराबर सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और लिख रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हम टाइम से काम करते हैं, यानी इनके जीवन में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से लिख रहे हैं आज का, तो क्या चीज़ें लिखा है इन्होंने आज।

ऐसे ही मेल शामिल कर लीजिए, मतलब कुछ लिखा नहीं टॉपिक पर, आज टॉपिक पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा, नहीं मालूम है इनको टॉपिक। तो भाई टॉपिक ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो इन्होंने कहा सिर्फ आप शामिल कर लीजिए, टॉपिक नहीं मालूम है। तो भाई टॉपिक हमने आपको बता दिया है। और इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है, ये किसका मेल है? ये मेल है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी जी का, ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से। और लिख रहे हैं, मैं भी घर वाले ने मेरे को कभी कुछ काम जैसे कि दवा कुछ लाने को कहा, लेकिन काम करते वक्त भूल जाता हूँ, तो घर से निकलो तो याद ही नहीं रहता, भूल जाता हूँ। और ये भाई जाफराबाद से जो आपने बात लिखी है, आप भूल जाते हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज कीजिए कि आपको चीज़ें याद रहें, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो काम कैसे करेंगे फिर, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है।

0: और अब हम आपको बातचीत सुनवाते हैं सुमित मेहता और मुंगीसा खान से की हुई।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी है एंड मुझे
2: हाय गाइस, मेरा नाम मुनीसा खान है और मुझसे आज पूछा यह है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि टाइम बहुत प्रेशियस होता है, इसलिए मैं अपना दिन का एक सिंपल रूटीन बनाती हूँ। आई डिवाइड माई टाइम बिटवीन स्टडीज, होमवर्क एंड रेस्ट। इससे मुझे स्ट्रेस कम होता है और ज़्यादा फोकस्ड फील करती हूँ। रीडिंग इज माई हॉबी, आई लव रीडिंग बुक्स, इट हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स एंड इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। फ्री टाइम में मैं रीडिंग करना प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली। मेरे अकॉर्डिंग गुड टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता है, taking small breaks and balancing studies with hobbies is also important. So I believe that if we use our time wisely, we can make our life better and more balanced. So thank you.
3: अगर time management की बात की जाए तो वो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको life में success पानी है तो time management करना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हैं उसे बराबर समय पर बांटना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे लेकर भी आपको टाइम मैनेजमेंट के तहत काम करना पड़ेगा, जिससे आपके काम टाइम से पूरे होंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और काफ़ी चुनौतियाँ जो आपको परेशान कर सकती हैं आने वाले समय में वो परेशान नहीं कर पाएंगी अगर आप अपना हर काम टाइम से करते हैं तो हो जाएगा। और वैसे मैंने तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो बना रखा है, और जैसे अपने जो 8 से 10 अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, सुबह के समय मॉर्निंग में उठ के अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाइए, उसके बाद स्टडी करते हैं तो स्टडी करिए। ऐसे ही अपने हर एक घंटे को, अपने हर एक मिनट को बांध के रखिए, उनका सदुपयोग करिए, जिससे आपको लाइफ में काफ़ी आसानी होगी।

0: जी भाई, 1:53 हो गए हैं और इस समय हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी से हमने जो बातचीत की और उन्होंने क्या विचार रखे, आप सुनिए।
1: हेलो सर जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और सर जी, मैं जो टाइम के समय के लिए होता है, समय से अपना कार्य करना और जो

0: जी भाई, 1:53 हो गए और इस समय हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं राजेंद्र कुमार जी से। हमने जो बातचीत की और उन्होंने क्या विचार रखे, आप सुनिए।
1: हेलो सर जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और सर जी, मैं जो टाइम के समय के लिए होता है समय से अपना कार्य करना, और जो है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो समय से किए जाते हैं, और जब समय पे हम कार्य करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं होने के बावजूद भी हम किसी से मिलना होता है तो उस काम को वरीयता दी जाती है, समय के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जैसे बिजली का बिल जमा करना, बच्चे की फीस जमा करना, और अदर से काम है, घर के जो घरेलू चीज़ें होती हैं, गैस की समस्या है, बिजली का बिल है, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, अगर उनको समय से नहीं करेंगे तो दिक्कतें पड़ती हैं, और फिर भी इनको करना ही हमारी जो है ज़रूरत होती है, समय के अकॉर्डिंग काम करना मस्त होता है। थैंक यू
0: जी। तो भाई ये वो बातचीत थी जो हमने सुनाई, और इसके अलावा मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरोबा जिला लखीमपुर खीरी से मैसेज आ गया है, शिल्पी मैम जी शुभ दोपहरिया। तो शुभ दोपहरिया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, दो लाइन लिखी है, मानुष बलि न होत है समय होत बलवान, बिलन लुटी गोपिका वहे अर्जुन बहबान, यानी समय का तुम इंतजार करो लेकिन समय तुम्हारा इंतजार कभी नहीं करता, इसलिए आज के दौर में समय कम है काम ज्यादा है, तो समय से चलिए, समय से मुस्कुराइए, समय से सोइए, समय से जागिए, सारे काम समय से कीजिए, इस जीवन में समय का बहुत महत्व है। बहुत अच्छी बात आपने कही सत्यम जोशी जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें पता चली, समय ही ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती, पैसा खो जाए वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, अगर समय सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाए तो काम अधूरे रह जाते हैं, तनाव बढ़ता है, आप पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, लेकिन अच्छा टाइम मैनेजमेंट काम समय पर पूरा करवाता है, तनाव कम करता है, फोकस बढ़ाता है, सफलता की संभावना बढ़ाता है और जीवन में बैलेंस बनाता है। बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और साथ ही मुनेश कुमार जी आपने बहुत अच्छी बात लिखी, इन्होंने थोड़ा और हमें इंग्लिश में भी लिख दिया, मैन इज नॉट पावरफुल टाइम इज पावरफुल, इट वॉज द सेम अर्जुन द सेम एरोज एट द गोपीज वर लूटेड बाय विलेंस। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, और आप सब ने, मोनू सेठ जी कह रहे हैं घर के काम में भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैम जी बताइए आप करिए तो जी, एक बार आप लिख रहे हैं कि दूसरे के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से आप अपने काम क्यों कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से काम करना है और करके देखें मोनू जी, सब चीज मैनेज होती है अगर आप करना चाहें तो। और देखिए हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने की ओर, यानी 1:56 हो गए हैं, ढेर सारे मैसेजेस आपके मिले, बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही जो लोगों ने हमसे बात की उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और इस प्रोग्राम से आपसे टाटा बाय बाय करते हैं, वो क्यों करते हैं वो भी बता दें, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल उसमें एक बार फिर शिल्पी को आना है, तो अभी के लिए हमें जाना है, तो अभी के लिए आपसे लेती हूँ इजाजत, नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में एक बार फिर मेरा रहा और आपका रहेगा साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।

0: कॉन्ट्रीब्यूट।
1: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ

0: इस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जी, अब्दुल गफ्फार जी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी खंडवा से, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, किसी भी गीत में शामिल कीजिए, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है नेहर राजस्थान से, नरेंद्र सुधार, मनु सुधार और हिमांशु सुधार जी। और फिर हमारे पास ये मेल आया है दिग्दर्शन गौर जी का, लिखा है, सभी श्रोताओं से आग्रह अपने संदेश में पोस्टल एड्रेस लिखे, छोटा एड्रेस लिखे, कम नाम लिखे ताकि प्रोग्राम का समय बर्बाद ना हो। इन्होंने गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर आपने नाम लिखा है। हीरा मणि वर्मा जी, परसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, बतरंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका मेल आ गया है। हीरा मणि वर्मा जी का भी मेल अभी हमने पढ़ा है और फिर से मेल आया। संदीप मक्कड़ जी का भी मेल आ गया है और इन्होंने ज्योति मन्नत भारत कमल साहनी प्रोग्राम पिंगा वाला चौक गोराया जोधपुर से जालंधर से मेल किया है। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आपका मेल है। और नरेश जी, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, खेल बाजार पानीपत से और शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू सिक्का, सभी के मेल हमने शामिल कर लिए हैं। और अब बारी आप ही में से किसी के पसंद के गाने के, एंजॉय कीजिए।

राजस्थान की गलियों में पहुंच गए थे हम, राजस्थान की पूरा एटमॉस्फेयर हमको फील हो रहा था ये गाना सुनकर। मैसेज आ चुका है हमारे पास मेल किशनगंज बिहार से, रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी जी का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अब्बासी जी आपको मैं पढ़ चुकी हूँ आपका मेल, और लिखा है कि लगता है गलत आईडी पर मेल कर दिया है। लीजिए आपका मैं मेल पढ़ चुकी हूँ सईद अब्बासी जी, और आपको शायद लगातार आप सुन नहीं रहे इससे दिक्कत है। जयराम खोरवाल जी आपका मेल भी मैं पढ़ चुकी हूँ, और साथ ही रविंद्र मोहनदास जी का भी मेल आ गया। दिलीप रामेकर जी अमरावती महाराष्ट्र से, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, आप लोग कई बार मेल करते मेरी बात सुनते नहीं है आप लोग। मंसूरी रेडियो लिसनर्स का बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीम, पलक, लुबना और यश मंसूरी जी, और सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई गुंडाने, हीरा मणि शंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने, ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर, अमरावती से। अपनी पसंद किसी गीत में शामिल करने के लिए हमें लिख के भेज रहे हैं, इंतजार में है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां नाज, तलत जहां, फरहत जहां, रिफहत जहां, नुजहत नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी, और लिखा है प्रोग्राम में जरूर शामिल करने की कोशिश कीजिए। लीजिए आप शामिल हो गई हैं। आर्यन वर्मा जी का जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मैसेज आ गया। अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खानपा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप, और साथ ही हमारे पास मेल आ गया है प्रताप जिनागल गांव खरिया जिला सिरसा हरियाणा से, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया, और गीत लिखा है कोई भी।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: Updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
5: नमस्ते आरजे मैम, पवन वर्मा जी नमस्कार। आपको भी उधौली बाराबंकी से किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। हालांकि उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी हमको लिख के भेजी है। और नरेश जी आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। अर्पित शर्मा जी का मेल आया है और तोशिका शर्मा जी का, और इन्होंने होड़ू बालो तरह से मैसेज लिखा है और लिखा है पूरे दिन सुनते हैं, बहुत ही मजेदार और रोचक कार्यक्रम इनको लगते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है रंगनाथ अवस्थी जी का हुसैनगंज लखनऊ से, और तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अब्बासी साहब आपके मेल हम पढ़ चुके हैं और लगातार आप हमें मेल कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस तरह आप मेल करते हैं जिससे कुछ हमारे जो लिसनर्स उनके मेल छिप जाते हैं। लेकिन हॉटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है, आवाज बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कौन है, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ जी। इसके अलावा हमारे पास शुभ दोपहरिया लिखते हुए मेल आ गया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम विहार। बहुत सारे मेल हो जाते हैं तो इन लोग के मेल नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। और इसके अलावा हमारे पास मेल और आया है सुजीता जी। शिल्पी मैम आप नए श्रोता हैं, आप हमारा नाम जरूर शामिल कीजिए और किसी भी गीत में छत्तीसगढ़ पिपरिया से सुजीत केशरी, सुकेशरी, कृष केशरी, झिलमिल केशरी, हम सभी अपने नाम के इंतजार में है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और यूं ही ये जुड़ाव जो आपने आज हमसे जुड़े हैं, ये अपना जो संबंध है हमसे यानी FM रेनबो के साथ बिल्कुल बनाए रखिएगा। और देखिए कि कई लोग जो बहुत बार मेल करते हैं इस चक्कर में ये सब नाम छिप जाते हैं, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि अब मेल ना कीजिए। सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी आपका मेल शामिल हो चुका है, उत्तर राम खोरवार, धर्मेंद्र छिपा जी, एम के राज जी, सभी का मेल हम शामिल कर चुके हैं।

0: भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
1: एमके बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 2:53 समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन चलते चलते जिन लोगों के मेल हम पढ़ पाते हैं, पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ेंगे। रमाकांत सिंह जी का मेल आ गया है, लेकिन तुम बिन कितने आज अकेले, क्या तुमको हम बतलाएं। अंबर में है चांद अकेला, तारे उसके साथ तो हैं, तारे भी छुप जाएं अगर तो रात अंधेरी रात तो है,

पर हम तो दिन रात अकेले क्या तुमको बतलाए जी। रमाकांत सिंह जी ग्राम मदनापुर जिला लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं और गाना जो सुनना चाहता है उसकी रिक्वेस्ट आपने हमें भेज दी है। इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया है नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज और हिमांशु जी का, और शंभू दयाल जी का भी मेल आ गया है, लिखा है सुपर फास्ट प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शिल्पी जी अगर हो सके तो अपनी पसंद की आपकी पसंद का कोई भी कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद वारिस अली खान साहब का मैसेज आ गया है कि आपको मालूम है बात सह गया तो रिश्ते ढह गए और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। रिश्ते रह गए और ढह गए, ओके। तो भाई बातों को कह देना ज्यादा जरूरी है, अगर आपके अपने रिश्ते हैं तो जरूर रहेंगे, नहीं तो ढहना होगा तो ढह जाएंगे। और उन्होंने संजय नगर ऐशबाग से हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए आपका। मल्होत्रा जी आपका मेल हमें मिल से मेल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी के नाम हमने तकरीबन पढ़ दिए हैं। और जय राम जी उत्तम।

बातों को कह देना ज्यादा जरूरी है, अगर आपके अपने रिश्ते हैं तो जरूर रहेंगे, नहीं तो ढहना होगा तो ढह जाएंगे। और उन्होंने संजय नगर ऐशबाग से हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए आपका मल्होत्रा जी, आपका मेल हमें मिल चुका से मेल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी के नाम हमने तकरीबन पढ़ दिए हैं। और जय राम जी, उत्तम कुमार जी, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं, जबकि आपके पसंद का गाना भी प्ले हो गया कि हमारा नंबर कब आएगा। तो इस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने तो प्ले कर दिया, अब आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, अंबेडकर चौकी ओड़ी से उत्तम जामदड़े, स्वराज दाम फड़े। और अब हम प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हो गया, 2:55 ठीक हो गए हैं। और आप ही में से किसी की पसंद के गाने से इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाजत लेते हैं। शिल्पी, नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में एक बार फिर मेरा और आपका होगा साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट स्टेशन एफएम रेनबो दिल की धड़कन, और मैं हूं आपकी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा। तो शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, प्यार मोहब्बत एहसास की रोमांटिक जर्नी इस लवली ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

हम अब तो करने लगे। कितनी खूबसूरत है ये ना लाइन। इस लाइन में छुपी वो गहरी बात और उस गहरी बात से निकली हमारी आज की थीम, यानी खुद से मुलाकात, सेल्फ लव की असली कहानी।

हाँ, सेल्फ लव जो बहुत कुछ कहता है, और इसे सुनेंगे आप पूर्णिमा के साथ, क्योंकि आज बात होगी उस इंसान की जो हमेशा साथ रहता है लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा उसे ही नजरअंदाज करते हैं। चलिए मेरे साथ खुद को जानने, समझने और महसूस करने, तो कहिए मेरे साथ दिल पर हाथ रखकर खुद से, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। और सॉन्ग को सुनते सुनते लिख भेजिए हमें अपने जवाब की किस मूवी का है ये सॉन्ग। हमारी मेल आईडी है aarkansomadia@gmail.com। 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून किया है आपने प्रोग्राम, सुन रहे हैं आप म्यूजिक आर अपने रेनबो होस्ट पूर्णिमा के साथ।

0: के सुन रहे आप प्रोग्राम म्यूजिक आवर और इस फ्रिक्वेंसी के साथ आपके रेनबो होस्ट राजी पूर्णिमा है आज आपके साथ। और आज वक्त है खुद को जानने का, समझने का। जी हाँ, अपनी फीलिंग्स को समझना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को टाइम देना और सबसे जरूरी खुद को उसी तरह स्वीकार करना जैसे हम हैं। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब दूसरों को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। तो दोस्तों, शेयर कीजिए हमसे कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं, खुद को समय देते हैं या नहीं। जल्दी लिख भेजिए हमें अपने प्यारे प्यारे रिप्लाई और साथ ही एंजॉय कीजिए म्यूजिक आवर शो का ये सॉन्ग, जहां शायद ये दिल मांग रहा है मोहलत खुद से एक मुलाकात का।
1: अधूरी लड़की अपनी जिंदगी में जगह दोगे?

जी हाँ, यासिर दिरसा की आवाज में दिल मांग रहा था मोहलत, बहुत ही प्यारे से अंदाज में खुद के साथ चलने का, धड़कने का, समय बिताने का। और हमारा था सवाल आपसे कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं, टाइम देते हैं या नहीं। तो आज के हैं आपके सजे संवरे जवाब हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप सोच रहे होंगे कि हमने सजे संवरे क्यों कहा, क्योंकि आप इतनी खूबसूरती से उसमें प्लांट्स बना करके, उसे डेकोरेट कर करके कलरफुल अपने रिप्लाई भेजते हैं ना, तो हमारा दिल रियली बहुत खुश होता है आपके इन मैसेजेस को देखकर। दिग्दर्शन गौर जी का मेल हमें आया है कि मैडम, सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्ते। बिल्कुल नमस्ते, और कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम दिग्दर्शन जी। और उन्होंने लिखा है कि मैडम, हम अपना ख्याल ऐसे रखते हैं कि हमारा जो काम है उस काम के बीच में हम जब भी वक्त मिलता है ना, तो हमारी जो चीज़ें छूट जाती हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं पूरे वीक, उसे मैं डायरी में नोट डाउन करता हूँ और उसके बाद उसे वीकेंड में ज़रूर पूरी कोशिश करता हूँ कि वो काम हो जाए। और मेरी जो ख्वाहिशें हैं ना, उन्हें भी मैं ज़रूर लिखता हूँ इन डायरीज में। और बहुत खुशी होती है कि जो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं वो लिख कर जब अपने पास रखते हैं, तो वो मेरी ख्वाहिशें सारी पूरी होती हैं और उसे मैं ज़रूर पूरी करता हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से रिप्लाई के लिए। इसी के साथ नवी हसन जी ने हमें मेल की है और लिखा है कि मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा आज आपने ये जो थीम लिया है सेल्फ लव, क्योंकि हम सच में दूसरों से तो बहुत मोहब्बत करते हैं कि पर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। और मैं अपना ख्याल ऐसे रखता हूँ कि मुझे ना प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, तो अपने गार्डन में निकल जाता हूँ और मॉर्निंग का जो आधे घंटे है ना मेरा, वो उस प्रकृति के साथ, उन पौधों के साथ, उनसे बातें करने में, उसे देखने में निकल जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि जो खामोश पत्तियां हैं ये बहुत कुछ कहना चाहती हैं, जो खामोश फूल हैं वो हमसे मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और बहुत ही खूबसूरत है आपका ये रिप्लाई नवी हसन जी, सो थैंक यू सो मच। माय डियर लिसनर्स, बिल्कुल इसी तरह ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ, जहां इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आवर, इसे लेकर आज पूर्णिमा है आपके साथ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं नहीं जाना है आपको, बने रहना है रेनबो कानपुर की इस फ्रिक्वेंसी के साथ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।

शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को ट्यून किया है आप, नए प्रोग्राम सुन रहे हैं म्यूजिक आज, जहां आज बातें सेल्फ लव की। सो गाइस, दीजिए अपने इस दिल को जवाब जब वो आपसे पूछे कि प्यार प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो।

जी हाँ, आई नो आपका भी जवाब होगा यही कि बहुत प्यार करते हैं हम खुद से। अब बहुत से लिसनर सोच रहे होंगे कि दूसरों से प्यार करना जताना तो आसान है और सब करते हैं, पर खुद से प्यार कैसे करें? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माय डियर लिसनर्स।

जस्ट ट्यून इन किया है आपने कानपुर की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी को, जहां रेनबो कानपुर पर सुन रहे हैं आप प्रोग्राम म्यूजिक आर। देखिए ना, आजकल हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या कभी 10 मिनट खुद के लिए निकालते हैं? एग्जांपल, सुबह उठकर बिना फोन देखे 10 मिनट खुद के लिए देना सुकून से भरा हो सकता है। जी हाँ, सुकून से बैठ जाइए अपनी एक कप चाय के साथ और कॉफी को शांति से एंजॉय करके देखिए ना। जी हाँ, ये छोटा सा पल है ना, ये भी सेल्फ लव है, खुद से प्यार, खुद से मोहब्बत का है ये बहुत ही खूबसूरत मौका। तो ट्यून इन रहिए रेनबो कानपुर की इस म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ, जहां आज है इस घंटे खुद से मुलाकात यानी सेल्फ लव की

जितना भी कर लो प्यार ये कम ही लगेगा। बिल्कुल ना ये दिल कोई शिकवा करेगा ना शिकायत करेगा, क्योंकि हम कब चाहते हैं कि हम खुद से मोहब्बत ना करें। तो सबसे पहले कभी कभी ना कहना सीखिए। अगर आप थके हैं और कोई आपसे एक्स्ट्रा काम कहता है तो मना करना गलत नहीं है।

जी हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, मेंटल पीस उतना ही जरूरी है जितना आपका खुद को प्यार करना। जब ना आपकी मन हो ना, आप दिल खोल कर अपनी तारीफ करिए, क्योंकि दूसरों की तारीफें हम सब कर देते हैं, पर अपने छोटे से काम को भी ना अप्रिशिएट करिए और कहिए खुद से वेल डन, एंड रिप्लाई में ये दिल बोलेगा पता है क्या, जी हाँ, हम आपको बताएंगे नहीं, ये आप समझ जाएंगे हमारे इस ब्यूटीफुल ट्रैक के जरिए। आने वाली है।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल लिरिक एंड प्यारा सा माहौल जहाँ सेल्फ लव में आपको करना है और भी बहुत कुछ। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को बुरा भला कहने के बजाय सीख लीजिए और मूव ऑन कीजिए और अपनी पसंद को, अपनी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दीजिए। वीकेंड पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर वो करें जो आपको सुकून देता है।

सेम है जैसे हमें सुकून देता है आपसे ये बातें करना, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना, प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को एंजॉय करना। और जी हाँ, जैसे जब आप सभी के मेल्स हमारे पास आते हैं ना, तो लिटरली बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है। उसी के साथ बहुत ही प्यारा सा मेल हमारे साथ है स्नेहा सोनी जी का, उन्होंने लिखा है, पूर्णिमा मैम आपको वेरी गुड आफ्टरनून, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू यू स्नेहा जी। और उन्होंने लिखा है कि मैं अपना टाइम अक्सर एफएम रेनबो के साथ ही बिताती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है अपनी दादी के पास बैठ कर दादी से ढेर सारी बातें करती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर के बुजुर्ग किसी दौलत से कम नहीं होते। और मैं अपनी दादी के साथ खेत घूमने जाती हूँ, पिछले साल मैंने 10 पेड़ लगाए थे और इस बार मुझे 15 पेड़ और लगाने हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग के नाम के साथ। भाई क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा आपका ये ख्याल है और आपने जो ये काम किया है ना, बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो खुद को आप अपने आप को ना हमारी तरफ से थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सेल्फ लव को समझा है और उसे निभाया भी है। और हमारा दिल कहता है बस कि जब आप चले तो हम चले और आप ठहरे तो हम ठहर जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारा अगला ब्यूटीफुल ट्रैक, तो चलिए एंजॉय करते हैं हम आपके साथ।

रिमेम्बर वन थिंग, जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। तो बस थोड़ा रुकिए, ठहरिए, कहाँ भागे चले जा रहे हैं आप वक्त की इस भीड़ के साथ। खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा, आपको बताएगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, कितने खूबसूरत हैं। और इसी के साथ आज की है हमारी एक और मेल, जो पूछा था हमने सिंगर का नाम। होली चौक उत्तम नगर से मेल मिली है ये जयराम खोरवाल जी की, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु, और आप सभी ने बताया है कि ये गुरु रंधावा की है आवाज़। बिल्कुल सही, नैन बंगाली है ये सॉन्ग और बहुत ही प्यारा सा है ये ट्रैक। इसी के साथ हम बैठे हैं आगे हमारे इस प्रोग्राम में, जो बस जी हाँ आपके साथ है, हम म्यूजिकल प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। जी हाँ, और ऐसा ही बिल्कुल सोना सा लगने वाला है सब कुछ जब आपकी होगी खुद से मुलाकात। तो ये थी सेल्फ लव की असली कहानी, जिसे एंजॉय किया आपने इन फीलिंग्स वाले सॉन्ग्स के साथ। सो गाइस, फ्रॉम हियर पूर्णिमा को दीजिए परमिशन इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की, एंड एंजॉय दिस लवली ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन। आइए सुनते हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत, विषय किडनी रोगों से बचाव।
1: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के आज के इस अंक के प्रायोजक हैं किडनी केयर क्लिनिक कानपुर।
2: क्या आपको किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी है? तो आप चिंता छोड़िए, किडनी केयर क्लिनिक कानपुर में मिले अनुभवी डॉक्टरों से और पाएं बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं, सटीक जांच और पूरी देखभाल। तो आज ही आइए किडनी केयर क्लिनिक अशोक नगर, निकट मोती झील चौराहा, कानपुर।
3: हेल्थ मैगजीन सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतीक सिद्दीकी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी जी, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही जिन्होंने SGPGI लखनऊ में एज DM नेफ्रोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दी हैं, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस अंक में हमारा विषय है किडनी रोगों से बचाव। सर, सबसे पहले आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू।
3: तो डॉक्टर साहब, आसान भाषा में अगर जानना चाहें कि जो किडनी होती है या गुर्दा जो होता है, वो हमारे शरीर में मुख्यतः क्या काम करता है?
4: तो किडनीज हमारी दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ के लिए काफ़ी वाइटल हैं
3: जी।
4: उनका मेन काम है ब्लड को फिल्टर करके उसमें गंदगी, यूरिया, क्रिएटिनिन और इवन सोडियम पोटेशियम जैसे द्रव्य हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करना, ब्लड बनाना, इवन हड्डियों का भरण पोषण में भी किडनी का रोल है
3: जी। ये तो आपने बताया कि किडनी का क्या रोल है हमारे शरीर के लिए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड कोई अगर समस्या होती है, बीमारी होती है, तो उसके शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं?
4: सबसे प्रमुख बात ये कहना चाहूँगा कि किडनी के बीमारी जो है ये सिम्टोमेटिक होते हैं, कभी कभी वो पता ही नहीं चलता क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं
3: जी।
4: इसीलिए हम कहेंगे कि हर 6 महीने में रेगुलर अपनी टेस्टिंग कराते रहिए। इसके साथ साथ जो कॉमन लक्षण है वो आंखों के नीचे भाग में सूजन आना जिसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस कहते हैं हम लोग, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, खून की कमी आना, वीकनेस महसूस करना, भूख की कमी होना, ये सारे लक्षण उसमें हो सकते हैं। और ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में इवन झटका आना या बार बार उल्टी होना, ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं।
3: सर, अगर एज ग्रुप में देखें, क्या बुजुर्गों को ये ज़्यादा समस्या होती है, महिलाओं में होती है, बच्चों में, यंग लोगों में, किस तरह के एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है?
4: इंडिया में किडनी डिजीज़ की प्रिवेलेंस, जो CKD की प्रिवेलेंस है, लगभग 13-14% है
3: जी।
4: तो उसमें से बुजुर्ग पॉपुलेशन में या एल्डरली पॉपुलेशन में उसकी ज़्यादा है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बुजुर्गों में कॉमन है। पर ये नहीं है कि बच्चों में ये होता नहीं है। कुछ डिजीज़ जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई, कुछ जेनेटिक बीमारियाँ हो गई, सिस्ट की बीमारियाँ हो गई, वो बच्चों में भी पाए जाते हैं। महिला और पुरुष के कंपैरिजन में रिस्क पुरुषों में थोड़ा ज्यादा माना जाता है, बट लगभग ये समान है
3: जी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई रोग हो जाता है, तो उसे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?
4: मैं तो कह, जैसे मैंने कहा कि हर 6 महीने में खुद की यूरिन की जांच, कुछ ब्लड जांचें जैसे सीरम क्रिएटिनिन की जांचें कराते रहना चाहिए। जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको किडनी की जांच जैसे उस इन्वेस्टिगेशंस को रेगुलरली कराते रहना है। साथ ही साथ अगर कोई भी लक्षण आए जैसे पैरों में सूजन आना, आंखों के निचले भाग में सूजन आना, सांस फूलना, इस सब प्रक्रिया में डॉक्टर से उनको सलाह लेनी चाहिए
3: जी। जब वो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है किडनी संबंधित और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो किस तरह की मुख्यतः आप जांचें या परीक्षण कराते हैं उनके?
4: मेनली हम ब्लड की जांचें जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया की जांच हो गई, सोडियम पोटेशियम जैसे द्रव्य हो गए उनके जांचें कराते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, साथ ही साथ एक बेसिक टेस्ट है जो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, उससे भी पेशाब में कहीं प्रोटीन आ रही हो, ब्लड आ रही हो, ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। उसके आगे हम अल्ट्रासाउंड की जाँच भी कराते हैं गुर्दे का, साइज देखने के लिए और उसकी स्ट्रक्चर देखने के लिए
3: जी। और जैसा कि आपने बताया था कि ज़्यादा प्रोन है वो लोग जिनको डायबिटीज़ की समस्या है या हृदय रोगी हैं या किसी तरह की BP की उनको समस्या रही है, तो क्या उनके लिए कुछ अलग तरह की जांचें होती हैं?
4: जैसे शुगर के लिए हम HbA1c शुगर कंट्रोल के लिए देखते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में BP उनकी नियंत्रण में है या ज़्यादा है वो देखा जाता है। खून की जांचें लगभग सेम है सारे पेशेंट्स के लिए।
3: जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे इसके इलाज की कि किस तरह के इलाज आज उपलब्ध हैं हमारे पास, लेकिन इलाज से पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
4: धुरंधर मूवी रिलीज हुई है, उसमें सारे गाने ही फेमस हैं, उसमें सतिंदर सरताज जी का जो मुखड़ा है वो वाला गाना चला रहे हैं।

0: तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि किस तरह के परीक्षण कराए जाते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह के इलाज मौजूद हैं आज मेडिकल क्षेत्र में किडनी से संबंधित रोगों के लिए।
1: जैसे मैंने पहले कहा कि शुगर पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ ज़्यादा होती है, तो शुगर की दवाइयाँ, शुगर कंट्रोल एक रोल प्ले करता है
0: जी।
1: ब्लड प्रेशर कंट्रोल और नियंत्रण की ज़रूरत है। जिनको पेशाब में प्रोटीन जा रही है उनको कुछ ऐसी दवा है जिसको हम ARBs कहते हैं या ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। वो दवाइयाँ अभी न्यू मेडिकेशंस SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे दवाइयाँ, और अभी हाल ही में सेमीग्लूटाइड भी आया हुआ है जो किडनी डिजीज में मदद करता है। मेन चीज़ें तो खान पान और ट्रीटमेंट के ऊपर ही निर्धारित होती है
0: जी। आपने कहा कि मेन इलाज जो है अच्छा खान पान, सही तरीके का खान पान है, तो अब मेरा सवाल इससे रिलेटेड ही है कि हम ऐसा क्या खाएं पिएं कि हम किडनी रोगों से बचे रहें।
1: तो मैं तो शुरू करना चाहता हूँ कि क्या ना खाना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि आजकल पॉपुलेशन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी की प्रेवलेंस बढ़ गई है। हम लोग इजी टू एसेस फास्ट फूड खा लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, उसमें हाई क्वांटिटी में सोडियम की मात्रा रहती है और तेल मसाला ज़्यादा रहने की वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। शुगर क्वांटिटी रेगुलेट ना होने की वजह से वो डायबिटीज़ और शुगर कंट्रोल में भी हानिकारक हो सकती हैं। साथ ही साथ जो केमिकल्स उसमें होती हैं वो भी फिल्टर करने में किडनी को परेशानी होती है। साथ ही साथ हाई सॉल्ट वाले जो अचार हो गई, पापड़ हो गई, जो इंडियन डाइट में काफ़ी कॉमन है, और इवन इंडियन खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा ही रहता है, तो हाई सॉल्ट कंटेंट किडनीज के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ जो फ्रूट कंजम्पशन जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और ये सब बेनिफिशियल होता है। जिनको किडनी डिजीज हुई नहीं है वो तो हर तरीके के एक्सरसाइज, योगा, ब्रिस्क वॉकिंग,

0: खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा ही रहता है, तो हाई सॉल्ट कंटेंट किडनीज के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ जो फ्रूट कंजम्पशन जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और ये सब बेनिफिशियल होता है। जिनको किडनी डिजीज हुई नहीं है वो तो हर तरीके के एक्सरसाइज, योगा, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, और सारे फल उनमें अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको किडनी डिजीज के लक्षण सीकेडी 3 स्टेज से ज़्यादा हो जाता है उनमें हम फ्रूट्स जैसे कि नारियल पानी हो गया, केला हो गया, वो सब पेशेंट्स को मना करते हैं खाने के लिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम की कॉन्टेंट ज़्यादा होती है जो हानिकारक हो सकती है उनके लिए।
1: बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना है, और कई बार लोग खुद से अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले आते हैं, पेन किलर्स की दवाइयाँ ले लेते हैं, वो कितना सही है?
0: डॉक्टर के पास ना जाके शॉर्टकट ट्रीटमेंट लेना, कोई भी एंटीबायोटिक जो मिल रही है उसके रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स को ना जान के उसको बिना परामर्श के लेना, पेन किलर्स लेना, इवन जो नॉन रेगुलेटेड आयुर्वेदिक दवा है या पुड़िया है जो लोग ले लेते हैं, उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी कभी कभी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करना चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ मिथ्स यानी कि कुछ भ्रांतियाँ फैली होती हैं, तो लोगों के बीच किडनी से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, उसके बारे में मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, और आप बताइए कि इनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि पानी कम या ज्यादा पीने से किडनी रोग जो है वो नहीं होते हैं।
0: सो जैसे पर डे 2 to 2.5 लीटर पर डे वाटर तो इनटेक होनी चाहिए। जो एक्सेस वाटर कंजम्पशन करते हैं 5 to 6 लीटर एक्स्ट्रा किडनी अच्छी रहेंगे, वो एक मिथ है। और जो लो कंजम्पशन करते हैं कि 500 ml 1 लीटर पी लिया, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन भी खराब है। तो एक 2 to 2.5 लीटर का रेंज हम पकड़ लेते हैं जो हर पेशेंट को या हर आदमी को लेना चाहिए जो किडनी का पेशेंट ना हो।
1: ये भी कहते हैं कि जो शराब का सेवन लोग ज़्यादा करते हैं किडनी की बीमारी लगने का ज़्यादा खतरा होता है, उसमें कितनी सच्चाई है?
0: कुछ लोग तो कहते हैं कि बियर कंजम्पशन करने से स्टोन की रिस्क कम हो जाती है, तो वो एक मिथ है। और सेम है कि अल्कोहल इन एनी वे इट इज इंजरियस टू हेल्थ, सो उसमें आई विल ऑलवेज से नो टू अल्कोहल फॉर एनी पर्सन।
1: कई लोग ये मानते हैं कि किडनी की बीमारी सिर्फ जेनेटिक है, वंशानुगत है, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: हमारे जैसे कैटेगरीज होते हैं, डायबिटीज कहा मैंने, हाइपरटेंशन कहा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, उसके बाद एक जेनेटिक कारण भी होती है
1: जी।
0: तो कुछ पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं किडनी बीमारियों के लिए जिनके फैमिली में ऑलरेडी किडनी डिजीज हो सकता है, ये सच्चाई है। जैसे कि ADPKD या सिस्ट की बीमारी हो गई, वो फैमिलीज में रन करती है
1: जी। और आखिर में एक और भ्रांति जो लोगों में रहती है कि अगर एक किडनी खराब हो गई तो दूसरी का खराब होना भी पक्का है।
0: सर, एक किडनी जब कम काम करती है तो दूसरे किडनी पे प्रेशर ज्यादा रहता है,
1: लोड ज्यादा होगा,
0: ये सच है, और उसमें प्रोटीन लीकेज होने के चांसेस ज्यादा है, तो इसमें मैं कहूंगा पार्शियल ट्रूथ है। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे जो किडनी सही है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरा, मैं नमक के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जो सेंधा नमक हो गई, जो अलग लो सॉल्ट वाली सॉल्ट हो गई, एनी सॉल्ट कंजम्पशन विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर, विल इंक्रीज द चांस ऑफ किडनी डिजीज। इसीलिए कोई भी सॉल्ट इनटेक हो उसको कम करना है, सेंधा नमक से सेहत ज्यादा अच्छा होने वाला ये मिथ है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि हमें किडनी से संबंधित रोगों में किस तरह के बचाव, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। आपने समय निकाला और हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इसी के साथ कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन को खत्म करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
2: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सार्वभौम त्रिपाठी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत, विषय था किडनी रोगों से बचाव।
3: हेल्थ मैगजीन कार्यक्रम के आज के इस अंक के प्रायोजक थे किडनी केयर क्लिनिक कानपुर।
4: क्या आपको किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो आप चिंता छोड़िए, किडनी केयर क्लिनिक कानपुर में मिले अनुभवी डॉक्टरों से और पाएं बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं, सटीक जांच और पूरी देखभाल। तो आज ही आइए किडनी केयर क्लिनिक अशोक नगर, निकट मोती झील चौराहा, कानपुर।
5: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

चुकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने प्रोग्राम, जी हाँ आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हम बिल्कुल रेडी है, यानी आपकी पसंद के साथ रेडी है आपके रेनबो स्टार जी पूर्णिमा। सो वेलकम दोस्तों, हर दिल में कुछ चन कहीं बातें होती हैं, कुछ गीतों में छुपी यादें होती हैं और कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच जाती हैं। जी हाँ, लफ्ज जब एहसास बन जाए दूरियां भी पास बन जाए, जो बात कह ना पाए होठ कभी वो मेल्स में खास बन जाए। तो बस इन्हीं प्यारे एहसासों और आपकी भेजी हुई मेल्स के साथ साथ ही सुरीले नगमों के साथ मैं आपके रेनबो होस्ट राजे पूर्णिमा रेडी हूँ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद के साथ। तो चलिए एंजॉय करते हैं हमारे प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग।

जी हाँ, और इसके साथ ही हमारे इस प्यारे से ट्रैक के साथ हमने किया है बहुत ही खूबसूरत सा आगाज। इस सॉन्ग को हमने एंजॉय किया आपके साथ, और इसी के साथ हमें ये मेल आई थी जिला खरगोन सनावद एमपी से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बुराना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगता। और हमारे एक और मेल जो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है ये भी, जब जब फूल खिले, इस मूवी से, पद्मापुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा ने हमें मेल की है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, खड़ेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी ने हमें मेल की और बोला है कि मैम किसी भी सॉन्ग में हमारे इस मेल को शामिल कर लीजिए। जी हाँ, एक और मेल है और लिखा है मैम पूर्णिमा मैम बहुत ही प्यार भरा नमस्ते, आपको प्रोग्राम में मैसेज पढ़ने का अंदाज बहुत ही शानदार, सो थैंक यू सो मच। और इन्होंने सुनना चाहा है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। तो चलिए आप सभी लिसनर्स की पसंद पर हम प्ले करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

जी हाँ, ये समा वाकई बहुत प्यारा है, जहाँ हम हैं, आप हैं, आपकी मेल्स हैं और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ है, FM रेनबो कानपुर के साथ। जी हाँ, 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर जहाँ इस समय सुन रहे हैं आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। और बहुत ही प्यारी सी मेल आ चुकी है हमारी, और हमारी एक्टिव लिसनर जो बिल्कुल एक्टिव रहती हैं अपने इस स्क्रीन के साथ, उन्होंने मेल की है हमें, रूपुर चंदेला से नीलू शर्मा, और बहुत ही प्यारे सी लाइंस भी लिखी हैं। इन्होंने लिखा है, तुम दूर हो मगर ये एहसास होता है, कोई है जो हर पल दिल के पास होता है, याद तो सबकी आती है मगर पीहू मैम आपकी याद का अंदाज कुछ खास होता है। FM रेनबो की मैम सुपरस्टार आरजी पुण्य मैम को मेरा प्यार भरा नमस्ते। इन्होंने दलाल मूवी के सॉन्ग के लिए मैं फरमाइश की है, साथ ही लिखा है कि मैम ये सॉन्ग आपको डेडिकेट है, कल आपका बर्थडे था तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच नीलू। और साथ ही इन्होंने डेडिकेट किया है अपने सभी यहाँ के आरजीएस को, इन लिसनर्स को, ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग। हम ज़रूर आपको ये ट्रैक सुनवाएंगे, पर उससे पहले कुछ और मेल्स हम शामिल करेंगे। एक और मेल हमारे पास आई है, सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से इन्होंने मेल की है, और मेल में सुनना चाहा है इन्होंने बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और होली चौक उत्तर नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपाशु खोरवाल ने भी लिखा है कि मैम किसी भी सॉन्ग में आप हमारे नाम शामिल कर लीजिए, तो बिल्कुल खोरवाल जी हमने शामिल कर लिए हैं आपके नाम, और बिना किसी देरी के हम प्ले करते हैं दलाल मूवी का ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जी हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं आप शहर की म्यूजिकल धड़कन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद और आपकी पसंद बन जाती है हमारी पसंद क्योंकि आपके इतने डिफरेंट मूड्स के सॉन्ग्स को हम एंजॉय करते हैं आपके साथ हमारे इस शो में। सो माय डियर लिसनर्स, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हम हमारे प्रोग्राम की अगली मेल जो आई हमें कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह चौड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से, पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेराय। वही कृष्णा पार्क दिल्ली से सिटी दीवाना और इनकी मेल हमने शामिल कर ली है। भाई दोबारा आप मेल भेज देते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो जो लोग हमें मेल कर चुके हैं, जिन लिस्टर्स के मेल हम पढ़ चुके हैं, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अब बार बार मेल ना करें ताकि हम बाकी जो अदर्स मेल हैं उन्हें शामिल कर सकें, उनके जो सॉन्ग्स हैं चॉइसेस के उन्हें हम आपको सुनवा सकें। आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ और हमारे इस काम को बनाइए बहुत ही प्लेसफुल। एक और मेल है सौराष्ट्र राजकोट से, जूली जगदीश गुजराती कुंदन रंजन प्राची और प्रवीण पुजारी जी, इन्होंने मेल की है और लिखा है कि मैम बहुत ही प्यार लग रहा है आपका ये शो आपकी पसंद, सो थैंक यू सो मच। और एक और मेल है, ये इन्होंने लिखा है कि आरजे मैम आदाब, सो आपका हमने आदाब कबूल किया। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम आपके नाम के साथ, रायगढ़ बिहार से ये मेल की है उमा राज, पवन उमा डोंडी लोहारा से, संजय प्रभा बेलदार, दीपक टॉली बेलदार और कमल राधिका बेलदार, साथ ही उमरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज खान और रजाक खान ने हमें मेल की है इस पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग के लिए। छत्तीसपुर से नरेंद्र कुमार जोम, संदीप जाटा, टुक टुक जाटा और प्रभा रानी जयपुरिया, इन सभी ने मेल की है बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की, तो अब हम शामिल करते हैं आपका ये पसंदीदा सॉन्ग।

से जो दोस्ती है, जो प्यार है ना, वो भी यूं ही रहने वाला है, इवन दिन ब दिन बढ़ने वाला है, बिकॉज ट्यून इन है आप रेनबो कानपुर की इस म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, जहाँ आपकी पसंद बन जाती है हमारी पसंद। एक और मेल बहुत ही प्यारे जिन्होंने लिखा है, पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। इन्होंने लिखा है कि पूरे परिवार के साथ सुन रहा हूँ मैं आपके प्रोग्राम और बहुत मजा आ रहा है, और ये है मेल हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। स्टेशन रोड जमशेदपुर से इन्होंने मेल किया है कि पूरे परिवार के साथ ये इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, इन सभी ने हमें लिखा है तहे दिल से शुक्रिया कि मैम आप हमारे मेल को जरूर शामिल कर लीजिएगा। तो भाई शामिल कर लिया है हमने आपकी इस मेल को। एक और मेल सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढिंगरा, अनुश्री ढिंगरा, प्रमिला और देवश्री ढिंगरा जी ने, सहारनपुर से सुरेश डोम और आशु डोम ने हमें मेल किया है, और आपकी मेल्स बराबर हमारे साथ कनेक्ट हैं। बिहार स्टेट डुमराव से आसमा अंसारी, आमना परवीन, टिकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी, और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी, छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम, आप सभी ने मेल किए हमें एक सॉन्ग सुनवाने की। हम जरूर सुनवाएंगे आपको ये सॉन्ग और आपके साथ हम भी इंजॉय करेंगे, पर पहले आपके नाम हमारा शामिल करना है। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अक्रम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून ने मेल की है। चलिए आपको बिना किसी देरी के अब सुनवा दे हैं हम ये प्यारा सा ट्रैक।

102.2 की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आपकी पसंद। और एक प्यारा सा मेल हमारे साथ, बिल्कुल रंग बिरंगा खिला हुआ सा, बहुत सारे कलर्स के साथ उन्होंने लिखा है कि नमस्कार पूर्णिमा मैम, हार्दिक अभिनंदन। और इन्होंने एक खूबसूरती लिखी है नेचर की, कि अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने लिखा है ये मेल चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा विमला अनेजा ने। एक और मेल संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर और कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से मेल है। एक और मेल बहुत ही सजी सी सवरी सी, आदरणीय प्रसारक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मेल तक जो है रुख किया, क्या बात है भाई। हमारे ये कोशिश है, हम यहाँ जब होते हैं ना सीट पर हमारे स्टूडियो में, बस एक ही ख्वाहिश होती है कि आपकी फरमाइशों को हम पहुँचा सकें आप तक। और ये मेल में आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहाँ, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ये मेल की है इन्होंने हमें। और प्यार भरा आदाब, एक और हमारे साथ जुड़ गया है, जी हाँ खैरियत से हैं हम, इन्होंने हमारी खैरियत पूछी है और हम दुआ करते हैं कि आप भी उतनी ही खैरियत से होंगे। और ये सनावत एमपी से मेल की है शेख मूसा मोहसिन ने। तो चलिए आप सभी लिसनर्स की पसंद पर हम प्ले करते हैं आपका ये सॉन्ग।

जी हाँ, हम आपसे मिलते जरूर हैं और मिलकर बिछड़ते भी हैं, पर इसलिए सिर्फ कि आपके साथ दूसरे प्रोग्राम को लेकर के हम आपसे कनेक्ट हो सकें एक बार फिर से इस म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ। और हमारी मेल्स पढ़ने का जो सिलसिला है बिल्कुल जारी है, और ये एक मेल में आई है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुकू भाविका सिक्का, इन सभी ने शुक्रिया किया है। मैम शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मेल को शामिल किया। भाई आप इतने प्यार से ईमेल लिखे और हम आप शामिल ना करें, ये कैसे हो सकता है। ऐसी ही एक मेल हमारे साथ आई है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन और उमर खेड़ से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान। साथ ही एक और मेल हमें आई है, आपकी पसंद प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ इस प्रोग्राम को, और इन्होंने लिखा है कि किसी भी सदाबहार नगमे में हमारे इस मेल को शामिल कर लीजिए। मेल हमें लिखी है जैन मंदिर वाली गली पुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और आप सभी लिसनर्स की पसंद पर भाई बिना किसी देरी के हमने प्ले कर दिया है ये सॉन्ग।

जी हाँ, प्यार को देने और लेने का जो सिलसिला है ना, वो बिल्कुल हमेशा ताउम्र रहना चाहिए। और आपका प्यार हमें मिलता है आपकी भेजी हुई मेल्स के जरिए। जहाँ एक और मेल हमारे पास आई है, ग्रामा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और पूरे कठेरिया परिवार ने लिखा है कि दीदी हमारे इस मेल को जरूर शामिल कर लीजिएगा। तो भाई आप सभी की पसंद पर और आप सभी के पसंदीदा सॉन्ग को हम जरूर सुनवाएंगे, पर फिलहाल अगला मेल पढ़ने का है वक्त। एक और मेल हमें आई है, ये सेव वाटर सेव लाइफ, यानी कि इन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया है कि किसी की भी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो एक है कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें और उसे बेवजह बर्बाद ना करें। तो आप किस मेल को हमने शामिल किया और ये मेल हमें की है गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर अखिल परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव और आप सभी लिसनर्स ने हमें से गुजारिश की है कि आपकी भी जो विचार है, जो व्यूज है, वो हम दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। एक और मेल भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर कुमारी देवी का, चौधरी स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी, ललित नारायण भावखंड से, रक्षा ताई खंड से, और इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए सुनवाते हैं, आप में से ही लिसनर्स की पसंद का है ये सॉन्ग।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

वही वक्त थोड़ा बचा है कि हम और मेल्स को शामिल कर लें। और एक ईमेल हमें आई है कि और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आपका इनका जो मेल है वो शामिल हो जाए। भाई हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं कि आपके मेल्स को, इतने सारे मेल्स हमारे पास आते हैं कि ऊपर नीचे हो जाते हैं और हमें शायद जो मेल भरना चाहिए वो सामने से निकल जाता है। फिलहाल हमने आपकी मेल को शामिल कर लिया है। ये मेल है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा जी, कपिल चीपा जी, ईशान चीपा और पूजा परिहार ने हमें मेल की है। और लिखा है मैम कि किसी भी सॉन्ग में हमारे इस नाम को शामिल कर लीजिए, तो शामिल हो चुका है आपका नाम। और इसी के साथ एक और मेल में आई है, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा गुज के। और एक और मेल है तनु शर्मा, दोबग्गा लखनऊ से, कुछ लफ्ज बिना कहे अल्फाज होते हैं, कुछ लोग इस कदर खास होते हैं, दूर हो निगाहें, निगाहों से चाहे जितना लेकिन फिर भी दिल के पास होते हैं। क्या बात है, इतनी शायराना अंदाज में जब कोई तारीफें करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच तनु। और मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं हम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। अच्छा, इन्होंने ये सॉन्ग लिखकर में भेजा है कि ये सॉन्ग सुनना चाहती हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैम ये अपने, इन्होंने जो है वो अपने हस्बैंड को ये सॉन्ग डेडिकेट किया है, साथ ही हमें भी यानी पूर्णिमा को भी इन्होंने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है। तो चलिए हम आपके साथ इन्जॉय करते हैं आप सभी की पसंद का ये सॉन्ग।

जी हाँ, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग था और आप सभी लिसनर्स की पसंद पर हमने भी इसे एंजॉय किया हमारे इस प्रोग्राम आपकी पसंद में। और अब बहुत सा वक्त नहीं बचा है हमारे पास, तो जल्दी से चलिए शामिल करते हैं हम हमारे प्रोग्राम्स की ये कुछ आखिरी मेल्स जिन्हें लिखा है। ये मुद्दतों से आरजू थी जिंदगी में कोई आए, और इन्होंने ये बहुत ही शराना अंदाज में जो लिखा है, कटोरा तालाब बक्सर से रेशमा नारंग, वली राम नारंग, सुल्तान नारंग जी ने भी मेल की है, सहारनपुर से सोनाली नारंग और आशा नारंग, सुरेश नारंग जी की मेल है। और इसी के साथ अगली मेल जो हमें है, एडवोकेट वारिस अली खान, सलामुन निशा, शकील अहमद, शाहनाज खान, दानिश संचय नगर, ऐशबाग लखनऊ से इन्होंने मेल की है। और एक और मेल हमारे पास है, ये मेल में आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सलमा फारूक, सरफराज शेख, अगुल फराज शेख, बीबी मुस्कान। और एक और मेल चलते चलते हम शामिल करते हैं इस सॉन्ग के साथ कि कल्लोर से नरेंद्र शर्मा, करण शर्मा, नीति और मयंक शर्मा। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम आपकी पसंद से दीजिए आरजे पूर्णिमा को इजाजत, रखिए अपना खास ख्याल, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द लास्ट ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम।

नमस्कार, शाम के 5 बजे सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जनगणना के माध्यम से देश की वास्तविक जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न आवश्यकताओं का सटीक आकलन किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा उपलब्ध है। आयोग ने कहा कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन विकास, संस्कृति विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लखनऊ और रायबरेली स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक ने आज से अपने लाभार्थियों के लिए डाक द्वारा दवा वितरण प्रणाली शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के घर पर ही नियमित दवाएं पहुंचाना है। स्वास्थ्य सेवा वितरण को और बेहतर बनाने के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक लखनऊ में एक ऑनलाइन लैब प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गई है। भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थनगर के ककरहवा चेक पोस्ट पर क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत 23 CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। इसका शुभारंभ आज सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कैमरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों के अलावा आवागमन वाले बिंदुओं पर लगवाए गए हैं। इन पर निगरानी के लिए 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हमीरपुर के कुरारा में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस हादसे में कल 5 शव बरामद किए गए थे। ये दुर्घटना 6 मई की रात उस समय हुई जब एक शादी समारोह में शामिल होने आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बचा लिए गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ, 5:05 का समय हो चुका है और

एफएम रेनबो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले में एक कड़ी और जोड़ता हूं मैं आज एफएम टॉप 10 के गीतों के साथ। और आज जो मैंने 10 गाने चुने हैं वो 1970 से 80 के दशक के बीच में जो फिल्में आई और उनमें जो डांसिंग ट्रैक थे जिनको सुनकर आज भी हम लोग झूम उठते हैं, उन गीतों को चुनकर मैं लाया हूं। और किस तरह के वो गीत हैं, कुछ इस तरह के गीत हैं जिनकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं।

0: जी हाँ, 5:10 का समय है और इस समय विजय आपके साथ है। यहाँ पर FM टॉप 10 गीतों की बहार आई हुई है। इस समय समाधि फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, कांटा लगा। हालांकि आशा पारिक ने इसमें डांस किया था और उस समय जब ये गाना फिल्माया जाना था तो आशा पारिक काफी नर्वस थी, क्योंकि हेलन जी जो है वो अपने डांस के जरिए, अपने नंबर्स के जरिए दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना चुकी थी। और ऐसे में आशा पारिक ये सोचने को मजबूर हो गई थी कि अगर उन्होंने इस तरह का किसी गाने पर डांस किया और उतना परफॉर्म वो नहीं कर पाई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एक्टिंग में किरकिरी हो जाए या फिल्म जो है ना कोई दिक्कत हो। काफी सोच विचार के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने कहा कि नहीं, चलो भाई ऐसा करते हैं कि अगर इंडस्ट्री में आए हैं और जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई चैलेंज होता ही है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इसको परफॉर्म करते हैं। और ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया कि वाकई में लोग जो है वो प्रसन्न हो गए और गाना जो है सुपर डुपर हिट हो गया। ऐसा ही कुछ किया था हमारे बच्चन साहब ने भी। कब किया था, कैसे किया था, सुनिए।
1: Thank you.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
3: चैनल पर आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। आज विजय के साथ 5:17 का समय हो चुका है यहाँ पर, और बच्चन साहब के ऊपर फिल्माया गया गाना भी आपने सुना, देखा ना हायरे सोचा ना हायरे, बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये गाना था। और बच्चन साहब की एनर्जी देखकर ही सलीम जावेद की नजर उन पर पड़ी थी कि भाई ये आदमी जो है इसके अंदर तो एनर्जी बहुत है। जिस तरह से डांस, हालांकि डांस के स्टेप जो है वो कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं थे, लेकिन जो एनर्जी थी वो सलीम जावेद के मन में घर कर गई थी, और इसीलिए उन्होंने जो है वो तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रिकमेंड किया कि भाई एक नया एक्टर आया है, डांस भी अच्छा करता है, आवाज भी ठीक ठाक है और बोलता भी ठीक ठाक है, और अमिताभ बच्चन उसका नाम है, उसको अपनी फिल्मों में लेके दे सकते हो। और जब अमिताभ बच्चन साहब ने और इन लोगों ने डांस करना शुरू किया तो जो और एक्टर थे जो काफी नामी गिरामी एक्टर थे उस समय बॉलीवुड में, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। अब उनमें से कपूर खानदान के एक चश्मे चिराग थे जिनका नाम था शशि कपूर साहब, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया और इस गाने को फिल्मा दिया डांस करते करते।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। आज टॉप विजय के साथ 5:23 का वक्त यहां पर हो गया है। और भाई शशि कपूर साहब का डांस भी मैंने देख लिया, अमिताभ साहब का भी देख लिया, आशा बारी का भी देख लिया, लेकिन जिस वजह से बॉलीवुड जाना जाता था जिस डांसिंग क्वीन के जरिए, उसका भी गाना सुनना और उसका भी डांस देखना बहुत जरूरी है। तो आइए जिक्र करते हैं अब हेलन जी का। 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले का ये शानदार गाना।

जी हाँ चंपा तारा, टीनू मीनू सभी लोग जो है वो 5 से 6 इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं FM टॉप 10, क्योंकि यहां पर आपके मनपसंद गीतों का ये कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है, तो बस ये चलता ही रहेगा। और इसके बाद जो है 1970 और 80 के बीच के जो फिल्में आई उनमें जो डांसिंग ट्रैक थे उनका सिलेक्शन मैंने किया है, वो टॉप 10 गाने मैं लेकर आया हूं एक घंटे के सफर में आपके बीच। हालांकि इन 10 सालों में बहुत सारे ऐसे डांसिंग नंबर्स आए हैं जिनकी गिनती जो है वो शायद मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो तभी पूरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक घंटे में जितना निचोड़ के ला सकता था इस गर्मी के दिनों में लेकर आया हूं मैं खास आपके लिए। तो चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना जो है वो सुनाता हूं, हालांकि डॉन फिल्म का यह गाना है। इसमें सबसे पहले हेलन जी को मैं सम्मान दूंगा इस गाने के साथ, और उसके बाद बैक टू बैक दूसरा गाना बच्चन साहब पर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे गाने पर इस फिल्म में जो डांस किया है खाई के पान बनारस वाला, अगर उसको नहीं सुनाऊंगा तो प्रोग्राम की नाइंसाफी हो जाएगी और मेरी तो खुद हो ही जाएगी।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरलो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बना रसवा।

sengaja.

0: हाँ।
1: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
2: एमके बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
0: जी हाँ, ये तो था 1978 की ये वो फिल्म डॉन, जो कि बनना शुरू हुई थी 77 की शुरुआत में, बल्कि 76 में इसका जो है वो इनॉग्रेशन हो गया था, लेकिन बीच में इसके प्रोड्यूसर नारिमन ईरानी साहब का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से फिल्म बीच में रुकी और उसके बाद फिर बनी, तब जाके ये रिलीज हुई थी 1978 में, लेकिन बनना शुरू ही 76 में शुरू हो चुकी थी। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो उन दिनों अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। उन्होंने राज कपूर को भी अपनी डायरेक्शन में नचाया है, उन्होंने शम्मी कपूर को भी नचाया है, उन्होंने ऋषि कपूर को भी नचाया और उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी नचाया, यहां तक कि धर्मेंद्र से भी डांस करवा लिया, जितेंद्र से भी डांस करवा लिया अपनी फिल्म धर्मवीर में। जी हाँ, राज कपूर से डांस करवाया था छलिया में, मैं नाम ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, मनमोहन देसाई, द ग्रेट मनमोहन देसाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

दादा साहब, जब तमाम कलाकारों की बात हो ही गई है तो ऋषि कपूर साहब का जिक्र भी कर लिया जाए। उन्होंने तो उस जमाने में बहुत सारी फिल्मों में डांस किया है, तो उनमें से एक है ये फिल्म और ये गीत है बचना ए हसीनों।

तो इसी के साथ 5:55 का वक्त हो रहा है और विजय इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना चाहेगा, लेकिन शाम अवध में तमाम तरह की खबरों के साथ फिर आपसे जुड़ूंगा। तो बन रही है हमारे साथ, एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड पर परिवर्तित किया जा रहा है। अब मई की विद्युत खपत का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसको लेकर कल मेरठ, अमरोहा, हमीरपुर, मऊ समेत सभी जनपदों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम कल जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 1,575,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 14-15 मार्च को चार पालियों में आयोजित की गई थी। पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% और कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में मेरिट और आरक्षण के आधार पर 12,333 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल स्थित रेड क्रॉस भवन में 8 से 22 मई तक आयोजित होने वाले रक्तदान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं अमरोहा में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। सुल्तानपुर में निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन यानी प्रदेश की टॉप 10 न्यूज के साथ 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अटल पेंशन योजना में भी 89,00,000 नामांकन दर्ज किए गए हैं। मई 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेनबो की जबानी
2: प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
1: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: 90.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

बिल्कुल सही कहा, इंडिया की ओरिजिनल आवाज है आकाशवाणी, और इसी आकाशवाणी पर आप सुनते हैं अपने मन के गीत, अपने मन के कार्यक्रम, अपनी मन की बातें। और मन की बात जी हाँ, जो आपके दिल से निकल के आपके दिल तक पहुंचती है, उसी का नाम है आकाशवाणी, जो आपका सच्चा दोस्त है, आपका गहरा दोस्त है, उसने आपकी जिंदगी में एक खास अहमियत तो रखी है। फिलहाल शाम और प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, और इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आज का ये प्रोग्राम, आज का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेल नहीं करेंगे तो मन खट्टा सा रहेगा भाई। और अजय सिंह कुमार साहब का देखिए मेल आ गया है, उन्होंने कहा कि विजय श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों से आपको मिस कर रहे थे, आखिर आप आ ही गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज तो दिल को सुकून मिल गया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं आप। अजय कुमार सिंह सीतापुर से बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी, और आपने मेल किया और इतने दिन से आप इंतजार में थे, मैं भी इंतजार में था, लेकिन कुछ आवश्यक कारण काम थे जिसकी वजह से आपसे रूबरू, आप लोगों से रूबरू नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिलसिला है, ये जिंदगी है, इसमें काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मोहब्बत भी बहुत जरूरी है, और साथ ही हमारे आपके दिल की जो बातें हैं वो भी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे दिल को चीर कर देखेंगे तो उसमें आपको यही नाम मिलेगा।

90. जी हाँ, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं। फिलहाल 6:20 मिनट का समय हो चुका है। विजय यहाँ पर हाजिर है आपके लिए शाम अवध लेकर। और आपको बता दूं, प्रदेश में पहली बार चारवार से बसंत कुंज तक बिना ड्राइवर के दौड़ेगी मेट्रो। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें इतनी सारी व्यवस्था कर दी गई कि ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी। अब आप सोचेंगे ड्राइवर के बिना दौड़ेगी तो कैसे जाएंगे यार, ब्रेक कैसे लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मुझे रुकना जो है वो कहीं और है और पहुंच मैं कहीं और जाऊं, है ना, ऐसा नहीं है। चारवा से बसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर जो ब्लू लाइन की मेट्रो दौड़ेगी उसमें ट्रेन ऑपरेटर नहीं होगा। ये मेट्रो मानव रहित ट्रेन ऑपरेशन तकनीक से दौड़ेगी। प्रदेश में पहली बार इस तकनीक को मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी किया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर अभी जो मेट्रो दौड़ रही है

उसमें ड्राइवर है भाई, परेशान ना होइए, वो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन प्रणाली से लेस है, लेकिन इसमें ट्रेन का दरवाजा खोलने व बंद करने, इमरजेंसी ब्रेक, ट्रेन ऑपरेटर जो लगते हैं। लेकिन अब जो है व्यवस्था थोड़ी चेंज की जा रही है, चारबाग से बसंत कुंज तक 11.165 किलोमीटर के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर मानव रहित ट्रेन ऑपरेशन तकनीक वाली मेट्रो दौड़ाई जाएगी। AI आधारित सेंसर से लैस इस तकनीक में 4.286 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड और 6.879 किलोमीटर के भूमिगत सेक्शन पर पड़ने वाले कुल 12 स्टेशनों से होते हुए मानव रहित मेट्रो अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। यानी कि प्रदेश में पहली बार जो है ये व्यवस्था होने जा रही है, जो मेट्रो ट्रेन जो है बिना ड्राइवर के दौड़ाई जाएगी। एक पिक्चर आई थी आपको याद होगा, द बर्निंग ट्रेन, जिसमें ट्रेन में ड्राइवर नहीं होते और ट्रेन भागती चली जाती है, भागती चली जाती है, भागती चली जाती है। अब उसमें ले दे के आग भी लग जाती है, ओफ पूछो नहीं भाई, सोने सुहागा हो जाता है। लेकिन पिक्चर बहुत जानदार बनाई थी BR चोपड़ा साहब ने। और अंत में जो है वो ट्रेन रुकती है इंक्लाइन पे जाकर, जब चढ़ाई पे उसको जो है चढ़ाया जाता है और इंजन को बोगी से अलग किया जाता है, तब वो ट्रेन रुकती है। लेकिन वो ट्रेन भी बिना ड्राइवर के चली थी, लेकिन जो ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चलेगी इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये पूरी तरह से संचालित होगी, कंट्रोल रूम के हाथ में होगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AI जब से आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से बहुत सारी टेक्निक जो है वो चेंज हो गई है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यात्रा करने का, जाम बिल्कुल नहीं लगाने का, घर से गाड़ी नहीं निकालने का, मेट्रो की सवारी करने का, समझा कि नहीं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: 100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे शाम में अवध आज विजय के साथ, और विजय के साथ अब इस समय मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भाई इधर 2-3-4 दिन तो मौसम बहुत खुशनुमा कर दिया था, आगे क्या होने वाला है। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस प्रोग्राम शाम में अवध में।
5: जी गुड इवनिंग,
4: कैसे हैं सर आप?
5: अच्छा
4: सर, मौसम तो बहुत अच्छा कर दिया था और तपती गर्मी में इतनी राहत तो वाकई में जो है गिफ्ट हो गया था हम लोगों के लिए, है ना? तो अब आगे क्या रहने वाला है मौसम का मिजाज?
5: जी मौसम की बात करें तो मौसम तो अभी सब साफ है लखनऊ में, हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ कल छिटपुट वर्षा हो सकती है, बहुत हल्का था
4: जी।
5: बाकी अपने यहाँ साफ है, दिन में धूप रहेगी लेकिन मौसम अनुकूल रहेगा, जैसा कि बहुत कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं रहेगा। हालांकि जो पिछले 4 दिनों से काफी अच्छा सुहाना था, थोड़ा सा दिन में गर्मी का एहसास होगा लेकिन वो बेरेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा। कोई लू वगैरह का कोई ऐसा अलर्ट नहीं आने वाले अगले 5-6 दिनों के लिए। तो मौसम धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगा लेकिन ये एक तरीके से सामान के आसपास सामान से कम ही रहेगा। तो कुल मिलाकर तो मौसम जो खुशनुमा बना हुआ है वो अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा खुशनुमा टाइप का ही बना रहेगा।
4: मतलब बारिश और तूफान का डर तो नहीं कोई?
5: नहीं नहीं अभी नहीं, बिल्कुल
4: अभी नहीं है,
5: 4 दिन नहीं है। उसके बाद एक और पश्चिमेश्वर बन रहा है जो 12 तारीख से फिर थोड़ा माहौल चेंज होने की संभावना है।
4: अच्छा ये पेपरों में आर्टिकल वगैरह आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है कि अलनीनो का दबाव जो है कुछ इस बार ज्यादा रहेगा, क्या ऐसा है सर?
5: जी बिल्कुल, जैसा कि हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, जैसा मानसून में ये कहा जाता है, अमूमन ये देखा भी जाता है कि जब अलनीनो का प्रभाव होता है तो उस वक्त हमारे प्रदेश में या देश में बारिश की स्थिति में कमी देखी जाती हो। तो कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा एलनीनो डेवलप होने का संभावना है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इस बार का जो पूर्वानुमान है लॉन्ग रेंज जो जून जुलाई अगस्त सितंबर का है, तो कहीं ना कहीं सामान से कम बारिश होने की संभावना है।
4: ओके, सामान से कम बारिश होने की संभावना है
5: मानसून की वजह,
4: यानी अपने घरों में पानी बचा के रखें और उसको बारिश ना होने पर इस्तेमाल करें, हैं? ठीक है सर, दानिश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी खास जानकारी देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।
5: ओके धन्यवाद।
4: दानिश जी थे जिन्होंने बताया कि भाई देखिए कि 2-3-4 दिनों तक अभी मौसम तो वैसे ठीक ठाक रहने वाला है और उसके बाद जो है थोड़ा सा मौसम और खुशनुमा होगा, बारिश का अनुमान है, लेकिन चूंकि अलनीनो का दबाव रहेगा तो इस पर मानसूनी बारिश जो है वो थोड़ा कम रहेगी, तो अब आपको जो है थोड़ा संभल के रहना होगा। ये मान के चलिए कि इस दबाव के चलते मानसूनी बारिश थोड़ा कम रहेगी। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, 6:31 का समय, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं यहीं FM रेनबो के स्टूडियो।

0: 107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं शाम अवध आज विजय के साथ। और शाम अवध में मौसम की बात तो हो गई है, लेकिन अब ट्रैफिक का क्या हाल है और क्या हाल रहने वाला है, कहां डाइवर्जन होने वाला है, ये सब जानते हैं हम विकास जी से। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस प्रोग्राम शाम अवध में। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामे अवध के सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर आज अगर ट्रैफिक की बात करें तो वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है सर, क्योंकि पीक आवर्स का समय है। ऐसे में सर लखनऊ शहर के जो प्रमुख सड़कें हैं, जैसे हमारा लखनऊ अयोध्या मार्ग, लखनऊ रायबरेली मार्ग, लखनऊ कानपुर मार्ग, सीतापुर मार्ग, ये सर थोड़ा सा ट्रैफिक में यहाँ पर ज्यादा रहता है। और

0: शाम के समय में सर जो सबसे ज्यादा खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, तो हमारा जो लासियो मॉल है और लुलु मॉल है,
1: जी
0: यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, और जो अन्य हजरतगंज का और अशोक लाट की तरफ का ये मार्केट वाला एरिया रहता है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: सा हमारा ट्रैफिक का एरिया रहता है, परंतु उतना दबाव नहीं है, सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है।
1: हाँ
0: बस आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो हमारा शहीद पथ वाला रूट है, शहीद पथ वाले रूट पर थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर है, अगर आप इधर से अवॉइड करें उतरेठिया तेलीबाग वाला आप यूज कर सकते हैं,
1: जी
0: वहीं दूसरी तरफ आप कमता की तरफ से अगर आ रहे हैं तो आप विजयपुर अंडर पास की तरफ थोड़ा सा हमारा प्रेशर है, तो वहां पर थोड़ा सा वैकल्पिक मार्ग का आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी
0: बाकी सर एक हमारा समता मूलक पे बैराज, पुल बैराज का जो है गेट का जो है वो मरम्मत का कार्य चल रहा है, इस
1: हाँ
0: दौरान जो पहले हमारा गोमती बैराज पर हम ट्रैफिक भेजते थे
1: जी
0: वो गोमती समता मूलक से गोमती बैराज ना होकर के अब हम 1090 होते हुए PNT बालू अड्डा होकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप समता मूलक से भैकुंठ धाम वाला रास्ता इख्तियार करना चाहते थे अपने गंतव्य तक जाने के लिए,
1: जी
0: तो अब आप जो है 1090 जाएंगे और PNT बालू अड्डा, अथवा वहीं पर सेंट्रल एकेडमी तिराहा, ग्रीन कॉरिडोर तिराहा है हमारा, ग्रीन कॉरिडोर का यूज करते हुए आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जी सर,
1: ओके कल वैसे सैटरडे संडे का है और छुट्टी का दिन भी है, तो अमूमन VIP मूवमेंट्स भी होते हैं और लोग भी जो है वो अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं, तो कोई खास डाइवर्जन तो नहीं है शहर के अंदर?
0: कल तो सर कोई विशेष डायवर्जन नहीं है, और कल का चूंकि सैटरडे और संडे में छुट्टी के दिनों में सर थोड़ा सा ट्रैफिक का हमारा जो ऑफिशियल वर्क वाला मूवमेंट रहता है वो
1: हाँ
0: कम होने से सर रोड पर हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती है,
1: जी
0: इसलिए कोई जो है वो नहीं है, बाधा नहीं रहेगी, आप एकदम सुगमता से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं।
1: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ये खास जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: जी आभार आपका, धन्यवाद।
1: तो भाई ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिल्कुल सुदृढ़ हो गई है, एकदम स्मूथ ट्रैफिक मिलेगा आपको, तो आप जो है अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं कहीं भी, तो आप आसानी से जा सकते हैं, कोई खास डाइवर्जन नहीं है। और हाँ, जब भी कहीं जाइए तो FM रेनबो अपने साथ लेके जाइएगा, वरना मुकाबला हो जाएगा। हाँ।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल 100.7 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पर। प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, और विजय आज आपके साथ है।

और इसके अलावा कहते हैं जबरदस्त शुरुआत है, क्या बात है विजय जी, आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, यही नहीं आकाशवाणी रेनबो लखनऊ के सभी प्रोग्राम की तारीफ करते दिल नहीं भरता है। राहुल सिंह जेल कैंपस बिजनौर से इन्होंने मेल किया है। आरती मिश्रा जी का गुड इवनिंग विजय सर, प्रोग्राम विद एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन लाइक वाओ, सो थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आरती जी। और पिंकू सोनी जी, सर जी आपको सादर प्रणाम जी, नमस्कार। पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। गुड परफॉर्मेंस, मस्त प्रोग्राम, थैंक्स फॉर ऑल एफएम टीम, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और मेल के साथ साथ गीत संगीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाँ, वैसे कुछ बताने वाला था मैं, नया बिजली का कनेक्शन अब पोस्ट पेड ही रहेगा और जून से बिल भी मिलेगा। हालांकि समाचारों में और इस तरह की खबरें बहुत आ रही हैं, जब सब लोग बता ही रहे तो मैं भी बता ही देता हूँ इसको। अब नया बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के पोस्ट पेड मॉड पर ही मिला करेगा। प्रदेश भर में अब तक 43 लाख से अधिक प्रीपेड मॉड में किए जा चुके स्मार्ट मीटर को फिर से पोस्ट पेड मॉड पर चेंज कर दिया गया और उपभोक्ताओं को पहले की तरह जून से बिल के संबंध में पावर कॉरपोरेशन के एमडी ने ये व्यवस्था कर दी है, निर्देशित किया है। मई में उपभोग की गई बिजली का बिल उपभोक्ताओं को 10 जून तक SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 15 दिन में बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। 15 दिन में बिल ना जमा होने पर अगले 7 दिन में कनेक्शन काट दिया जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल तक के बकाए बिल का घरेलू उपभोक्ता 10 किश्तों में, जबकि अन्य श्रेणियों में उपभोक्ता 3 किश्तों में विलंब, अधिभार आती तो उसमें लिखा ही होता है कि कनेक्शन बिल की डेट ये है और डिसकनेक्शन डेट ये है। मतलब अब तो सभी बिल में लिखा होता है कि अगर इतने समय तक नहीं जमा करोगे तो डिसकनेक्शन हो जाएगा, बिल कट जाएगा। लेकिन हालांकि काटते नहीं है, हमारे बिजली विभाग वाले बड़े रहम दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं साहब, काटते नहीं, कहते अच्छा चलाओ यार पंखे में, चलो कोई बात नहीं, बिल नहीं जमा किया क्या हुआ, कूलर पंखा एसी चला लो यार, देखा जाएगा, ये बड़े दिल की बात है। चलिए तो इसी बात पर धूम मचा लेते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हाँ तो भैया,

6:56 हो गए हैं और ये जो शामे अवध है इसको वाइंड अप करते हैं हाँ? क्योंकि वो अगला प्रोग्राम है ना हेलो एफएम, भाई उसको भी तो लेके आना है। तो इस गाने के साथ नमस्कार करते हैं और फिर मिलते हैं न्यूज ब्रेक के बाद। आए कहीं जाइएगा नहीं, पानी वानी पीने भर जा सकते हैं बस। हाँ।

इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक ने ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को पूरा किया। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करने की अपील। प्रदेश सरकार ने अवध क्षेत्र समेत 10 जिलों की ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध व्यापार के लिए तकनीक से जोड़ा है। 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं मोबाइल ऐप के जरिए प्रतिदिन 4 लाख लीटर से ज्यादा कारोबार कर सकेंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट के सापेक्ष यूपी का क्राइम रेट 180.2 रहा है। कुल अपराधों में प्रदेश का देश में 18वां स्थान रहा। प्रदेश में सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया है कि मई का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मुजफ्फरनगर, अमरोहा, सुल्तानपुर और जौनपुर समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। शिविर लगाकर पारिवारिक वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जा सकेगा। रेडियो प्रसारण के शानदार 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बिजनौर में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। एडीपी शोभित शर्मा ने कहा कि देश की गतिविधि और महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने में आकाशवाणी आज भी सबसे सशक्त माध्यम है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी। हमीरपुर के कुरारा में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीते 6 मई को हुए नाव हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज और चमक और तेज हवा के साथ वज्रपात का अनुमान जताया है। आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी यूपी में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन 7:20 पर सुना जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हेलो FM।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो हेलो,
2: नमस्ते सर जी।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप
2: जी?
1: आप FM के पहले कॉलर बन गए हैं। हेलो हेलो जी, हाँ जी बताइए, बोलिए, आप FM के पहले कॉलर बन गए हैं। हेलो FM के
2: जी, बिल्कुल सर जी, मेरी अचानक कॉल उठी है सर जी, तो समझ में नहीं आ रहा।
1: नहीं कुछ समझ ही नहीं, सिर्फ तालियां बजाइए, आप FM के पहले कॉलर बन गए हैं
2: जी। सर जी
1: हाँ, तो बताइए क्या शुभ नाम है आपका
2: जी? हम बोल रहे हैं तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से बोल रहा हूँ सर जी।
1: बाराबंकी से बोल रहे हैं, मौसम कैसा है? अच्छा ही होगा मुझे लगता है अच्छा नहीं है
2: तो अच्छा ना हो ही नहीं सकता।
1: हाँ, गाना कौन सा सुनेंगे सर जी?
2: गाना सर जी बढ़िया नया गीत लगा दीजिए।
1: कोई बढ़िया सा क्या लगा दें, छाया गीत?
2: जी

0: कोई बढ़िया सा गीत लगा दीजिए सर।
1: अच्छा चलिए, तो बहुत बढ़िया सा गीत आपको जो है सुनवा देता हूँ मैं, है ना। और इसके अलावा बताइए क्या करते हैं आप?
0: हमारी तो फर्टिलाइजर की शॉप है सर जी, आपसे बात हो चुकी है सर जी, मेरी अचानक कॉल उठ गई तो सर जी समझ में नहीं आ रहा।
1: अरे नहीं नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस कॉल उठी है तो बातचीत करिए और क्या। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। मुझे भी लगा कि मैंने कहा कि जैसे ही समाचार खत्म हुए अपने पहले कॉलर को ले ही लेता हूँ सीधे जी, है ना, वरना टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। क्यों?
0: बिल्कुल हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉल होते हैं तो अच्छा लगता है।
1: हाँ अच्छा, अभी अभी 10 मिनट जो है समाचार में जाते ही जाते हैं, है ना, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई तुरंत ही जो है अपने कॉलर को जो है लिया जाए। और आपकी फरमाइश का बहुत बढ़िया गाना जो है मैं आपको सुनवाता हूँ, ऐसे ही फोन करते रहिएगा। किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए
0: जी। आसिफ भाई हैं हैदराबाद से और साबिर भाई हैं कानपुर से सर जी।
1: ठीक है, दोनों अलग अलग है यार, बहुत लंबा है दूरी है, तो सुन रहे हैं?
0: भाई हैं।
1: अच्छा भाई हैं,
0: हमारे भाई हैं।
1: हाँ सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं
0: जी।
1: हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ
0: नमस्ते सर जी।
1: हाँ नमस्ते भाई जी, नमस्ते नमस्ते। तो चलिए, हमारे एफएम के पहले कॉलर हमको मिल गए हैं और इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा गाना भी हमें मिल गया है।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण की बहुत ही प्यारी सी आवाजें, वीर जारा फिल्म का गाना ऐसा देश से मेरा भी आपने सुना। हालांकि जो है वो टेलीफोन जो है वो ऐसा दो लाइनें एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं कि कभी कभी ये पता ही नहीं चलता है कि जिससे बात की थी वही इस समय ऑनलाइन है या कोई और आ गया है। पता चला गाना किसी ने फरमाइश की, बात किसी और से हो गई है। फिलहाल यहाँ पर लाइन टू, यस हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहा है?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गुलफ्ता सिद्दीकी।
0: जी कैसी हैं आप?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे
0: हैं? बस बहुत अच्छा हूँ। आपकी फरमाइश का गाना है दैया दैया दैया रे।
1: जी जी सर।
0: किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको
0: जी, और
1: समा परवीन है, साहिबान सारी, सादिया अंसारी, महक अंसारी, निशान अंसारी, ममता है हरदोई से।
0: अच्छा, इन सब लोगों को
1: सुन रहे हैं, सबको,
0: जितने लोग सुन रहे हैं उन सबको सुनवाना चाहती हैं।
1: जी सर।
0: किसके ऊपर फरमाया गया मालूम है? गाना देखा है आपने?
1: जी ऐश्वर्या राय पर।
0: ऐश्वर्या राय पे है। और फिल्म कौन सी है?
1: नहीं फिल्म नहीं मालूम।

0: हालांकि ऐश्वर्या राय की बहुत अच्छी फिल्मों में जो है ये शुमार होती है।
1: जी जी सर, गाना तो देखा है।
0: हाँ, अर्जुन रामपाल भी उनके साथ है और फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, है ना। चलिए मैं आपको सुनवाता हूँ गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए धन्यवाद। भाई गुलस्ता सिद्दीकी से तो बात हो गई, अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉलर से। हेलो
2: हेलो
0: अजी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर जी,
0: कौन बोल रहे हैं जी?
2: जी संजू बोल रहा हूँ, ग्राम सिकरौली पोस्ट सिकरौली जिला हरदोई तहसील संडीला थाना तरौली से।
0: अच्छा, वहाँ से बोल रहे हैं।
2: और बताइए।
0: हाँ सब ठीक है भाई जी, आप बताइए।
2: आपकी हमारी बात उस दिन हुई थी तब से वही नहीं भाई।
0: हाँ उस दिन बात हुई थी उसके।
2: गाना नहीं सुनाया था जी आपने?
0: अरे गाना नहीं सुना था आपने?
2: आप मेरा गाना नहीं सुनाया था, जो बताए थे भी यही सुनवाया नहीं था मेरे तरफ।
0: अरे दोस्त यार, कभी कभी प्रोग्राम में समय ऐसा कम पड़ जाता है ना, कि अब तो दोनों लाइनें चलती हैं तो एक का गाना उधर मिक्स हो जाता है, एक का इधर मिक्स हो जाता है।
2: मेरे दोस्त जो है लाइन पे है ना, वो सुनने के लिए बेकरार था तो उसने सुना रही था आपकी लाइन।
0: अरे यार आज सुनवा दो, आज बताओ आज आज।
2: वो लाइन पे हेलो अरमान बोलो। हेलो
3: हाँ जी।
0: हाँ अजी, कौन बोल रहे हैं?
3: जी हम अरमान बोल रहे हैं।
0: अम्मा इतने धीमे बोलोगे तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा।
3: आवाज नहीं आ रही?
0: आ रही, आवाज तो आ रही है।
3: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सब बढ़िया है।
0: बकरीद की क्या तैयारियां चल रही हैं?
3: बकरीद की तैयारियां सब हो रही हैं बढ़िया,
0: धीरे धीरे हो रही हैं।
3: खरीद रहे हैं।
0: चलिए रहमान जी, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों दोस्त हैं। अरे वाह, बहुत गहरी दोस्ती है, ऐसे ही बना के रखिएगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
2: हेलो सर जी।
0: हाँ जी,
2: जब आप लोग और सर्वेश दोनों लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, तुम्हारे लोगों जब फोन लग जाता है मेरा।
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा है, और आपका फोन लग गया है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा, 7:13 का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, थैंक यू। तो चलिए भाई, गीत और संगीत का सिलसिला भी जारी है यहाँ पर, सबसे पहले इस गाने को सुनते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
3: एम के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
3: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी हो करके और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
2: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आज 17

0: उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
2: एनसीआरबी रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
3: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना बहुत लाइट रही, छिटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
4: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
5: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
4: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
6: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
7: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
4: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKL Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी थैंक यू। कैसी हैं आप और क्या नाम है आपका, बताइए।
4: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मेरा नाम बबीता राव है सर।
3: बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेलो एफएम में। और ये बताइए कि किसको किसको सुनवाना चाहती हैं गाना, और दूसरा आप करती क्या है?
4: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
3: अच्छा, किस क्लास में?
4: सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है।
3: ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर चुकी हैं।
4: जी सर, मैं गांव का नाम ले लूं?
3: हाँ हाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बिंदास। अरे वाह, बहुत
4: सर आपको मैं 4 बजे से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगे।
3: थैंक यू।
4: आपकी वॉइस इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आपके वॉइस नहीं, ब्रांड है, ब्रांड सर, नाम ही ब्रांड है।
3: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है तारीफ करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं।
4: आप लोग वाकई सर बहुत, सभी आते बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, काबिले तारीफ होता है, इतना अच्छा प्रोग्राम। मैं तो यही सोचती हूँ जो सुमोना मैम है, कहाँ से सर्च करके लाई है इतने अच्छे अच्छे आते कि मतलब रेडियो से हटने का तो मन ही नहीं करता।
3: सही बात है। मैम ने जो है वो बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। हाँ। चिराग लेके ढूंढा है हम लोगों को, चिराग लेके उन्होंने, है ना। और अभी हमारे बाद एक और चश्मो चिराग अनवारुल हसन साहब होंगे जो आपकी रात को रोशन करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। तो मतलब एक के बाद एक एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो आप लोग बस खाना पीना खा लीजिए और उसके बाद रेडियो के पास ही बैठे रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ लीजिए जल्दी से लीजिए।
4: हाँ। रोशनी रावत जी हैं,
3: जी
4: शर्मा जी हैं।
3: हाँ।
4: और एमन नवाब जी हैं।
3: हाँ।
4: खंडीला से
3: जी,
4: और जितने भी सुन रहे हैं सभी दोस्तों को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
3: ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू
4: सो मच सर।
3: तो भाई हेलो एफएम सुन रहे हैं, 7:34 का वक्त है, एक और बहुत ही प्यार से गाना सभी लोगों को डेडिकेट करता हुआ ये रहा आपके बीच।

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माई गई ये फिल्म जिसका नाम था कोयला। राकेश रोशन साहब ने ये फिल्म बनाई थी और मेरे साथ फोन लाइन पे कौन मौजूद है? हेलो हेलो हेलो जी हेलो, हाँ बताइए, आवाज आ रही है? एक मिनट, एक में होल्ड कीजिए। हेलो हेलो, आवाज कुछ धीमी सी आ रही है। हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और रेडियो पर नहीं सुनाई दे रही है। चलिए खैर, देखता हूं मैं। 7:41 का समय हो गया है और विजय आज आपके साथ है। एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं।

हेलो एफएम, कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लग रहा है कि फोन लाइन की आवाज जो है वो रेडियो तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल 15 मिनट का समय है तो मेल को टच करता हूं मैं। फिलहाल अनिल पांडे जी और रामराज अशोक कुमार भैया मोनू सेठ बाबू अंसारी जी का मेल भी आ गया है और इन सभी के मेल जो है वो सामने मेरे हैं। दीपाली शर्मा जी का भी जो है इंदिरा नगर से मेल आया है, गाने की फरमाइश उन्होंने की है, तेरी याद आ रही है। अनिल पांडे साहब ये इसके एवज में तहजीब अपनाए कह रहे हैं। और रामराज गणेशाय जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष पासी, नीरज मिर्जा, रिजवान भाई, इमरान बेग। और इसके अलावा अशोक कुमार जी का भी मेल आया है और साथ ही इसके अलावा बहुत सारे मेल जो है आए हैं। खैर फिलहाल और मैं गाने की फरमाइश जो है पूरी करता हूँ। 7:46 का समय है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में।

107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं हेलो एफएम, और इसमें मेल मेरे पास आया है अयमन नवाब जी का। इन्होंने कहा शाम अवध से आपको सुन रहे हैं, और अनिल पांडे साहब का मेल आया है, इसके अलावा रामराज जी का भी मेल आया है रायबरेली से, अशोक कुमार जी का भी मेल आया हुआ मेरे पास यहाँ पर। भैया मोनू सेठ साहब शुभ संध्या लिखते हैं, जी नमस्कार। बाबू अंसारी जी आपका भी मेल जो है मुझे मिल गया है, और इसके अलावा राधेश श्याम जी का भी मेल मेरे पास आ गया है। और यहाँ पर 7:52 का वक्त है, और मैं मतलब और फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, बड़ा मन महसूस कि मैं कह रहा हूँ। फिलहाल चलिए इस गाने को सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द फ़ोन लाइन जो है वो कनेक्ट होंगी अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाता हूँ।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। फिलहाल अब इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करता हूं। एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा अनवारुल हसन के साथ। फिलहाल एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद सौगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री बिजेश पाठक ने भी अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया, परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 सौगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रेन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि सौगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार

गिरफ्तार। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई।

और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। एक जादुई एहसास है जब सूरज धीरे धीरे डूब जाता है और आसमान रंगों की बहार से भर जाता है। बहुत सारे रंग बिखरते हैं आसमान में, कभी लाल, कभी नारंगी, कभी गुलाबी। जैसे कोई शायर हो जो अपनी महबूबा के लिए कुछ रंग बिरंगे अफसाने लिख रहा हो कहीं, या कुछ यादें भी, क्योंकि जिंदगी के जो अलग अलग रंग हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। वैसे ही जैसे गजलों के अल्फाज अगर बहुत ध्यान से सुने जाएं। 8:06 और 4 सेकंड हो चुके हैं। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में, आबशार के सफर में मैं हूं आपका हम सफर अनवारुल हसन। कबूल कीजिए हमारा आदाब।

रस घोल देती है कि बारिश के हंसी कतरे मेरे रुखसार पर आए, तुम्हें वो फूल लगते थे, कहां तूने, उन्हें मैं चूम लेता था। मेरी शर्मो हया उस दम बड़ी बेबाक होती थी, कमर में हाथ डाले हम बहुत ही देर तक भीगे, कहा मैंने, तुम्हारी शरबती आंखें मुझे मदहोश करती हैं, तुम्हारे लम्स का बादल मुझे पुरजोश करता है, तुम्हारे प्यार की बारिश वही जल थल सी करती है, मुझे पागल सा करती है। और फिर उन सारी बातों को कहीं दिल के अंधेरे कोने में महफूज कर लिया, क्योंकि हर बात सबसे कही नहीं जाती, छुपा ली जाती है, वरना पहुंच जाती है दूर दूर, बहुत दूर, न जाने किस किस के पास।

कुछ बातें होती भी ऐसी हैं जो दूर तलक चली जाना चाहिए। ऐसी ही एक बात आप तक पहुंचा रहे हैं, दूर तक भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। हर संडे आप सुनते हैं खास प्रोग्राम एफएम रेनबो पर। जी हाँ, आप समझिए, हेल्थ एंड फिटनेस की बात हम कर रहे हैं। प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस आप 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच सुनते हो। और इस बार हमारा जो टॉपिक है वो आपको बता दें,

डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में है, किसी तरह की कोई परेशानी है आपको इन जो विषय है से जुड़ी हुई, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं, सीधे जुड़ भी सकते हैं, आप मेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोन के जरिए भी जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान हमारे साथ होंगे, MBBS MD मेडिसिन विभाग। तो वक्त याद रखिएगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच इस संडे प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है आबशार, 8:18 हो चुके हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन, 100.7 FM रेनबो पर।

मोहब्बत भीख में हरगिज नहीं मिलती, मोहब्बत दान भी कोई नहीं करता। कि ये खैरात होती है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये खुशबू की तरह का कोई साथ होता है, कोई एहसास होता है, किसी के हाथ में जैसे किसी का हाथ होता है। मोहब्बत तो फकत सांसों में बसती है, कहीं दिल के निहां खानों में पलती है। मोहब्बत का जो रास्ता है बहुत दुश्वार होता है, बहुत पुरखार होता है। मोहब्बत प्यास है शायद, कभी भी जो नहीं बुझती। मोहब्बत भीख में हरगिज नहीं मिलती।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली,
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: वो लड़ती है, झगड़ती है, मुझे हर पल सताती है, यूं अपने होने का एहसास वो मुझको दिलाती है, मगर मैं उसकी हर कड़वी कसीली बात सुनकर भी सदा खामोश रहता हूं। जवाबन कुछ नहीं कहता मैं, उसकी तल्ख बातों को तबस्सुम में छुपाता हूं, मुस्कुरा देता हूं बस, और उस मुस्कुराहट के पीछे फना हो जाते हैं न जाने कितने राज। अगर जवाब दे दिया जाए तो फिर सवाल उठेंगे, फिर बहुत सी बातें होंगी, फिर शायद जबान से वो भी निकल जाए जो रोक लिया है सदियों से, सालों से अपने मन के भीतर। तो कुछ बातें अनकही ही रहे तो बेहतर है। 8:34 और 43 सेकेंड, खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम आबशार।

जब मन में चोट लगती है, तकलीफ होती है, तो कभी कभी जज्बात ऐसे ही बिखर जाते हैं और मन से ऐसी ही दुआएं निकलती हैं। लेकिन हिम्मत हमेशा बनाए रखनी चाहिए और उम्मीद हमेशा उन उजालों से कीजिए जो हर रात के बाद फिर पैदा होते हैं बार बार। वही तो बताते हैं कि हर रात की सुबह जरूर होती है। यूं मिले कि मुलाकात हो न सकी, होठ कांपे मगर बात हो न सकी, मेरी हर निगाह दास्ता कह गई, उनको शिकायत रही कि बात हो न सकी। आपको भी लगता है कि ये सफर थोड़ा सा वक्त कम वक्त के लिए था तो हम काफी देर तक और काफी दूर तक चलेंगे आज आपके साथ रात 12 बजे तक। थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और 9 बजे जब लौटेंगे तो प्रोग्राम पॉप टाइम आप तक पहुंच जाएंगे और 10 बजे से 12 बजे तक एक खास खुशबू जो रोज रोज आप तक पहुंचती है रजनीगंधा की, वो आज भी महकेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, मिलते हैं बहुत जल्दी। शब्बा खैर।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल के वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी। कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने

0: प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और बाबू अंसारी साहब आपका भी मेल आ चुका है और आपने एक बहुत बढ़िया सा हमें एक छोटा सा वीडियो टाइप का एक चीज़ भेजी हुई है, बहुत इसमें बच्चे डांस कर रहे हैं, आपने मुझे भेजा हुआ। अनवारुल सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पॉप टाइम बहुत ज़बरदस्त, और साथ में आप लिख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मूड बिल्कुल मस्ती मस्ती भरा हो गया है, और आपने हमें ये अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेल और हमारे पास इंदिरा नगर से आया है, देखिए, और खाना पीना चल रहा है, कुछ खास बनाया गया है और खास के साथ कुछ खास गाने भी मिल जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। नीलम गुप्ता जी हमें ये लिख रही हैं और एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लिखा है। और बस ये हम एक प्यारा सा गाना जिसमें वो जो आपका जो तड़का है, इसको तड़का समझ लीजिए कि ये जब बजेगा ना, ये पहुंचेगा आप तक, तो आपके खाने में और भी ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। बस हाँ हाँ, ये कुछ अच्छा कुछ ऐसे इन्होंने वो काम, मुझे लगा कि खाना मांगने कोई आ गया, जो इस पे मत जाइएगा, गाना सुनिए।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो।
5: जी, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:24 हो चुके हैं। आपकी घड़ी में भी यही बजा होगा, वैसे नहीं बजा है तो टाइम चेक कर लीजिए, मिला लीजिए इसे। आपको एक सूचना दे देते हैं हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम के बारे में। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए ताकि आपका शरीर के साथ साथ आपका मन भी अच्छा रहे, और तभी आपको इन सारे जो गाने वाने बज रहे ना, इसमें मजा भी आए और आपको फरमाइश करने में भी आनंद आए। जी, तो हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम जो आप हर रविवार सुनते हैं, जी वक्त आप जानते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप सुनते हैं, और एक खास स्पेशलिस्ट हर बार एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद रहते हैं और आप उनसे सीधे बात करने का मौका भी पाते हैं। अगर आप फोन करते हैं या अगर आपका फोन नहीं लगता तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ऐसा ही मौका फिर इस संडे भी आपके पास है। अगर किसी भी तरीके की समस्या डायबिटीज को लेकर है या हाइपरटेंशन को लेकर है तो याद रखिए कि डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान इस वक्त आपके साथ 12 से 1 के बीच में MBBS MD है मेडिसिन विभाग में, ये मौजूद रहेंगे और आप अपने किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या जो हमने बताया कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन से जुड़ी है तो इसका समाधान पा सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं या मेल के माध्यम से, या बहुत सारी और भी जानकारी जो इस विषय से संबंधित है आपको मिल सकती है। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, हमारा साथ आप रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, जैसे अभी आपको आपकी फरमाइशी पूरी करते आ रही, क्योंकि इतनी देर में इतने मेल आ गए। वकील अहमद साहब, आपका भी मेल आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, एक फरमाइश आपने कर दी है। देखिए, ये प्रोग्राम फरमाइशी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो आपने लिखा है वो मैंने पहले से ही लगा के रखा हो तो बिल्कुल आप तक पहुंच जाएगा। और वकील अहमद मंसूरी, कटका हथौरी ब्लॉक हर गांव जिला सीतापुर से आपने हमें लिखा है, साथ में कुछ नाम और भी लिखे हैं, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफिशा सिद्दीकी और सभी। जी हाँ, ये तो हमारे दूसरे श्रोता हैं जो ऑलरेडी अपना मेल हम तक पहुंचाते रहते हैं। पिंकू सोनी जी, आपका मेल भी पहुंच चुका है। सर जी और मैम जी, ये मैम जी तो नहीं दिख रही हमको, अब देखिए डराइए मत, इस वक्त हम अकेले हैं यहाँ पर, हम मैम जी आपने लिख के मुझे डरा दिया, हम कुर्सी के नीचे झाँकने लगे, कोई यहाँ तो नहीं है कहीं। सर जी और मैम जी, चल जो भी मैम अगर सुन रही हो तो भाई आपके लिए भी है ये, सादर प्रणाम। मैं पिंकू सोनी और परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ, हुल्ले हुलारे का आदिवासी भाषा। आय हाय हाय, क्या बात है, ज्ञानवर्धन करने लगे। देखिए, मैंने कहा था कि समझ में आए तो मुझे बताइए, इन्होंने लिखा कि हुल्ले हुलारे जो है वो आदिवासी भाषा है जिसका इस्तेमाल इस गाने में किया गया है, और गुड परफॉर्मेंस, मस्ट प्रोग्राम, सो थैंक्स ऑल एफएम टीम। भाई वाह, इन्होंने बता दिया, जो पहला गाना मैंने बजाया था ना तो पूछा था, तो ये जानकारी आपको थी और आपने हमें बता दिया। यह पन्ना पलट रहे थे मेल का, आप सोच रहे होंगे ये सन्नाटा क्यों गया, कहाँ चले गए, गए कहीं नहीं थे, थोड़ा सा डर गए थे तो हम टेबल के नीचे

झांकने लगे कि ये मैम जी कहाँ हैं, कौन थी। एक मेल और पढ़ देते हैं फिर गाना हम प्ले करते हैं। पॉप टाइम, रोशनी रावत जी, आपने लिखा है, नमस्ते अनवारू सर जी, आप कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं, हम वैसे ही हैं जैसे बिल्कुल पिछले हफ्ते थे, वैसे ही रहते हैं, या ये कहिए कि यहाँ आके हो जाते हैं जब आप लोगों का साथ मिलता है। वैसे तो क्या बताएं कैसे थे हम। मेरे दीदी के बच्चे नैना और आयांश दोनों खूब नाच रहे हैं, धरती पलट दे रहे हैं, बोल रहे हैं मौसी गाना जल्दी बजाओ, अब इनको कौन बजाए के गाना, तो सर जी बजा रहे हैं। चलिए उन बच्चों के लिए मैं तुरंत गाना बजाता हूँ। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम बोपोस, बहमना तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से, और चंडीगढ़ में इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रही है। नीतू शर्मा दीदी बबीता राव जी को राधे राधे बोल दी। चलिए मेरी तरफ से जितने भी लोग सुन रहे सबको राधे राधे। 9:28 हो चुके हैं और गाना भी हम बस आप देखिए कौन सा बजा, दिख नहीं रहा है, बहुत दूर कंप्यूटर रखा था वाला, हमने खूब लंबा हाथ किया और क्लिक कर दिया। अच्छा बजेगा।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

चलिए 9:33 और 33 सेकंड हो चुके हैं और इस वक्त जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उसका नाम है पॉप टाइम। मेरा नाम अनवारुल हसन है और आपका नाम क्या है ये हम बता देंगे। बहुत सारे मेल आ चुके हैं। जावेद अख्तर साहब आपका मेल आया है, सलाम अलैकुम अनवारुल भाई, पॉप टाइम कार्यक्रम पूरी आन बान और शान के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दमदार शुरुआत, लाजवाब अंदाज, आबशार कार्यक्रम को भी सुना तो तबीयत शाद हो गई। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया है, शमशुल कमर राही बेगम और रुखसार साथ में आपने इनके भी नाम लिखे हैं। आयुषी मौर्य जी आपका भी मेल हम तक आया, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। अरे हो कहाँ, होने वाला है क्या, मतलब हो चुका, मतलब हो रहा है। 9:34 क्योंकि हो चुके हैं और आपने 27 मिनट पहले हमें मेल किया था, 9:15 पर आपका मेल हम तक पहुंचा है। आप आए, प्रोग्राम बहुत लाजवाब हो गया है। सर आप कैसे हैं? बस ये सोच कर जिंदगी जिया करो कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज। हंसी आ गई, वैसे भाई हंसना नहीं चाहिए है ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर या इस तरह की चीज़ हो भी गई है तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपने तो हंसने के लिए लिखा है और मुझे फिर से याद आ गया अभी, हालांकि अभी आपको सूचना दी है कि अगर शुगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज से या हाइपरटेंशन से, तो संडे को हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विलेज मैनई पोस्ट और आस उन्नाव से आपने हमें ये मेल किया, अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, आपने ये भी लिखा है आयुषी मौर्य जी ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए और आपने पढ़ाई के बीच से भी वक्त निकाल के हमें मेल किया। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि हेलो सर, गुड इवनिंग, और सिर्फ एड्रेस लिखा है रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी। आपकी आवाज़ अच्छी है भाई, वाह, जानकर खुशी हुई, प्रोग्राम झकास चल रहा है। अभय कुमार जी आपका भी मेल आ चुका है, सर गुड इवनिंग, हम आपका प्रोग्राम विलेज रोरापुर पोस्ट गोरिया गरह, अब मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, एक तो बहुत छोटा सा है, अब ये अब गलत हो जाएगा तो आप तुरंत कह देंगे गलत है। पिछले हफ्ते बताया क्या हुआ, अब आपको बता ही दें, पिछले हफ्ते ये गलती हो गई थी मुझसे पढ़ने में, तो उन साहब ने मेरे सोशल मीडिया में जाके मुझे एक मैसेज में मेल करके लिखा कि देखिए ऐसे ऐसे आपको पढ़ना, तो उन्होंने फोटो भी खींच के डाली इस मेल की, मुझे यानी मुझे पर्सनली वहाँ पर लिख दिया कि मतलब हमारी गलती की ओर ध्यान इंगित करा दिया। तो चलिए अगर आप सुन रहे हैं तो भाई आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे भी अगर मुझे यहाँ भी गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा। एक बार मैं स्पेलिंग पढ़ता हूँ, देखिए GAURIYAIHAL, अब ये कौन सा गाँव है, गौरीहल करके कुछ है ना, हाँ पढ़ लिया। सीतापुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बता रहा हूँ, आप तो खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने सही पढ़ लिया होगा, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। और हमारे दोस्त जिनका नाम ममता, नीरज कुमार, डेविड, विशु, नागेश, अनुराग और हमारे पड़ोसी यानी सब लोगों की तरफ से आपने हमें ये मेल किया, प्यारे से बच्चे की फोटो भी लगी हुई है। बबीता राव जी आपका भी मेल हम तक पहुँचा है और बस मैं इस मेल को भी पढ़ने जा रहा हूँ। पता लिखा है कि बेबी कला पोस्ट सठवारा गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ, आपने लखनऊ से भी हमें भेजा है और आपने लिखा है कि गुड इवनिंग माय डियर रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी, अब इतनी इज्जत कहाँ, सर जी मैं आपको 8 बजे से सुन रही हूँ, आपका गजलों का प्रोग्राम और आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं, आपका प्रोग्राम

भाई रजनीश बहन विनीता नीलूदी रोशनी रावत जी के साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम। बहुत ही उमदा लग रहा है और झक्कास लग रहा है, ये भी आपने लिखा है। सर जी लिए देखिए, आपने हमारी दुखती रग को छेल दिया है देखिए, और हम अब ये बात किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि बता दिया तो ये बात आम हो जाएगी, फिर लोग हमें बार बार छेड़ेंगे। आपने किसी का नाम लिखा है, आप उनके साथ मुझे सुनना चाहते हैं, तो सर जी और मैम जी जब आएंगे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने लिख दिया है, हमारी आवाज़ तक धीमी हो गई, बताइए। सब सारा जोश चला गया हमारा, हम इमोशनल हो गए। ईमेल करने के लिए, ईमेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया बबीता जी, मैंने पढ़ लिया है और जो समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी, ऐसे कहते हैं। गुड इवनिंग प्रिया आरजे अनवारुल सर जी, मेरे अजीज, आय हाय क्या बात है, अजय सिंह जी ने क्या क्या लिख दिया, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मुझे शिकायत है आकाश, अच्छा अच्छा अच्छा, अब भाई ये शिकायत मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आपने जो भी लिख दिया है। देखिए हमने पहले भी बताया कि प्रोग्राम से संबंधित कोई भी बात अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आपको खुद पता है कि बुधवार को जो हमारा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आप मेल कर सकते हैं 11 बजे, है ना। तो वहाँ पर आपके जो संदेश है, संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में, वहाँ पर हमारी जो है प्रोग्राम प्रमुख भी रहती हैं, आपने उन्हीं के लिए यहाँ पर इंगित किया है, इस मेल में आपने उनका नाम भी लिखा है। और अब मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी हो जाएगा, तो आप वहाँ पर इस अपनी बात कह सकते हैं, वो एक मंच इसी प्रोग्राम के लिए है। और फिलहाल मैं अपने लिए ही कह सकता हूँ कि जहाँ हमें आदेशित किया जाता है हम तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। सुबह के लिए कह देंगे तो हम जाएंगे नहीं, यहीं पर लेट जाएंगे बिछा के बिस्तर, है ना, ताकि सुबह सुबह यहीं बस फिर चालू हो जाए। तो हम तो इस तरह से सेवा देने के लिए तैयार है। अहमद नवाब संडीला से लिख रही हैं, आदाब अनवारुल सर, कैसे हैं आप, आज मेरी प्रोफाइल पिक्चर देकर बताइए कैसी है। हाँ आज बता देंगे, देखिए आज बता देंगे हम आपको, क्योंकि आज आपने बहुत ही प्यारे से एक बच्चे को गोद में ले रखा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। सर हम खाना बना रहे हैं, आप बनाकर आए हैं या जाकर बनाएंगे। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, देखिए म्यूजिक तक वो तक चुप होगा जो पीछे संगीत दे रहे हैं हमारे। अरे भाई संगीत दीजिए, आपका नाम जाएगा। देखिए बजाने लगे, नहीं बजा रहे, अम्मा बजा दो, बजा दिया ना। अहमद नवाब जी, हम क्या जवाब दें आपको, खाएंगे तो हम जाके, बना क्या है कि नहीं ये नहीं बताएंगे। मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से एम के राज जी ने हमें मेल किया है, अनवारुल सर जी कैसे हैं, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, हर घंटे रोज लाइव सुनते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं कि वो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है, और क्या बोलने का अंदाज अति सुंदर, पाऊ तेरा करने थिरकने पर मजबूर, कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। अच्छा पाँव लिख रहे थे आप, तो वो पाँव हो गया है, पाँव जो है ये लिख रहे हैं कि मेरे थिरकने पर मजबूर, कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं भरपूर, आपकी लंबी उम्र हो, रेडियो में आपका लंबा सफर हो। चलिए इन दुआओं के लिए शुक्रिया, और दुआ तो बस ये कीजिए कि हम हो ना हो, लेकिन ये परचम सदा यूं ही लहराता रहे, ये रेनबो हमेशा यूं ही खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे। राजेश यदुवंशी जी, आपका मेल भी आ गया है। राजेश जी ने हमें हथरोहना जिला अमेठी से लिखा है, लिखते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। और ये डॉलर मेहंदी जी यानी दिलेर मेहंदी जी एक बार फिर कह रहे हैं कि हमें बजाओ, मतलब ये गाना गाना चाह रहे हैं आपके लिए, तो इन्हीं का सुन लीजिए भाई।

0: अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, हे
1: भगवान, कुछ खराबी आ गई लगता है इसमें। अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
2: हाँ मुझे आती है।
1: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी ये कम है।
3: जी बहुत सारे समाधान बताते रहते हैं हम यहाँ से आपको। 9:40 और 19 सेकंड हो चुके हैं, पॉप टाइम सुन रहे हैं आप इस वक्त अपने दोस्त अनवारुल हसन के साथ। और रजनीश पासवान जी आपका मिला चुका है, वेरी म्यूजिकल गुड इवनिंग अनवार सर जी। आज मैंने समाज के लिए एक काम किया है, कृपया करके इसे सभी तक जरूर पहुँचा दें। अब भाई पहले हम पढ़ लें, चलिए जी। आपने कहा है कि आपने ब्लड डोनेशन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, सिद्धार्थनगर से आपने हमें ये पोस्ट जो है मेल भेजी है, और साथ में आप कुछ और भी चीज़ें पोस्ट की हैं। आपने कहा है कि आज GML में सुस्मित जी और रोली सर के द्वारा मुद्दा लिया गया था, और उससे मोटिवेट होकर, यानी आज आपने रेनबो से आपको ये प्रेरणा मिली और आपने जाकर जो है दूसरी बार ब्लड डोनेट किया है, और साथ में आपने वो तस्वीरें भी हमें भेज दी हैं सबूत के तौर पर, जिसमें आप आई एम प्राउड ब्लड डोनर आपने इसमें लिखा हुआ है, माधव प्रसाद जी जहाँ पे आपने किया है, और आपकी तस्वीर है, साथ में वो सर्टिफिकेट भी जो आपको वहाँ पर मिला है, आपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से, वो भी आपने हमें

इसमें भेजा है। और भाई आपने एक नेक काम किया है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और थोड़ा सा बस हिम्मत जुटानी होती है और बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। राजेश यदुवंशी जी, आपका मैं ला चुका है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। अब इसमें हम कुछ क्या कहें, बिल्कुल सही बात आपने लिख दी है। और एक फरमाइश आई है, आपका मेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभय जी, देखिए है ना। और कुछ मेल कई बार हम तक पहुंच जाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, तो फिर से ऐसा नहीं, हम सारी मेल मैं इसमें टिक करता जाता हूं, जो स्टार उसमें बना होता ना, तो इसको स्टार में मैं करता चला जाता हूं, तो उससे पता रहता है। महेंद्र दीपन जी आए, हाय क्या बात है। अब महेंद्र जी, आपने जो हमें भेजा है ना, इसको हम कल पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पर। आपने कितना बेहतरीन पोस्टर बना के मेरी फोटो के साथ भेजा है कि मैं क्या बताऊं। डेड पॉइंट ढेर सारी मस्ती भी, आपने पूरा विज्ञापन बना दिया है। और लिखा है कि शब्दों में परोकर संगीत का जो आपने दू चलाया है, आज आपकी आवाज ने रेडियो पर वाकई गर्दा उड़ाया है। इतने शानदार और ऊर्जा से भरपूर प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नियमित श्रोता महेंद्रपन रूड़ नागौर राजस्थान से। तो कल इस पोस्ट को जरूर आप देख लीजिएगा, मुझे पता है कि आप वहां पर भी देख लेते हैं, मैं आपके नाम से परिचित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सादर नमस्कार, मैं महेंद्रपन बोलता गांव रूड़, जहाँ मैंने आपको बता ही दिया। और करने का वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में जो समा बांधा है, और जिस तरह से आप ये गर्दा वर्दा ना उड़वा, ये आँख में चली गई तो ऐसे मलते रह जाएंगे, फिर रात में ठीक से सो भी नहीं पाएंगे, यहाँ ना ठीक से देख पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं मजबूर होकर मैंने आपको मेल किया है, और आपकी कॉमेडी टाइप की जो आवाज़ का जादू है, वो गानों का, चलिए कॉमेडी वाली भी सुन लीजिएगा और रात में थोड़ी सी दर्द भरी भी सुन लीजिएगा, सब तरीके सुनिएगा, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके इस मेल के लिए, और आपके इस मेल को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ भी लिया। और ये देखिए, आप सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम तो बता के करते हैं, देखिए कोई काम चोरी से नहीं होना चाहिए। आपके इस मेल को मैंने अपने मेल में ये सेंड करके फॉरवर्ड कर दिया, अब ये हमारे व्यक्तिगत मेल में चला गया, ठीक है, तभी तो हम कल इसको पोस्ट करेंगे। आज 8 साल बाद फोन लगा था, फिर बात ना हो पाई, ये आनंद तिवारी जी ने लिखा है। पहले बहुत पहले प्रोग्राम आता था दोपहर धमाल 12 बजे से 1 बजे के बीच, तब फोन, अच्छा फोन नंबर भी आपने लिख दिया है, हमारे बहुत पुराने नंबर तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो लिख रहे हैं कि तब बात हो पाती थी और आज मन बहुत उदास हो गया, कोशिश कर रहे हैं लगातार। आनंद तिवारी जी ने हमें ईमेल किया है, दारू कुइयां मलावा हरदोई से, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, ये आपने लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हार मत मानिए, देखिए जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, और देखिए उनकी कोशिश सफल हो रही है। विजयलक्ष्मी कुशवाहा सैंडी जनपद हरदोई से लिखा है कि सर जी आप आए और कोई श्रोता हंसे ना, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा। प्रोग्राम बहुत बेहतरीन चल रहा है, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबको ऐसे ही बेहतरीन गाने सुनवाते रहिएगा, धन्यवाद। राग रामेश्वर भदोही से आपने हमें ये मेल किया है, और मुझे लगता है कि अभी गाना बजा ही दें, हैं लगा के तो रखा था, लीजिए ये लगा दिया, आ हा समझ गए।

चलिए उनको अपना दिल संभालने दीजिए, पीछे पीछे गाने दीजिए, आपके इतने मेल है तो जल्दी से हम सबको शामिल कर लें। शैलेश कुमार जी, आपने नीलूपुर साथ में टाइगर पूर्णिमा नीलू शर्मा रूपुर चंदेला से ये मेल किया है, नमस्ते गुड इवनिंग अनुराग सर कैसे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। रोशनी बबीता स्नेहा सोनी जी को भी नमस्कार बोल दिएगा, जी भैया आपका नमस्कार पहुँच गया है। अतुल कुमार यादव जी, आप लिख रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनकर, और मैं छोटा सा किसान हूँ, सब्जी खेती करते हैं, आजकल लौकी और खीरे निकल रहे हैं, और आप और आपकी पूरी टीम और सुनने वालों को मैं खीरे की दावत, अरे भाई वाह क्या क्या बात है, खीरे की दावत दे रहे हैं, जल्दी से आ जाइए लोग। और पता भी अब लिख दिया है, पता ग्राम खुरेहटा खैराबाद सीतापुर लीजिए, खीरे चक्कर में मन्ना मकान नंबर लिखा, ऐसे कैसे ढूंढेंगे, हो सकता है बहुत मशहूर आदमी हो वहाँ के, भाई आएंगे उधर, हम आते हैं खैराबाद की तरफ तो हम जरूर आपसे खीरे ले जाएंगे। अनवर सर जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके साथ पूरा रजनीगंधा तक साथ निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है, जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से। ताली बंसारी साहब, आपने भी राजा कटरा बाराबंकी से मेल किया, रेडियो मैन अनवर हसन सर जी, आज तो अलग लेवल का प्रोग्राम, नहीं हम ऐसे ही करते हैं भाई, आप ठीक से सुना करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर से मौसम भी कूल कूल हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, आपके आने की खबर लग गई थी कि लिख रहे हैं, हमको पहले से पता था कि आप आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी नाक कान आँखें सब खुली रखते हैं, जी हाँ, तो इससे खबरें मिलती रहती हैं, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सर मैं भिटौली लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, पूजा पाल हैं आप, मेरे साथ और भी लोग सुन रहे हैं, आपने लिखा है शमशा और अंजू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। कोमल तिवारी जी, गाने बहुत प्यारे बज रहे हैं, बहराइच से आपने कैसरगंज से हमें लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सावित्री देवी जी आपको ही पल देते हैं, गुड इवनिंग डियर सर जी, बहुत झकास प्रोग्राम चल रहा है। और आपने लिखा है भरतपुर बरगदही पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और

बहुत दिन पहले बनाया था लेकिन याद नहीं रहा भेजने का, इसलिए दूसरा ईमेल कर दिया है। दूसरी ईमेल के लिए सॉरी, अहमद नवाब ने संडीला से भेजा है। अच्छा, इन्होंने भी हमारी एक फोटो बनाई थी, फोटो बनाई है, ये फोटो नहीं कहते हैं इसको, ये फोटो है, फोटो बहुत अच्छी है माही वाली, ये किसी को दीजिएगा नहीं, समझ जाइए हमारी शादी हो चुकी है, क्योंकि नमाज के 57 मिनट हो चुके हैं। एक गाना और आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद रजनीगंधा की खुशबू महकेगी जब लौटेंगे प्रोग्राम रजनीगंधा लेकर। हाँ देखिए, ये इसमें हाथ लग गया, खड़खड़ की आवाज़ तो नहीं आई आपको? चलिए गाना सुनिए, लौटते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का डेटा हैथकॉन 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें छात्रों द्वारा विकसित अभिनव समाधानों का प्रदर्शन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल पहचान डेटा के अभिनव और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने और छात्रों और युवा पेशेवरों को स्केल बेस्ड डेटा आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समावेशन, दक्षता और शासन परिणामों को बढ़ाना भी है। प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को केवल एक सड़क परियोजना तक सीमित न रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 4 स्थानों पर ई वे हब और जन सुविधा परिसरों की स्थापना का कार्य करा रही है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12,907.84 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रस्तावित जन सुविधा परिसरों की स्थापना बांदा और हमीरपुर में एक एक और जालौन में 2 स्थानों पर की जाएगी। कानपुर महानगर की बहुप्रतीक्षित परियोजना जरीब चौकी चौराहे रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने किया। इस रेलवे ओवर ब्रिज पर 320 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। गौरतलब है कि ये रेलवे ओवर ब्रिज कानपुर महानगर को लंबे समय से लगने वाले भीषण जाम और दक्षिण उत्तर कनेक्टिविटी की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

अक्से खुशबू हूं, बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। दस बजकर 4:55, कोई तो आ गया है। रजनीगंधा के फूलों पर ठहर गई है मोहब्बत की शबनम, और एक चादर है अंधेरे की, थोड़ी सी चमक भी है उसमें। धीरे धीरे धरती पर सरक रही है एक रात की तरह। यह रात थोड़ी सी अलसाई भी है, थोड़ी सी दुखी भी है, थोड़ी सी मुस्कान भी है इस रात में। और इन सारी आहटों को एक साथ बुनकर इस खुशबू को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं हूं, जी हां, आपका दोस्त अनवारुल हसन। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

मैं जानता हूं कि तुम्हारी जब तक बात नहीं होती हमसे, जब तक मुलाकात नहीं होती, तुम्हारी रूह में एक अजीब सी बेचैनी तारी रहती है। तो फिर बहुत सी बातें ऐसी क्यों होती हैं जो कहने से पहले ही तुम्हारे होठों पर ठहर जाती हैं। आज मैंने देखा कि मुलाकात के बाद भी तुमने खामोशी की चादर सी ओढ़ रखी है। तुम्हारी आंखों के इन धागों में न जाने कितने सवालात जैसे उलझ कर रह गए हो। तो क्यों इन्हें उलझा दिया है? कुछ मन में है तो कह डालो अपने मन की हर बात। क्या इरादा है, क्या सोचा है, बात करने की वजह क्या है, याद करने की वजह क्या है? तुम जो नजरों को उठाओ तो सितारे झुक जाएं, तुम जो पलकों को झुकाओ तो जमाने रुक जाएं, जागती रातों को सपनों का खजाना मिल जाए, तुम जो मिल जाओ तो जीने का बहाना मिल जाए। पीछे की वजह क्या है आखिर?

ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है। इसी में इश्क का शोला जवान होता है। बिछाए शौक के सजदे वफा की राहों में, खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में। मोहब्बत के सफर में हुस्न की अंगड़ाइयां भी हैं तो शातिर जमाने की बिछाई हुई दुश्वारियां भी हैं। प्यार का सफर अक्सर उतना आसान नहीं होता जितना समझ लिया करते हैं लोग। अगर होता तो बहुत से अफसाने उस तरह से बिखर कर सामने ना आते जो कभी कभी किसी की कहानी को आपसे रूबरू कर देते हैं और कभी कभी वक्त के साथ कुछ ऐसी रानाइयां, कुछ ऐसी अंगड़ाइयां, कुछ ऐसी जादू भरी बातें आप तक पहुंचती हैं। कभी कभी ये खुशहाल जिंदगी की तरफ भी आगे बढ़ती हैं, कुछ कहानियां अंजाम तक भी पहुंचती हैं।

और कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जो वक्त की धूल में धुंधला जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में तो उन पर भी निगाह जरूर डालेंगे, उन कहानियों की भी, उन अफसानों की भी बात करेंगे जो धीरे धीरे दर्द में बदल गई। और बात अभी उन कहानियों की भी, उन अफसानों की भी, जो हर बदलते हुए वक्त के साथ और भी निखर गई।

चंचल हवाएं न जाने कौन कौन सी कहानियां हम तक पहुंचाती हैं। जब आप अकेले में होते हैं और आपको ये छू कर गुजर जाती है, बेचैन हो जाता है कभी कभी मन भी। हर लम्हा एक सवाल बन जाता है। कभी ये बेचैनी इंतजार की होती है और कभी खूबसूरत मोहब्बत की भी। जब एक झलक पाने के लिए आंखें बेचैन हो तो कभी कभी आप अपने आप से पूछ बैठते हैं। याद कीजिए, कभी पूछा था क्या आपने अपने आप से सवाल किसी को देखकर, जब ऐसा हुआ था आपका हाल, लगा था क्या कभी कि कुछ अलग हो गया है आपको, या किसी खास को देखकर कभी आपको बाद में एहसास हुआ हो कि ये रिश्ता कुछ अलग से है, कुछ अलग नाम है इस रिश्ते का, कुछ अलग सी फीलिंग है आपके अंदर। और फिर उसको चेक करने के लिए अगर आपने वो एक बेचैनी वाला जो थर्मामीटर होता है, जो आपके दिल में कहीं होता है, अगर वहां महसूस किया हो कभी कभी कि ये तो कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, मैं भी छूकर देख रहा हूं अपने दिल के आसपास आतर कर और शायद अगर आप अकेले हो तो आपने भी ऐसा किया हो, नहीं किया हो तो करके देखिएगा कभी। रातें कैसे कटती हैं, नींद कहां गायब हो जाती है, मोहब्बत की जिस आग में जब आप जल जाते हैं, कभी हंसी आती है कभी

आंसू भी बहते हैं, कभी बेचैनी भी होती है, कभी अजीब गहराई एक पैदा हो जाती है मन के अंदर, और फिर हम सीख जाते हैं वफा का सबक। और यह सब जो कुछ भी है तब होता है जब किसी को याद करते हैं आप। 10:28 और 40 सेकेंड, वफा के ऐसे ही सबक को याद करने की एक कवायद रजनीगंधा में आज अनवारुल हसन के साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

पूरी तफसील हाल देता हूं, मैं तुम्हें दिल निकाल देता हूं, अपनी आंखों को किस दिलेरी से तेरी आंखों में डाल देता हूं। ये इरादे जवा हो जाते हैं मोहब्बत में जब, तो फिर जहां भी आप जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे अकेले नहीं हैं आप, कोई और भी है आपके साथ। आपका वही खास एहसास, हो सकता है जमाने की नजर से बचाने के लिए कोई और नाम दे दिया हो आपने उसे। ऐसा ही होता है कि जहां भी जाऊं तुम्हारा ही एक अक्स नजर आता है मुझे। हर शीशे में, पानी की हर लहर में बस तू ही नजर आते हो। आसमान की तरफ देखता हूं तो बादलों में न जाने कितने चेहरे बनते हैं, उसमें से तुम्हारा भी एक चेहरा होता है। दिल की धड़कनों में, सांसों की सिसकियों में तुम्हारा वो चेहरा, वो मुस्कान, वो आंखें। कभी भटकू पहाड़ों पर तो समंदर किनारे, तो कहीं भी हर कदम पर, हर साए में तुम्हारा ही इश्क, तुम्हारा ही अक्स। यही है इश्क की दीवानगी, जब आपको हर तरफ ऐसा लगता है, और सिर्फ आपको नहीं लगता,

किसी और को भी लगना चाहिए।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: जी, और इसलिए ना पूछिए क्योंकि कुछ सवालों के जवाब तो अपने आप ही आपको ढूंढने होते हैं, तो बस उनके जवाब तलाश कीजिए। और अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ ऐसा मन में आ रहा है, तो फिर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जिंदगी की एक डोर है जो बंधी हुई है कहीं, शायद उन्हीं के साथ। दिल की धड़कन में बस उन्हीं का जिक्र है, हर सांस में छुपा है वो इश्क का राज। बिना तुम्हारे ये जिंदगी है बेकरार, तुम हो तो खिलेगी हर सुबह की बहार। तुम ही हो मेरी दुनिया का नूर, जब आंखों में आ जाते हो तुम तो लगता है संवर गया है हर नजारा। दूर हो तो उदास हो जाता है मन, ये चेहरा भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ही से बंधी है ये जिंदगी की।

इश्क की इस डोर को कभी तोड़ना नहीं, साथ निभाना हमेशा। यही है प्यार का वादा भी। तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है हर सफर, क्योंकि तुम्ही से है जिंदगी का असली मकसद। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्ही से बंधी है जिंदगी की हर डोर।

कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के

जी, और कभी कभी ये बातें सच हो जाती हैं जो कसम खा के कह दी जाती हैं। कभी कभी हाथ मलते रह जाते हैं लोग, धीरे धीरे रेत की तरह फिसल जाती हैं बहुत सारी खुशियां, और फिर खुद को छला हुआ महसूस करते हैं, भीतर तक जला हुआ महसूस करते हैं। और फिर क्या होता है, समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। रात के 10:55 हो चुके हैं। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर तो जारी रहेगा और हम लौटेंगे समाचारों के बाद। तो बस इस आधे सफर से इजाजत लेते हैं, फिर लौटते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त, जी हां, अनवारुल हसन। और कौन।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर